0: मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: हे नीता, तुम्हारी मौजूदगी में उसकी मौजूदगी गुमशुदा क्यों है?
3: कौन? ओ सानिया, वो तो सुबह ही गुम होगी, लेकिन आप इतने सुमसुम क्यों हैं?
2: तुम्हारी कजन सोनिया की वजह से। मैं खुद समझ नहीं पा रहा, उसकी एक नजर ही काम कर गई। मैं बता नहीं सकता नीता, वो जिस तरह मुझे देख रही थी, मैं वो आंखें भूल नहीं सकता जिनमें कई सवाल थे। क्या कुछ लिखा था उसके चेहरे पर, सो सिंपल, सो इनोसेंट। और फिर उसका इस तरह चले जाना, आई मीन, जस्ट लेफ्ट सो मेनी क्वेश्चंस अनआंसर्ड, यू नो।
3: Too much. Oh, wow, Raj, that is so romantic. अगर तुम यही डायलॉग ना सोनिया को कहते तो वो अभी इसी वक्त बेहोश हो जाती।
2: नीता, you've got to help me. मैं उसे मिलना चाहता हूँ, उसे जानना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ कि जो मैं फील कर रहा हूँ, क्या वो भी एग्जैक्टली वही फील कर रही होगी।

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: 6 बजे हैं। आइए सुनते हैं सुबह का पहला फ्लैश न्यूज टीना से। नमस्कार आपको।
1: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। जरूरी चीजों पर नई छूट लागू होने के बाद 3 दिन बाद जो कि बजट 2026-2027 की परचेसिंग पावर शिल के तहत दी गई है, इसकी शुरुआती असर दिखने लगी है। डिब्बाबंद मछली यानी कान चूना, कोन बीफ, कोन मटन, लचन मीट, अनाज, स्पैगेटी, सैनिटरी पैड और बच्चों के सामान जैसी चीजें इस छूट में शामिल है। और सुपरमार्केट में सामान्य से अधिक भीड़ देखी जा रही है, खासकर डिब्बाबंद चूना मछली के सेक्शन में जो नई सब्सिडी उपाय से प्रभावित है। मंत्रिमंडल ने नोट किया कि प्रधानमंत्री ने सेशल्स की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने कई विदेशी नेताओं के साथ मुलाकात की। इस दौरान मॉरिशस और सेशल्स के बीच मौसम परिवर्तन, व्यापार, ऊर्जा, स्वास्थ्य और दोनों देशों में हाई कमीशन खोलने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। साधारण वीडियो अब बड़ी कमाई का जरिया बन सकती है। सोशल मीडिया आज कई कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक असली आय यानी इनकम का स्रोत बन चुका है। इस तेजी से बढ़ते ट्रेंड को देखते हुए सरकार इस डिजिटल अर्थव्यवस्था को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के लिए नई टैक्स संबंधी व्यवस्थाएं लागू कर रही है। और विदेश में दुनिया भर में ड्रग्स तस्करी पर बढ़ती सख्ती के बीच माफिया ने नया रास्ता तलाश किया है। अब अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स गिरोह एयरलाइंस के फ्लाइट अटेंडेंट और अन्य क्रू सदस्यों को अपने नेटवर्क में फंसाकर उन्हें तस्करी के लिए कुरियर की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और अंत में मौसम का हाल।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
1: हमारे इलाके पर हल्की एवं अस्थिर हवाओं का असर है। पूर्वानुमान आज सुबह और दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा और रात्रि के समय भी आसमान साफ रहेगा। तापमान सेंट्रल बातों पर न्यूनतम तापमान 13-16 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 21-24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19-21 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 26-29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व की तरफ से 10-20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाह रेखा के बड़े समुद्र खराब रहेगा और दक्षिण पश्चिम की तरफ 2 मीटर तक ऊंची लहरें भी उठ सकती है। सूर्योदय आज 6:46 पर और सूर्यास्त शाम के 5:42 पर।
3: Centre 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
4: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
5: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا

सामईन, किसी भी काम या रिश्ते को बग़ैर किसी लालच दिखावे या खुदगर्जी के सिर्फ सच्चे दिल से निभाना खुलूस कहलाता है। सच्चे दिल से किया गया तौबा तकदीर के बंद दरवाज़े खोल सकता है। इरशाद रब्बानी है, उर्दू तर्जुमा। और ए मोमिनो, तुम सब अल्लाह के हुजूर में तौबा करो ताकि तुम फलाह पाओ। बहवाला सूरह अन्नूर। अच्छी नीयत इंसान को जन्नत में दाखिल करेगी। बहवाला जामे असगीर।

इब्न माजा की रिवायत है एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई ऐसा अमल बताइए कि अगर मैं वो करूँ तो अल्लाह भी मुझसे मोहब्बत करे और लोग भी मुझसे मोहब्बत करें। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे दोनों चीज़ें एक साथ चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की मोहब्बत से किनारा कशी इख्तियार कर लो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, और जो कुछ लोगों के पास है उसकी तमन्ना छोड़ दो तो लोग तुमसे मोहब्बत करेंगे।

तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है कि फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बुराई के बाद नेकी कर लो, वो उसे मिटा देगी। तिर्मिज़ी शरीफ की ही रवायत है, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, कसरत से ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला पढ़ा करो, क्योंकि ये जन्नत के ख़जाने में से है। इससे मुसीबत के 70 दरवाज़ों का रुख बदल दिया जाता है, जिनमें अदना फ़क्र व फ़ाक़े का दरवाज़ा है।

चीज़ों से बचो, सब लोगों से ज़्यादा आबिद हो जाओगे। अल्लाह की तकसीम शुदा रिस्क पर राज़ी रहो, सब लोगों से ज़्यादा बेनियाज हो जाओगे। अपने पड़ोसी के साथ एहसान करो, पक्के सच्चे मोमिन रहोगे। दूसरों के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो, सच्चे मुसलमान हो जाओगे। ज़्यादा ना हंसो, इसलिए कि ज़्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है। सामईन कराम, सबा खैर प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म होने जा रहा है। आज हमने खुलूस के मुतालिक चंद बातें और अहादीस आपके सामने रखी, उम्मीद है इससे आपको फ़ायदा पहुंचा। तकनीकी मदद के लिए अंजू का शुक्रिया। अपनी मेज़बान अबीनाज जान अली को इजाज़त दे, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। सुभानक अल्लाहुम्म व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।

गुजराती गीतों का कार्यक्रम आप हमारी साथ है रेडियो मनोरंजन पर भाविन अने पूजा नकाश ना स्वर में मुकायेलू आ गीत जल स

0: वो हमारी साथे
1: ऐश्वर्या मजुमदार ना स्वरमा मुकायलू हतु आ धमाकेदार एनर्जेटिक गीत अने आ साथे ज भाई जारे एनर्जी नो आपणे कहीए ने के डोज एकदम चढ़वा लागे ने पछी एकदम ठंडा न थवाय एनर्जी ना डोज ने हमेशा जारी रखा है। एनीवेज हूँ छू रत्ना आप सबको इनो साथ आपी रही छू 94.6 मेगाहर्ट्ज पर अने मधुर गुजराती गीतो तमारा माटे फक्त लई आव्या छे। तो चालो विनोद राठौड़ ना स्वरमां मुकायेलू आ खूब सरस मजानू नॉन स्टॉप गरबा तमारा माटे चलावी दईए। ब्यूटिफुल गीत ब्यूटिफुल।

प्रिय श्रोताओं, सादर अभिवादन। श्रोताओं, सामाजिक जीवन में सांस्कृतिक दृष्टिकोण से आध्यात्मिकता का अपना महत्व है। आध्यात्मिकता किसी देश या समाज की संस्कृति को प्रदर्शित करती है। सामाजिक जीवन के उत्कर्ष के लिए जीवन में आध्यात्मिकता को स्थान देते हुए धर्म का पालन करने से न केवल वह आवश्यक है अपितु उसे अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि धर्म के पालन के परिणाम स्वरूप समाज में भय, शोक और रोग का कहीं नाम नहीं होता, केवल सुख ही सुख होता है।

0: श्रोताओं, जीवन में तेज बल धैर्य वीरता सहनशीलता उदारता आत्मजय क्षमा उद्योगशीलता स्थिरता व्यावहारिक निपुणता के साथ साथ भगवान के प्रति भक्ति को भी निर्दिष्ट किया गया है।
1: वक्रतुंड महाकाय

श्रोताओं, भक्तों में सहृदयता का सहज वास दिखाई पड़ता है। ये भक्त अपने आराध्य के गुण कीर्तन से जन समाज को भी भक्ति रस में मग्न करते रहते हैं। अपने आराध्य की प्रतिष्ठा कर जन समाज में भक्ति का प्रचार करने वाले ऐसे भक्त जनप्रियता के पात्र बनते हैं। उनकी उपासना सबको आप्लावित कर देती है।

श्रोताओ, कष्ट आने पर जीव को अकेला ही भोगना पड़ता है, परंतु भक्त जब भी कष्टों का सामना करता है तब तब उसका आराध्य उसकी रक्षा करने आ ही जाता है। इसलिए हमें भक्ति में अवश्य लीन होना चाहिए।

श्रोताओ, भगवान का भक्त जीवन और मरण किसी में भी आसक्त न होता हुआ समभाव में जीता है। वह संकट की घड़ियों में भी मन को ऊंचा नीचा अर्थात दावादोल नहीं होने देता। ऐसा संभव होता है क्योंकि भक्तों पर भगवान की असीम कृपा सदैव बनी रहती है।

श्रोताओं, साधक सुखाभिलाषी बन भोगों की काम न करता और प्राप्य भोगों के प्रति भी अप्राप्य निष्प्रिय भाव रखते हुए साधना में जीवन बिताता है।

श्रोताओ, भक्त वह ज्ञानी आत्मा है जो संसार में छोटे बड़े सभी प्राणियों को आत्मतुल्य देखता है। वह संयम में रहता हुआ तथा भक्ति में लीन अपने आराध्य की अनुकंपा का अधिकारी होता है। आज इतना ही, हमें आज्ञा दें।

0: 新朋友，不知不觉今天的音乐风景线已经接近尾声，感谢您的陪伴，希望今天的音乐为您周末增添了一份轻松与愉悦，也为您的心情留下了一道美丽的风景。祝您周末愉快，我们下次音乐风景线再见。音乐有风景，心中有远方，愿美好一路相伴。
1: सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार टीना से। टीना आपको नमस्कार।
2: नमस्कार, संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम कल शाम अपने चुनाव क्षेत्र नंबर 5 में मौजूद थे, जहां उन्होंने ट्रियोल स्थित रविंद्रनाथ गावाहन स्टेडियम का पुनः उद्घाटन किया। स्टेडियम के दोबारा खुलने के अवसर पर एक गाला मैच भी आयोजित किया गया, जिसमें कई युवा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अपने संबोधन में डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने पेंशन सुधार के मुद्दे पर विस्तार से बात की। उन्होंने एक बार फिर कहा कि लंबे समय तक मॉरिशस में लागू रही पेंशन व्यवस्था आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं थी। इस बार उन्होंने 2015 में IMF की एक रिपोर्ट का हवाला दिया। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि यदि यही व्यवस्था जारी रहती तो 2050 तक पेंशन पर होने वाला खर्च देश के GDP का 8% हो जाता, लेकिन प्रधानमंत्री के अनुसार IMF का यह अनुमान गलत साबित हुआ, क्योंकि मॉरिशस में पेंशन पर होने वाला खर्च आज ही GDP के 8% के आंकड़े को पार कर चुका है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने मध्य पूर्व में जारी युद्ध के कारण आयात पर पड़े असर का भी उल्लेख किया। मॉरिशस प्रिजन सर्विस ने जेलों के अंदर सिगरेट और ड्रग्स की तस्करी के खिलाफ कड़ा अभियान चलाने का फैसला किया है। जेल कमिश्नर राशिद अली बेकन ने कहा कि अगर कोई अधिकारी इसमें शामिल पाया जाता है तो उसे अपने कर्मों का जवाब देना होगा। उन्होंने जेलों में व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए लगातार तलाशी और नियंत्रण अभियान जारी रखने की बात दोहराई। साधारण वीडियो अब बड़ी कमाई का जरिया बन सकते हैं। सोशल मीडिया आज कई कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक असली इनकम का स्रोत बन चुका है। इस तेज़ी से बढ़ते ट्रेंड को देखते हुए सरकार इस डिजिटल अर्थव्यवस्था को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के लिए नई टैक्स संबंधी व्यवस्थाएं लागू कर रही है। और विदेश में अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयातोला अली खामेनाई के अंतिम संस्कार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान को एक सप्ताह की छुट्टी दी है क्योंकि हम अच्छे हैं। ट्रंप का ये बयान तेहरान के ग्रैंड मसोला में खामेनाई के अंतिम संस्कार की रस्मों के शुरू होने के बाद आया है। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई। थोड़ी देर में शोक समाचार। Allez bambou, montagne orime, allez bambou, montagne orime, et qui a 6 salles qui est 21 years old, qui est

0: श्री रामबरन बिकारी, श्री रामबरन बिकारी जो गुरु नाम से ज़रा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज शाम चार बजे उनके घर आले बांबू मोतायों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिया कॉन्स्टेंस सैंट पियर की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 4 PM। NHDC B18 55 साल के 55 years old के श्री लक्ष्मण सिंह कावाल, जो रवीन नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर NHDC B18 कौचिए से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। कॉम्पो रोड नोवेल फ्रांस में 78 साल के 78 years old के श्री भगवत धनहाऊ जो सुन क्वाफियर नाम से ज़रा जानी जाते थे कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज सुबह तीन बजे उनकी पत्नी श्रीमती प्रभा धनहाऊ के घर कॉम्पो रोड नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्रेमानियों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमिशन टुडे 3 PM। मिलान दो कॉन्फुक्रोमी 76 साल के 76 years old के श्री सादेव गुहा जो रमेश नाम से ज़रा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज सुबह तीन बजे उनके बेटे श्री सचिन देव गुहा के घर मिलान दो कॉन्फुक्रो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फेनिक्स की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रमिशन टुडे 3 PM। शोक में डूबे परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: सुहाना सफर। जी दोस्तों, 12:05 हुए हैं। सभी श्रोताओं को अनीता का प्यार भरा नमस्कार। हमारे दोस्तों को दिल से नमस्कार स्वीकार कीजिए। जैसे कि आप जानते ही हैं कि आप जुड़े हुए हैं आप ही के पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो मनोरंजन से, और शुरू होने वाला है सदाबहार गानों का खजाना कार्यक्रम सुहाना सफर। वेल दोस्तों, आज हम पहुंच गए हैं 4 जुलाई 2026, और हमें यह एहसास होता है कि आधा साल तो बीत गया है, और देखते ही देखते बाकी का आधा साल भी उड़नछू हो जाएगा। इसलिए बीते कल को भूलकर और आने वाले कल की फिक्र छोड़कर आज पर फोकस कीजिए। मौका है तो चौका मार दीजिए। वेल दोस्तों, कहने का अर्थ है यही है कि हमारे पास मात्रा आज है, जो भी कुछ करना है अभी कीजिए, और देखिए कि कैसे आने वाला कल खुद ब खुद जो है सुधर जाएगा। वेल, बातें तो बहुत होगी इस कार्यक्रम के दौरान, चलिए एक रोमांटिक गाने की ओर बढ़ते हैं।

0: सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, साल था 1964। फिल्म बन रही थी वो कौन थी। फिल्म के डायरेक्टर थे राज घोसला जी और म्यूजिक डायरेक्टर थे मदन मोहन जी। कहा जाता है कि मदन मोहन जी ने बहुत लगन एवं मेहनत से लगजा गले जो है यह गाना तैयार किया था। उन्हें पूरा विश्वास था कि यह धुन कुछ खास बनेगी। बड़े उत्साह के साथ वे राज घोसला जी के पास पहुंचे और उन्हें गाना सुनाया, लेकिन धुन खत्म होते ही राज घोसला जी खामोश हो गए। कुछ पल बाद उन्होंने कहा, मदन, ये गाना फिल्म के हिसाब से बहुत धीमा लग रहा है, मुझे कुछ और चाहिए। और इसी के साथ गाने को रिजेक्ट कर दिया गया था। मदन मोहन जी के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। उनके दिल में कहीं ना कहीं एहसास था कि ये गाना आम नहीं है, खास है। लेकिन फिलहाल उनके बात सुनने वाला कोई नहीं था। फिल्म की शूटिंग नज़दीक आ रही थी, लेकिन कोई दूसरा गाना फाइनल नहीं हुआ था। इसी बीच मदन मोहन जी ने फिल्म के हीरो मनोज कुमार जी से मदद मांगी। गाने सुनते ही मनोज कुमार जी जो हैं बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने राज घोसला जी से गाने को फिर से सुनने की गुजारिश की। मनोज कुमार जी के कहने पर राज घोसला जी ने पुनः गाने को सुना और इस बार उन्होंने हर सुर को महसूस किया, हर लफ्ज को समझा और फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तथा गाने को अप्रूव्ड भी कर दिया। तो दोस्तों, इससे पता चलता है कि हर कीमती चीज, हर खूबसूरत चीज के पीछे एक गहरी कहानी होती है।

0: ना सफर।
1: जी दोस्तों, 12:21 हुए हैं और आप सुन रहे हैं सुहाना सफर रेडियो मनोरंजन पर अनीता के साथ। और बेशक यदि किसी के नाम कुछ आप डेडिकेट करना चाह रहे हैं, किसी के लिए एक गाना मांगना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स यू कैन मैसेज अस ऑन 5250-6200 पर या फिर फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं 4028070 पर। और यहाँ पर काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं और अनीता जी फी कॉम्प्लेक्स से उन्होंने हमें फ़ोन किया बड़े प्यार से, थैंक यू जी। और आप कहती हैं आप तैयार होने जा रही हैं, शादी में जाना है, ऑफ कोर्स शादी का सीज़न चल रहा है एंड यू आर गेटिंग योर सेल्फ रेडी, खूबसूरत और पंछी बन के आप उड़ने वाली है साड़ी पहनकर। तो यहाँ पर आपने गीत मांगा है फिल्म चोरी चोरी पंछी बन उड़ती फिरो, और इसी प्रकार सच धज के आप उड़ेंगी। और यह गाना खास कर जाएगा पति राज के लिए, बेटे अंकुश है और नीतीश हैं, बहुआ सीमा है, मनीषा है, पोती हिमेशा आध्या और पोते लद्दू गोपाल। तो चलिए, हमारे टीम के लिए आपने भी गाना मांगा है, थैंक यू इसके लिए जी। तो चलिए इस गाने को हम भी गुनगुनाते हैं।

0: सफर सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, यहाँ पर जो सफ़र है सुहाना बन गया है आप लोगों के फ़ोन कॉल्स गानों से, और मौसम भी सुहाना है। काफ़ी लोग यहाँ पर साथ दे रहे हैं। और रोशना से विना जी आप कहती है कि आप सुनना चाह रही हैं जीने की राह फिल्म का गाना मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में एक बंजारा। तो यहाँ गाना जाएगा विशेषकर पूरे नंदू परिवार के नाम जो ऑसेनाल से जो हैं साथ दे रहे हैं, और खासकर आपकी बहन गीता के नाम।

दोस्तों, कहा गया है कि आँख संसार की हर चीज देखती है, मगर आँख के अंदर कुछ चला जाए तो वह कुछ भी नहीं देख पाती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरों की बुराइयां तो देख पाते हैं, पर अपने भीतर बैठी बुराइयां उससे दिखाई नहीं देती है। जी दोस्तों, कभी कभी हमें भी अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि हम में भी बुराइयां हैं और इस पर काम जरूर करना चाहिए। जी दोस्तों, कृष्णा फ्लैग से देवयानी जी साथ दे रही हैं और आपकी फरमाइश है फिल्म संगम का गाना ऑफ कोर्स ये मेरा प्रेम पत्र पर कर मोहम्मद रफी साहब की एक बार फिर से आवाज़ सुनते हैं। यह गाना जाएगा पूरे

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: जी दोस्तों, रिवर जुगनू से माला जी भी जुड़ गई है हमारे साथ बड़े प्यार से, और आप सुनना चाह रही है रामपुर का लक्ष्मण फिल्म का गाना, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर ऑफ कोर्स, फ्रीली जेंस एक ही साथ। और यह गाना जो आएगा खासकर जो है किरण के नाम है, कनीर है, कनील है, कविश है, सत्यम है और शिव के नाम। तो चलिए, जिन्हें यह गाना पसंद है उन सब के नाम यह गाना।
2: अरे

जी दोस्तों, यह गाना खासकर प्रकाश वती जी के नाम जो अभी बेल्जियम से गाने को कार्यक्रम को वे एंजॉय कर रही है और कह रही है कि वहां का मौसम मॉडरेट है।

0: खाना सफर खाना सफर
1: जी दोस्तों, ग्रैंड ग्रुप से श्यामा जी साथ दे रही हैं और आपने एक सुंदर सा मैसेज भेजा है यहाँ पर हमारे लिए। और पहले से ही हम आपको कहते हैं धन्यवाद जी। आप कहती है कि MBC की बगिया को महकाने वाली और चहकने वाली बुलबुल का सुस्वागतम है। सुहाना सफर की महफिल सजाने वाली को शत शत धन्यवाद। थैंक यू जी आपके स्वीट मैसेज के लिए। आपकी फरमाइश है फिल्म रानी रूपमती, लता जी और मोहम्मद रफ़ी साहब का जो संगम है, उनकी आवाज़ों का जो संगम है आप सुनना चाह रही हैं। और यही गाना जो आएगा खासकर आपके भाई जो है जयप्रकाश जी के नाम भाभी हैं नम्रता, नेफ्यूज़ हैं युधिष केशव, और आपकी सहेलियां हैं वीना हामफल जी, देवयानी जी, नंदिनी ओकलू जी, और सभी परिवार के नाम यह गाना जाता है। तो चलिए इस गाने को भी हम एंजॉय करते हैं।

दोस्तों मोका से सुदेवी जी साथ दे रही है और आप सुनना चाह रहे हैं फिल्म खुशी का गाना टाइटल सॉन्ग। और यहाँ गाना खास कर जाएगा आपके पति राज के नाम, बच्चों के नाम, नाती नातिन के नाम और हमारी टीम के लिए। थैंक यू जी एंड एंजॉय दिस सॉन्ग।

जी दोस्तों, इन गानों के माध्यम से हम आपके लिए लाए हैं बहुत सारी खुशियाँ। और वैसे तो कहते हैं कि आशा जी जो हैं उन्हें कौन भुला सकता है, उनकी आवाज़ को शुअर्स जो हैं वर्सेटिलिटी उनमें थी। शी वॉज डिस्क्राइब्ड इन द मीडिया एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सिंगर्स इन हिंदी सिनेमा, और उनकी आवाज़ उन्हें कैसे हम भूल सकते हैं। हालांकि वे नहीं हैं यहाँ पर, लेकिन हम आज भी उनके गानों के माध्यम से हम उन्हें याद करते हैं। और हम जानते हैं कि नवीन जी आप उनके बड़े फैन हैं और आप उनके ही गाने का उनके ही आवाज़ का गाना सुनना चाह रहे हैं। यहाँ पर फिल्म चरित्रहीन है, तो चलिए सुनते हैं यह गाना आपके नाम। और इसी गाने के साथ हम बढ़ेंगे 1 बजे के समाचारों की ओर।

0: सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं सुमायरा अकबर अली से संक्षिप्त समाचार. आपको नमस्कार.
1: नमस्कार रादाब. फ्रॉम मिलिटेंट प्रोग्रेसिस के दूसरे लीडरों के साथ प्रेस को मुखातिब करते हुए पुलबे रोंजे ने कहा कि फाइनेंस बिल का कम आमदनी वाले परिवारों और छोटे व मध्यम उद्योगों पर नकारात्मक असर पड़ने वाला है. पूर्व डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मुशरस स्टैग्नेंट स्थिति में ही रहेगा. तीन दिनों से कई पैदावारों पर नई सब्सिडियां लागू हैं. परचेसिंग पावर शील्ड की घोषणा बजट में की गई. इनमें मकारोनी सीरियल कॉर्न मटन आदि शामिल हैं. बड़े सुपरमार्केटों में लोगों को नए दामों में ये पैदावारें खरीदने का मौका मिल रहा है. फ्रांस में उबर प्लेटफॉर्म पर रोक लगाई गई है. सन 2025 से एक विज्ञापन अभियान शुरू किया गया था जिस पर मुकदमा चलाया गया. टैक्सी पारिजिया की जगह उबर पारिजिया नाम का इस्तेमाल करने पर उद्योग को 50,000 यूरो का जुर्माना भरना पड़ेगा. वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबलों में फुटबॉल फैंस को ज़बरदस्त मैच देखने को मिला. अर्जेंटीना ने काबूवेद के खिलाफ एक्स्ट्रा टाइम तक चले रोमांचक मुकाबले में 3-2 से जीत हासिल करके अगले दौर में जगह बनाई, जबकि पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 और स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हरा दिया है. तो अभी के लिए बस इतना ही. शोक समाचार सुनिए. जानकी रोड पुत्रोदो विलाज में 78 साल की 78 ईयर्स ओल्ड श्रीमती बृहस्पति राम, श्रीमती बृहस्पति राम जो सत्या के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं, की मृत्यु हो गई हैं. अर्थे कल सुबह 10 बजे इनकी बेटी सीता झुमक के घर जानकी रोड पुत्रोदो विलाज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड की शमशान भूमि ली जाएगी. क्रिमेशन टुमारो 10 AM. अविनी जीव नारायण पालमा कथोबोन में 59 साल के 59 ईयर्स ओल्ड श्री सूर्यदत्त लखन, श्री सूर्यदत्त लखन जो अशोक औपौत्य के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं. अर्थे कल सुबह साढ़े नौ बजे इनकी पत्नी पूनम लखन के घर अविनी जीव नारायण पालमा कथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ली जाएगी. क्रिमेशन टुमारो 9 AM. शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है.
2: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: अपना सफर।
1: जी दोस्तों, एक बजकर 3 मिनट हुए हैं और कार्यक्रम को जारी रखते हैं। यहाँ पर आपकी सखी अनीता हाजिर है आपका मनोरंजन करने के लिए रेडियो मनोरंजन पर, और कार्यक्रम चल रहा है सुहाना सफर 5052506200 पर मैसेजेस एंड 4028070 पर आपके फोन कॉल्स का इंतजार हम कर रहे हैं। और यहाँ पर इस रोमांटिक गाने का की फरमाइश की है यहाँ पर हरीश जी, जो बोबासा से साथ दे रहे हैं। ऑफ़ कोर्स बहुत ही प्यारा गाना है, और जब से नज़रें मिली किसी खास से, ऑफ़ कोर्स अनु से, तो आपका जीवन जो है एक और ही धुन गा रही है आपकी ज़िंदगी। तो चलिए इस गाने को सुनते हैं, डेडिकेटेड टू वन एंड ओनली अनु।

जी दोस्तों, कट्रोबोन से सुनीता जी साथ दे रही हैं और आप कहती हैं कि आपकी भाभी अंजना का जन्मदिन है तो ढेर सारी बधाइयां भाई योगेश की ओर से बेटा है अंशेश, बेटी है अंशिनी, परसेनु परिवार, गुरुचंद परिवार, नंद परिवार, भजन परिवार, इन सब के जो है इन सब के द्वारा आपको बधाइयां दी जा रही है। सो हैप्पी बर्थडे टू यू अंजना जी। और जितने भी लोग आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं उन सब के नाम यहाँ गाना।

दोस्तों, कहा गया है कि किसी बात का इतना स्ट्रेस मत लो, क्योंकि ज़िंदगी में हर चीज़ ना हमारी मर्ज़ी से होती है ना हमारे समय से। कभी कभी हम बहुत कोशिश करते हैं सब कुछ जल्दी पाने की, कुछ रिश्तों को बचाने की, कुछ सपनों को पकड़ कर रखने की, लेकिन फिर भी चीजें वैसी नहीं होती जैसे हम चाहते हैं। तब समझ में आता है कि ना किस्मत से ज्यादा कुछ मिलता है और ना वक्त से पहले। जो तुम्हारा है वो तुम्हें ढूंढते हुए भी तुम्हारे पास आ जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसे कितना भी रोक लो, एक दिन तो वो दूर चला ही जाएगा। इसलिए हर समय हर बात पर परेशान होना छोड़ दीजिए, बस थोड़ा सा सब्र रखो, सब कुछ हो ही जाएगा। जी दोस्तों, गज़ल से सजीत जी साथ दे रहे हैं और आपकी मांग है एक हसीना दो दीवाने फिल्म का गाना, और आपसे काफ़ी बातें हुई और काफ़ी अच्छा लगा सजीत जी। और आप कहते हैं कि आप आए तो रोशन हो गया यह समा, धन भी कम हो ही गया। थैंक यू जी यहाँ स्वीट मैसेज के लिए सजीत जी। और हम जानते हैं कि हमारा फ़ोन, नॉर्मल फ़ोन मैसेज जो है वो नहीं आ रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि हमेशा ज्योति जी शाटो डे बनारस से मैसेज भेजती रहती है पूरे मैडम परिवार के लिए, तो अगला गाना आपके नाम भी जाएगा। और साथ ही साथ हमेशा जो है मौदालबिया से जो है मालिनी जी साथ देती रहती है, साथ ही साथ सुरीनाम से हमेशा जयश्री जी साथ देती रहती है, लेकिन कभी आपको लाइन नहीं मिलती है। तो मामा ऐशवंती को प्रणाम, और अगला गाना आप लोगों के नाम भी।

जी मोदालवे सनीता जी ने हमें एक छोटी सी पोएम भेजी है और आप कहते हैं कि रिश्ते कभी पुराने नहीं होते, चाहे

कितनी दूरी आ जाए, कुछ लोग दिल में बस जाते हैं जो भुलाए नहीं जाते। जी हाँ दोस्तों, यहाँ फरेब फिल्म का यह गाना जो आएगा करुणा अमृता सभी दोस्तों के नाम, तो चलिए 90s का यह गाना हम भी एंजॉय करते हैं।

विश्वानी डुमन जी जो हैं वाकवा से साथ दे रही हैं, और फिल्म आमने सामने का गाना आपने डेडिकेट किया आपकी बहन इंदिरा, शारदा और सहेली नीला, प्रतिभा, शोभा और गीता गजाधर के लिए। तो चलिए इस गाने को गुनगुनाते हैं।

जी दोस्तों, बन में ऐसे शीला जी साथ दे रही हैं और आपकी फरमाइश है रोटी कपड़ा और मकान का गाना लता जी और मुकेश जी की आवाज़ों में। तो चलिए, यहाँ गाना आपके लिए खास कर और आपने हमारे लिए भी डेडिकेट किया, थैंक यू इसके लिए जी। तो चलिए, मैं ना भूलूँगा।

जी दोस्तों, मैं ना भूलूंगा। और यहाँ पर राधा जी मोचिदा से साथ दे रही है और आप कहती है कि आपकी बहन आपके यहाँ आई हुई है, तो आप फिल्म हम दोनों का गाना अपनी प्यारी बहन वीना के लिए डेडिकेट करना चाह रही है। तो चलिए सुनते हैं फिल्म हम दोनों का गाना।

0: सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, काफी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पर जो है किसी ने हमें एक प्यारा सा मैसेज भेजा है, लेकिन नाम नहीं भेजा आपने, कोई बात नहीं। लेकिन आपने, आपकी फरमाइश थी कि आप सुनना चाह रही हैं फिल्म फांसी का गाना, लेकिन नहीं मिल रहा है। लेकिन चूंकि आपने सिंगर्स का नाम बताया, मोहम्मद रफ़ी और सुलक्षणा पंडित, तो उन दोनों के गाए हुए गाना ही मैं आपके नाम कर रही हूँ। फिल्म है महुआ, तो चलिए आपके नाम यह गाना चल पड़ा।

दोस्तों, कहा गया है कि जहां सिर्फ दिखावा हो वहां खामोश रहना अच्छा है। मित्र, दुनिया बस चमक देखती है, असली मेहनत तो तुम्हारी अपनी होती है। जिसे खुद पर भरोसा है उसे अकेले चलने में डर नहीं लगता है। पुरानी बातें छोड़ देने से आगे का रास्ता सरल हो जाता है। जो अकेले चलना जानते हैं वही जिंदगी को गहराई से समझते हैं। मन शांत हो जाए तो जिंदगी की हर उलझन अपने आप सुलझ जाती है। जी दोस्तों, अगर शांति से हम सोचेंगे तो ऑफ कोर्स रास्ता जो है मिल ही जाएगा। और यहाँ पर एक अंतिम गाना होने वाला है और यही गाना जाएगा लालमाती की सुनीता जी के नाम। आपने फिल्म जान से प्यारा का गाना मांगा, लेकिन अफसोस की बात यहाँ गाना हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए गोविंदा का ही गाना हमने आपके लिए डेडिकेट किया। और यही गाना जाएगा हमारे उन सुनने वालों के नाम जिन्हें लाइन नहीं मिली आज। कटरबोन से बबू अनंतवा जी हैं, जीवंत जी हैं, वाकवा से फुलवंती जी हैं और वाकवा से सुबोध जी है। तो चलिए, या इस गाने के साथ मैं आप सबको अलविदा कहती हूँ। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय और बिल्कुल रेडियो मनोरंजन पर ही। साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंजॉय दिस वन। बाय बाय, टेक केयर।

0: समाचार सुमेरा जी के साथ। नमस्कार आदाब।
1: नमस्कार आदाब। आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता विश्व सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है। मॉरिशस में करीब 900 सहकारिता संगठन हैं जो मुल्क की अर्थनीति के अहम सेक्टरों में काबिलेदाद योगदान दे रहे हैं। इनकी हिम्मत अफजाई के लिए कई पहल ली गई हैं, खास तौर पर नई नस्ल को सहकारिता क्षेत्र में कटिबद्ध होने में और हौसला देने के लिए। नौजवानों से सहकारिता क्षेत्र का शोला जगाए रखने की उम्मीद है ताकि सॉलिडेरिटी और समर्थन की बुनियाद पर खड़े किए गए आर्थिक मॉडल में नवीनता लाकर इसे आगे बढ़ाया जाए। कल कैबिनेट की बैठक में ये नोट लिया गया कि प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम फाइनेंस बिल को अंतिम रूप देने के लिए एक आर्थिक कमेटी की अध्यक्षता संभालेंगे। समिति की पहली बैठक बुध 8 जुलाई को लगाई जाएगी। पुराने जज विनोद बुलेल कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन की अध्यक्षता संभालेंगे। पूर्व अध्यक्षा की हैसियत से आफुंग च्वी युंग चोंग ये जिम्मेदारी संभालेंगी। आयोग के दूसरे मेंबरान यानी लामुन शिराम, सत्यजीत बुलेल, डॉक्टर अमर रूपानंद महादेव, जोनाथन गाबात, मीरान मितोबान, डॉक्टर अमीना जहांगीर, चोजू जुअल एडवा, अनसूफी जुलियन और दानिशा सोनम हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया। मिलिटेंट प्रोग्रेसिस्ट के दूसरे लीडरों के साथ प्रेस से मुखातिब होते हुए पुल बेरोंजे ने कहा कि फाइनेंस बिल का कम आमदनी वाले परिवारों और छोटे एवं मध्यम उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव होंगे। पूर्व डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मॉरिशस स्टैग्नेंट स्थिति में ही रहेगा। विदेश में फ्रांस में उबर प्लेटफॉर्म पर रोक लगा दी गई है। सन 2025 से एक विज्ञापन अभियान शुरू किया गया था जिस पर मुकदमा चलाया गया। टैक्सी पैरिजियन की जगह उबेर टैक पैरिजियन नाम का इस्तेमाल करने पर उद्योग को 50,000 यूरो का जुर्माना भरना पड़ेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। कंफुको में 76 साल के 76 years old श्री सदेव गुराई जो रमेश के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थे आज सुपहर तीन बजे इनके बेटे सचिन देव गुहाई के घर कंफुको से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टू द एट 3 PM। जीके स्ट्रीट ओकुले में 58 साल की 58 years old श्रीमती यशवंती तिलक पैदाइशी नाम गोपी जो वृंदा के नाम से ज्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुपहर तीन बजे इनके घर जीके स्ट्रीट ओकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बीगागा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 3 PM। सिमिट्री रोड प्लान मानियों में 36 साल के 36 years old श्री वितीश बुदन जो निशले के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी सोमवार को साढ़े चार बजे इनकी माँ संध्या राबूजी के घर सिमेट्री रोड प्लानमानियों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लानमानियों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन ऑन मंडे एट 4:30 PM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।

नमस्कार श्रोताओं, इतिहास के झरोखे से कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो श्रोताओं, इतिहास के झरोखों से झांकना बड़ा ही ज़रूरी है। अगर अपने इतिहास को भूल जाएंगे तो अपने पूर्वजों को भूल जाएंगे, और जिसके पास पूर्वज नहीं, जिसके पास धरोहर नहीं, वह ज़िंदगी में क्या करेगा? वह तो त्रिशंकु की तरह लटका हुआ दिखाई देगा ना। तो श्रोताओं, बड़ी ज़रूरत है कि हम अपने इतिहास के पन्नों को पलटते रहें और अपने महलों को, जो इतिहास के झरोखे हैं, उसमें से जो लाइट, उसमें से जो प्रकाश, जो हवा आ रही है, उस सबको महसूस करें, क्योंकि उन पन्नों में बहुत से राज होते हैं, बहुत सी विरासत होती है। इसीलिए तो हर देश, देखिए, अपने किलों की छानबीन करता है, और यहाँ तक कि आर्काइव्स में सब चीज़ें देखी जाती हैं, क्योंकि उनके सहारे हम यह जान पाते हैं कि कितने संघर्षों के बाद हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो श्रोताओं, इतिहास के झरोखे से आज हम चलते हैं ज़रा सूरीनाम की तरफ। ये मत सोचिए कि मैं मॉरिशस के सूरीनाम में ले जा रही हूँ, मैं सूरीनाम देश की ओर ले जा रही हूँ। उनका भी इतिहास कुछ हमारे जैसा ही था। जैसे हमारे पूर्वज बेचारे बहुत कष्ट में, वहाँ रोटी नहीं थी, ज़मीन नहीं थी, कर्जे थे, ब्रिटिश साम्राज्य के लोगों की मार थी, और केवल अपनी रोजी रोटी और फिर एक लालच कि पत्थर उल्टोगे तो सोना मिलेगा, मरता क्या ना करता यहाँ पहुँचे थे। सूरीनाम में भी कुछ ऐसा ही इतिहास है। तो आज हम चलेंगे कुछ सूरीनाम की बातों को सुनने और उस पर चर्चा करने। तो चलिए ये गीत सुनते हैं और फिर आपके साथ मैं जुड़ती हूँ।

श्रोताओं, चलिए चलते हैं जरा उस देश की ओर। उत्तर अमेरिका की बातें तो हम न्यूज़ में बहुत सुनते रहते हैं, और वहाँ के प्रधानमंत्री की बातें, राष्ट्रपति की बातें, और न्यूज़ में तो बहुत कुछ गर्मा गर्म चलता ही रहता है। लेकिन आज तो हम इतिहास के पन्नों की ओर चलेंगे। श्रोताओं, दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्व के जो घने वर्षा वन हैं और वहाँ पर वन्य जीवन ज़बरदस्त है, यूँ कहें कि प्रकृति का सौंदर्य वहाँ पर अनुपम है। जैसे मॉरिशस के लिए कहा जाता है कि भगवान ने मॉरिशस को रचने से पहले या मॉरिशस को जब बनाया उससे पहले स्वर्ग की भी रचना नहीं की थी। मतलब यहाँ का सौंदर्य स्वर्ग से बढ़कर कभी कभी लोग महसूस करते हैं। सूरीनाम की धरती भी श्रोताओं कुछ ऐसी ही थी। वास्तव में हमारे पूर्वजों को या भारतीय गिरमिटिया लोगों को जब वहाँ पर लेकर गए, उसके पीछे उद्देश्य तो यही था ना कि ऐसी जगह को बसाया जाए, उसको अपनी कॉलोनी बनाया जाए और वहाँ जितना लाभ वे लोग कमा सकें। हमारे आका या शासक उस समय यही सोचते थे। सचमुच सूरीनाम में विपुल सौंदर्य है और वहाँ की मिट्टी भी बड़ी उपजाऊ है। देखिए, मॉरिशस में तो एक जगह का ही नाम है बोनतेया, मतलब जहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है। तो श्रोताओं, सचमुच वहाँ पर भी मिट्टी बड़ी उपजाऊ है और इस गणराज्य को पहले डच गयाना के नाम से जाना जाता था। कभी कभी लगता है कि जैसे महाकवि जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी ने सिंगलगढ़ की जैसे परिकल्पना की है, ठीक वैसे ही सूरीनाम की भी कल्पना है। फूले फरे छवे ऋतु जानहूँ सदा बसंत, मतलब वहाँ पर भी छह ऋतुएँ हमेशा हैं और सामाजिक संस्कृति है वहाँ पर, और इतिहास ने अनेक करवट ली वहाँ पर, अनेक जातियाँ वहाँ पर पली बढ़ी और 7 जातियों के लोग आज वहाँ पर बसे हुए हैं। तुलना करें तो मॉरिशस में भी देखिए आज हम सब मिलकर कितनी अच्छी तरह रहते हैं, और एक जाति का प्रभुत्व नहीं है। सभी जातियाँ एक दूसरे के त्योहारों का, विश्वासों का, रहने के ढंग का सम्मान करती हैं। ठीक ऐसे ही सूरीनाम में भी आज 7 जातियों के लोग मिलते हैं, जैसे अमर इंडियन, डच अथवा यूरोपियन, अफ्रीकी मूल के लोग, चीनी, हिंदुस्तानी, इंडोनेशियन और लेबनीज। तो ये सभी लोग वहाँ पर मिलकर रहते हैं। श्रोताओं, इस तट की खोज सबसे पहले 1499 में

उलांसो खोजिया या अमेरिंगो वेस्पुसी ने की थी, किंतु आवागमन 17वीं शताब्दी में ही शुरू हुआ। और जो बातें वहाँ क्या फैली थी कि वहाँ पर सोने की खाने हैं। तो श्रोताओं, याद करिए मॉरिशस को भी, अगर मॉरिशस के भी इतिहास की ओर हम लौटें तो यही है कि पत्थर उल्टोगे तो सोना मिलेगा। ठीक वहाँ पर भी इसी तरह से जब 17वीं शताब्दी में शिप्स आने जाने शुरू हुए तो ये बात फैलाई गई कि वहाँ पर सोने की खाने हैं। और 1593 में स्पेन ने इस क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया। बाद में कई यात्री इसको खोजने के लिए भी गए और 1650 में बिलोबी नामक अंग्रेज़ ने यहाँ पर अपनी कॉलोनी की नींव डाली और थोड़ा निर्माण कार्य शुरू किया। कॉफ़ी, ककाओ और कपास की खेती के लिए अब जो मालिक है वे थोड़ी करेंगे, अब नौकर की, गुलामों की आवश्यकता हुई। तो जो वहाँ के स्थानीय अमर इंडियन जिनको कहते हैं, उनसे काम कराने की कोशिश की गई, लेकिन उन लोगों ने उनकी बात को उतना ध्यान नहीं दिया और मना किया। फिर ये लोग अफ्रीका से गुलामों को खरीद कर लेकर आए और उनसे काम कराया जाने लगा। मॉरिशस में भी यही हुआ था ना, मेडागास्का के ही लोगों ने मेडागास्का के गरीब गुलामों को बेचा था और वे यहाँ पर काम कर रहे थे, किंतु ये गुलामों से भी खेतीबाड़ी का काम उतना सफल नहीं हुआ। फिर वहाँ पर कुछ चीनी लोग लाए गए, लेकिन सुधार नहीं इतना दिख रहा था। फिर पुर्तगाली लोगों को भी लाया गया, पर फिर भी खेती में उतना फ़ायदा नहीं हो रहा था। और आप सभी को पता है, इधर विश्व भर में दास प्रथा खत्म होने लगी थी और मालिकों के लिए संकट का समय शुरू हो गया था और श्रमिक मिलते नहीं थे। इस कारण उनका काम नुकसान की ओर जा रहा था। ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी तो भारत में बैठी ही थी, तो ब्रिटिश शासन था, उन लोगों का ध्यान भारत की तरफ गया, एशिया की तरफ गया, और उनको लगा कि यहाँ से मजदूर मिल सकेंगे। बस वही ठगा ठगी की कहानी शुरू हुई। तो चलिए गीत सुनते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं।

0: इतिहास के झरोखों से
1: श्रोताओं, इतिहास का झरोखा यदि ना हो तो पता कैसे चलेगा कि नींव कैसे बनी। जिन देशों की सभ्यताएं हजार वर्ष पुरानी हैं, जिनकी संस्कृतियां 6-6 हजार वर्ष पुरानी हैं, वहां पर तो आप पूछिए ही मत, वहां पर तो इतिहास के पन्नों को खोलना भी आसान नहीं होता, क्योंकि किसी जमाने में तो केवल श्रुति परंपरा के सहारे ही गुरुओं ने अपने ज्ञान को शिष्यों को दिया था। ये तो शुक्र है कि वह श्रुति परंपरा इतनी मजबूत थी कि बाद में जब प्रेस का आविष्कार हुआ तो बहुत सारे ग्रंथ हम छाप पाए और आज हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं। अफसोस, पढ़ने के लिए सब कुछ है, आज पढ़ने वाले कम हो गए हैं। तब गुरु खींच तान कर शिष्य की ऐसी खिंचाई किया करते थे कि पढ़ना ही है, याद करना ही है। आप सोचिए, इतने बड़े ज्ञान की परंपरा धरोहर के रूप में आज भी जीवित है। आयुर्वेद हो, वैदिक ज्ञान हो, शास्त्र हो, पुराण हो, तो श्रोताओं, अभी कुछ देशों की सभ्यताएं उतनी पुरानी नहीं होती, लेकिन फिर भी चाहे 200 साल भी पुरानी हो, ढूंढना तो चाहिए ना कि इतिहास के पन्नों में क्या छिपा है। ठीक ऐसे ही सूरीनाम की भी

जब हम चर्चा करते हैं तो 1870 में, अभी मैंने आपसे कहा कि वहाँ पे अब मजदूर नहीं मिल रहे थे, नुकसान हो रहा था ब्रिटिश शासकों को, तो 1870 में रानी विक्टोरिया और हॉलैंड के जो सम्राट थे विलियम तृतीय, उन्होंने एक समझौता किया और उस समझौते में क्या बात कही कि भारत से सूरीनाम के लिए गिरमिटिया या शर्तबंद मजदूर लाने चाहिए, क्योंकि शर्तबंद का मतलब हम दास थोड़े खरीद रहे हैं, एक शर्त के अंतर्गत उनको, एक एग्रीमेंट के अंतर्गत उनको लेकर आएंगे। कहना ये चाहिए कि दास प्रथा को एक नया कपड़ा पहना दिया गया गिरमिटिया या शर्तबंद या एग्रीमेंट पर आने वाले मजदूरों का, और बस रास्ता खुल गया और कितने ही मजदूरों को लाने के लिए डच एजेंट जो थे कलकत्ता में, उन लोगों ने अपना डिपो खोला। डिपो का मतलब ऑफिस खोला उन्होंने। अब ये जो डिपो खोला, इन एजेंट्स को हर मजदूर को लाने पर एक प्रतिशत मिला करता था। आप ये लोग अपने आगे लोगों को रखते थे जो गांवों में जाकर नज़र रखते थे कि कोई दुखी है, किसी के यहाँ बहुत मजबूरी है, बहुत समस्या है, तो ये लोग जल्दी पकड़ में आ जाएंगे। तो ये लोग जो एजेंट थे, ये अपने जो कारिंदे थे, जब उनको वहाँ रखते थे, कहाँ कहाँ भेजा, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद, बनारस, बस्ती, मथुरा, इन सब जगह पर उन्होंने उपकेंद्र खोले। उपकेंद्र मतलब सब डिविजन्स खोली उन्होंने, और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों, बिहार की जनता, उन सब में कहा कि समुद्र के बीचों बीच श्री राम का एक द्वीप है जहाँ हर प्रकार की सुविधाएं हैं। अरे तुम पैसा ही नहीं, धर्म भी वहाँ कमाओगे, क्योंकि वहाँ पर श्री राम जी का द्वीप है। याद करिए, हमारे गिरमिटिया मजदूर मॉरिशस को मारीच द्वीप कहा करते थे, और मारीच का संबंध राम कथा के साथ है। ठीक ऐसे ही आप देखिए, शासक कितने चतुर होते हैं, जो कमज़ोर चीज़ होती है, क्योंकि उस समय लोग गरीब, थोड़ा अनपढ़, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत शोषण किया था, तो इस कारण कितने हमारे गुरुकुल नष्ट कर दिए, पुरानी शिक्षा पद्धति नष्ट की। तो वहाँ पर जब ये सब शुरू हुआ तो इन्होंने देखा कि भारतीय लोग बहुत धार्मिक होते हैं, अपने भगवान में बहुत विश्वास रखते हैं, तो ठीक इनको भी यही कहा कि चलो श्री राम जी का द्वीप द्वीप है, वहाँ धन भी कमाओगे, धर्म भी कमाओगे। बस श्री राम देश के सुख और धर्म की लालसा ने इन भोले भाले अनजान दुखी लोगों को मानसिक रूप से तैयार कर दिया। भर्ती किए गए 410 लोगों में से ज़्यादातर उस समय उत्तर प्रदेश के थे, और ये सब के सब 26 फरवरी 1873 को लाला रुख जहाज से रवाना किए गए। मॉरिशस में एटलस जहाज था, लेकिन वहाँ का जहाज था लाला रुख। तो श्रोताओं, इस जहाज के माध्यम से कथा वही थी दुख भरी, लेकिन लालच और उनकी दुख का और मजबूरी का लाभ इन लोगों ने खूब उठाया।

0: इतिहास के झरोखों से
1: श्रोताओं कहानी शुरू हो जाती है इतिहास के झरोखों की, जिन झरोखों से हमारे पूर्वज भी निकलकर झांकते हैं। सुरिनाम में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब कलकत्ता डिपो से 26 फरवरी 1873 को लाला रुख जहाज से इन लोगों को 410 लोगों को रवाना किया गया। ठीक वही कहानी जहाज की, समुद्री जहाज की यात्रा श्रोताओं छोटी नहीं थी। आप सोचिए, भारत से दक्षिण अफ्रीका की तरफ जाना, अनेक कठिनाइयां, खराब मौसम, 3 महीने 1 सप्ताह के बाद 5 जून 1873 को यह जहाज पारामारिबो पहुंचा। श्रोताओं मैं यह बताना चाहती हूं कि जिन क्षेत्रों से इन मजदूरों को बटोरा गया था, यदि मैं कहूं कि 99.9% उन लोगों में से किसी ने समुद्र देखा भी नहीं होगा। आप सोचिए, 3 महीने 1 सप्ताह समुद्र की यात्रा, ना कोई किनारा, ना कोई आगे दिख रहा, ना कोई पीछे, कितना भयभीत कर देने वाली यात्रा होगी। शायद कितने लोग तो उस समय समुद्री जहाज में बैठ के रोए भी होंगे। इसीलिए सब आपस में जहाजी भाई बन गए थे। तो श्रोताओं अब

श्रीराम की धरती पर जब इनके पांव पड़े तो कुछ तसल्ली हुई। बाद में 64 जहाज और लाए गए और लगभग 34,304 भारतीय मजदूर इन 64 जहाज़ों से सूरीनाम तक पहुंचाए गए।

फिर दर्द भरी कहानी और फिर अपने साथ जो धर्म और संस्कृति को लाए थे उसे बचाने की तड़प, क्योंकि यही तो उनकी पहचान थी। और आज हम अपने पूर्वजों को इसीलिए सलाम करते हैं, इसीलिए नतमस्तक होते हैं, इसीलिए याद करते हैं कि उन्होंने उस संस्कृति को बचाया जो उस देश की थी, जिसकी संस्कृति 6-7 हज़ार साल पुरानी है। तो ये बड़े गर्व की बात है। सूरीनाम के मजदूरों ने भी, गिरमिटिया शर्तबंद मजदूरों ने भी अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने की पूरी शिद्दत से कोशिश की थी।

0: इतिहास के झरोखों से।
1: और श्रोताओं, सचमुच इतिहास के उन पन्नों में बहुत दर्द छिपा है। इसीलिए आज जब मॉरिशस में भी हम इस बात की चिंता करते हैं कि अपने बच्चों को धरोहर के रूप में अपनी भाषा और संस्कृति देकर जाएं, उसके पीछे बड़ी पीड़ा है। यदि हमने नहीं दिया तो आप समझिए हम अपना धर्म, अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे हैं। वह जो हमारे ऊपर ऋण होता है ना, पितृ ऋण, वो चुकाना बहुत ज़रूरी है। जो अपने पिता, पितामह, पितामहों से हमें चीज़ें मिली हैं, उन्हें जिंदा अगली पीढ़ी को देकर जाएं। ऐसा ना हो कि हमारे अहंकार में और हमें लगे कि इसमें क्या रखा है कहकर हम एक धरोहर को नष्ट कर दें। श्रोताओं, यह जो धर्म, संस्कृति और भाषा, ये जो अतुल्य खजाना था उनके पास, यही उनका सहारा था। काली अंधेरी रातें जब अपने दर्द को वे लोग आपस में बांटते थे, उस समय इस धरोहर ने ही उनके लिए मशाल का काम किया था। और सूरीनाम में हिंदी भी इन्हीं गिरमिटिया मजदूरों के कारण ही आगे बढ़ी। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि हमें गर्व करना चाहिए। सूरीनाम की हिंदी सरनामी हिंदी कहलाती है, फिजी की हिंदी फिजी बात हिंदी कहलाती है, लेकिन मॉरिशस की हिंदी हिंदी है। यहाँ के लेखक कोशिश करते हैं मानक हिंदी का इस्तेमाल करने की। और सबसे बड़ी खुशी की बात कि हमारे बच्चे देवनागरी लिपि में हिंदी लिखते हैं। सूरीनाम में आज देवनागरी लिपि में लिखने वाले लोग बहुत कम हैं। अब इन मजदूरों ने काम तो बहुत किया, पर ये लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि पहले तो आदमी अपनी भूख को सुलझाता है ना श्रोताओं। यदि भूख नहीं सुलझेगी तो पढ़ेगा कैसे। पर फिर भी इनमें से कुछ लोग थे जिनको लगता था नहीं, संस्कृति की चीज़ों को बचाना होगा। और बहुत सारे लोगों को भोजपुरी, अवधी, मगही, मैथिली और ब्रज की भाषाएं आती थी। लेकिन सूरीनाम में जब इनको लाया गया तो अलग अलग प्लांटेशनों पर रखा गया, जिसके कारण ये लोग अपनी भाषा में ज़्यादा नहीं बोल पाए, तो धीरे धीरे परस्पर व्यवहार में हिंदी बढ़ने लगी और हिंदी की बोलियों का ज़्यादा प्रयोग होने लगा। और साथ ही हम सब जानते हैं, और मॉरिशस के निवासी तो विशेष रूप से जानते हैं, कि राम कथा, गीता, पुराण और सबसे ज़्यादा सत्यनारायण की कथा ये लोग अपने साथ लेकर आए थे। और दिन भर के परिश्रम के बाद रात को इकट्ठे बैठ कर ये मानस की चौपाइयाँ गाते, पढ़ते, कबीरा गाते, भजन गाते और फिर किस्से कहानियाँ भी सुनाया करते थे। कुछ गाँव की, कुछ होली की, कुछ रिश्तेदारों की, कुछ अपनी पौराणिक कथाएँ, और वहाँ पर भी बैठकाओं ने जन्म ले लिया। असल में जहाँ वो इकट्ठे बैठते थे उसको ही लोगों ने बैठका कहना शुरू कर दिया। और देखा जाए तो ये बैठका धर्म, संस्कृति और भाषा के प्रचार प्रसार का, जिसे कहते हैं ना, अड्डा, वह बन गई। और मॉरिशस में भी देखिए आज तक बैठकाएँ जिंदा हैं, और हम जिंदा रखना चाहते हैं क्योंकि ये पहचान है हमारे पूर्वजों के शुरुआती दिनों की।

0: इतिहास के झरोखों से।
1: सचमुच श्रोताओं, ये झरोखे बड़े ही मजबूत हैं। इनकी हवाएं बहुत कुछ सुनाती हैं, पर सुनने वाले कान चाहिए। सुरीनाम में बैठकाएं वहां भी शुरू हुई। देखिए, संस्कार वही थे। असल में उत्तर प्रदेश में, बिहार में या भारत के गांवों में रात को मंदिर में चौपाल, मतलब पेड़ों के नीचे, वहाँ पर भी वो लोग मिलते थे, आपस में पंचायत करना, दिन भर की समस्याओं की चर्चा करना। लेकिन वही परंपरा यहाँ पर भी आ गई और उसका नाम बैठक हो गया। और ये बैठकाएं आज ऐतिहासिक धरोहर के रूप में पहचानी जाती हैं। तो वहाँ पर स्वाध्याय मंडल बने। जो पढ़े लिखे लोग थे वो लोग आपस में एक दूसरे को पढ़ाने लगे और तैयार करने लगे। फिर हिंदी की कक्षाएं जैसे मॉरिशस में शुरू हुई, वहाँ पर शुरू हुई। और मंदिरों में चुपचाप वे लोग पंचायत लगाते थे ताकि किसी को पता ना चले कि वे क्या योजना बना रहे हैं। और फिर उन्होंने देवनागरी लिपि, जिनको आती थी, उन्होंने कोशिश की कि वे दूसरों को इसे सिखाएं, और दिन में थोड़ा पढ़ाना शुरू किया। ये काम किसी के घर में या झोंपड़ी में चुपचाप होता था। तो धीरे धीरे हिंदी भी वहाँ पर शुरू हो गई। और 20वीं सदी के तीसरे दशक से हिंदुस्तानियों के अंदर, मतलब 1930 के आसपास, एक सामूहिक जीवन जीने का भाव पैदा हुआ। जैसे मॉरिशस में जब गांधी जी आए तो उन्होंने कहा

इतने वर्ष हो गए तुमको इस भूमि पर काम करते हुए, ये जगह अब तुम्हारी है, तुम्हें इसके लिए परिश्रम करना है, अपने बच्चों को पढ़ाओ, राजनीति में सक्रिय भाग लो, देश में क्या हो रहा है उसे समझो। तो लोग जागने लगे और सभी अपने बच्चों को पढ़ाने की ओर तेजी से आगे बढ़े। तो ठीक ऐसे ही सूरीनाम में भी वह जो सामूहिक जीवन कि हम सब एक हैं, हम एक देश के हैं, ये जो संगठन का कार्य शुरू हुआ, इसके कारण बहुत सारी संस्थाओं का जन्म हुआ और धीरे धीरे फिर ताकत बढ़ने लगी। तब शहर और गांव में हिंदी की पाठशालाएं खुलने लगी और ये लोग पढ़ाने लगे अगली पीढ़ी को, और विरासत के रूप में जो उनके पास ज्ञान था वो देने लगे। और आज भी वे अपने आजा आजी का दर्द, मतलब जो उनके दादा दादी आजा आजी का दर्द बताते हैं, और उनके स्वरों में इतिहास के पन्नों में वह दर्द सुनाई देता है। जो भी भाव उन्होंने बोले उसमें पता चलता है कि जीवन में कितना अभाव था। वहाँ के एक पुराने कवि हैं जीत नारायण, देखिए नाम उनका होगा जीत नारायण, लेकिन कागजों में लिखते लिखते जीत नारायण हो गया। वे लिखते हैं, मर गईली, धंस गईली, मिट्टी में मिट गईली, देश की ताकत टूट गईल, फाट गए करेजा, भुकवान हैं हम, सोचिला का होई। बीते दिनों को याद करते हैं अमर सिंह रमण, उनकी तो आंखों में पानी ही आ जाता है। अरकाटी जो एजेंट था उसकी चाल ने कैसे उनको ठगा वह सुनाई देता है। वही दिनवा जब याद आवेला, अखियां में भरेला पानी रे, हिंदुस्तान से भाग कर आईली, यही है अपनी कहानी रे, भाई छूटा बाप छूटा और छूटी महतारी रे, अरकटिया खूब भरमवली से कहे पैसे कमब भर भर थाली रे। बहुत कहा थाली भर भर के पैसा मिलेगा, बस इसी भाव ने उन भोले भाले लोगों को बहुत ठगा।

की हिंदी वहाँ पर रोमन लिपि में लिखी जाती है। सन 1961 में ज्ञान अधीम ने सरनामी को सरकारी मान्यता दिलवाने के लिए काफ़ी कोशिश की और क्रियोली राष्ट्रीयता के समय टोंगो को महत्व दिया जा रहा था, लेकिन वे चाहते थे कि हिंदी को भी पूरी मान्यता मिले और उन्होंने इसके लिए काफ़ी राष्ट्रीय स्तर पर बहस भी चलाई और कहा कि इसे राष्ट्र की महत्वपूर्ण भाषा घोषित किया जाए, और हुई भी। और सरनामी नाम देना भी इसी रणनीति का एक हिस्सा रहा कि हिंदी नाम देंगे तो लोग नाराज़ होंगे, तो सरनामी नाम देना चाहिए। अधीन ने सरनामी को रोमन लिपि में लिखने का जो प्रस्ताव रखा, श्रोताओं, वह प्रस्ताव मान लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप आज भी सरनामी रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो श्रोताओं, हम मॉरिशसवासी तो गर्व के साथ आज कह सकते हैं कि हम हिंदी पढ़ सकते हैं, हमारे बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी लिखना भी जानते हैं यदि ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो। लेकिन वे देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत बड़ी विशेषता है। दुनिया को आश्चर्य होता है कि मॉरिशस ने आज उस देवनागरी लिपि को द्वितीय भाषा शिक्षण में जीवित रखा है। लेकिन सूरीनाम में सरनामी हिंदी, लेकिन लिपि रोमन वे लोग इस्तेमाल करते हैं। तो श्रोताओं, बहुत सी बातें हैं इतिहास की खिड़कियों के झरोखों से झांकती हैं और बताती हैं। तो अगली बार फिर किसी विषय के साथ आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए अनुमति दें, शुभ संध्या।

0: समाचार सुमेरा के साथ नमस्कार आदाब।
1: नमस्कार आदाब। मुर्शिद में पहली बार एक नया पेसमेकर इम्प्लांट किया गया। जीटू अस्पताल में एक मरीजा के दिल में लीडलेस पेसमेकर बाकामयाबी डाला गया। ऑस्ट्रिया से आए स्पेशलिस्ट डॉक्टर सेजर कैजिन ने मुर्शन कार्डियोलॉजिस्टों के साथ मिलकर ये सर्जरी की। मरीजा की उम्र 87 साल की है और उन्होंने पहले 2 बार पेसमेकर लगाया। इस दफ़ा इस लीडलेस पेसमेकर से कॉम्प्लिकेशन के खतरे कम हैं। पहले इस तरह के ऑपरेशन के लिए लोगों को विदेश जाना पड़ता था। यहाँ इस सर्जरी के बाद मुर्शद को महारत हासिल हुई है। आज सुबह कंपनी गार्डन पोटली में सहकारिता स्मारक के सामने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की गतिविधि की गई। इस साल का विषय सहकारिता दुनिया में शांति की सेवा में। आज का दिन एक ऐसा मौका रहा जो देश की अर्थनीति में सहकारिता तंजीमों के किरदार और गरीबी के खिलाफ संघर्ष पर रोशनी डालता है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम फाइनेंस बिल को अंतिम रूप देने के लिए एक आर्थिक कमेटी की अध्यक्षता संभालेंगे। समिति की पहली बैठक बुध 8 जुलाई को लगाई जाएगी। कल कैबिनेट की बैठक में ये नोट लिया गया। विदेश में दक्षिण यूरोप में जंगलों में आग के खतरे बढ़ रहे हैं। तेज गर्मी की वजह से दक्षिण में कई जगहों पर आग लगी है, खासतौर पर फ्रांस में। पुर्तगाल में गर्मी की वजह से पेश आग में कम से कम 9 लोग जख्मी हुए हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगी जा रही है। स्पेन में भी हालत बहुत गंभीर है। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। कैमेलिया स्ट्रीट टेरासों पॉइंटू साबले में 84 साल की 84 years old श्रीमती परमा लंगादी पम्बेन, श्रीमती परमा लंगादीन पम्बेन जो विनोदा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल 11 बजे मुरा फ्यूनरल पिचित्रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही बोईले वाले देवघट की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM। सावान रोड नोवेल फ्रांस में 44 साल की 44 years old श्रीमती सोमा देवी बोला। श्रीमती सोमा देवी बोला पैदाइशी नाम तिलक जो सोनिया के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थे कल 12 बजे इनके घर सावान रोड नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लानमानियों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट नून। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।

0: चर्चा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का और हमारे सभी दर्शकों का हम हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। 4 जुलाई शनिवार का दिन और आज की चर्चा कार्यक्रम लेकर मैं उपस्थित हो चुकी हूँ। रत्ना का सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें। 1 घंटे का ये सफर रहेगा और बिल्कुल आज के इस सफर में कुछ ऐसी बातें जानेंगे, जैसे कि हम जानते हैं कि आज भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हमारी जो जीवन शैली है, वो किस तरह से प्रभावित हुई है और इस प्रभाव के कारण हमारा सेहत, हमारी जो सेहत है, इस पर कैसा प्रभाव पड़ता है। ये आए दिन हम हर एक दिन हम ये ऐसी बातों पर चर्चा करते रहते हैं कि किस प्रकार से हमारी जो जीवन शैली है, ये हमारे जीवन को ही नहीं पर हमारे मानसिक स्वास्थ्य को, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को ये प्रभावित करती है। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे स्टूडियो में उपस्थित हो चुकी हैं आयुर्वेद डॉक्टर और लाइफस्टाइल कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट जो है डॉक्टर दिया बाबू, आर्ट ऑफ लिविंग के ओर से यहाँ पर वे उपस्थित हुई हैं और उनका ये मॉरिशस का जो दौरा है, मॉरिशस का जो सफ़र है, बहुत ही भाग्यशाली रहेगा, हम यही प्रार्थना करते हैं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में हमें बहुत ही बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है उनको इस मंच पर आमंत्रित करने का। डॉक्टर दिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद।
0: और आज के इस कार्यक्रम में हम जीवन शैली से जुड़ी हुई समस्याओं पर बात करेंगे। तो मैम, पहले तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि जीवन शैली की जो समस्याएं हैं, ये किस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं।
1: तो हमेशा हम ये यही चाहते हैं, हम लोग बैलेंस रहें, हमें एनर्जी होना है सब काम करने के लिए, तो सब एज ग्रुप के लिए वही चाहिए, बच्चे हैं या वर्किंग पीपल है, कोई भी। तो ये बैलेंस कैसे लाना है और कहाँ कहाँ होना है,
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि वो हमेशा हम देखते हैं फिजिकल फिटनेस, बॉडी को स्वस्थ रखना है, इसके लिए हम खान पान का देखभाल रखते हैं या एक्सरसाइज करते हैं। इक्वली इम्पॉर्टेंट ये भी होता है कि हमारा मन का स्वास्थ्य भी अच्छा रखना है, माइंड भी बैलेंस रखना है। तो इसके लिए

0: मेडिटेशन, योगा, ये सब प्रैक्टिसेस हमें साथ साथ रखना है डेली रूटीन में. और जीवन शैली ये होता है कि एक प्लान्ड रूटीन जो अगर हम वो आयुर्वेदा के तौर से देखते हैं, क्योंकि मैं आयुर्वेदा डॉक्टर हूँ, तो हम ये जीवन शैली से ही हमारा जो भी स्वास्थ्य है वो मेंटेन रख सकते हैं. काफ़ी लोग सोचते हैं कि आयुर्वेदा सिर्फ हमारे जो
1: दवाई है, दवाई है, हेल्थ की ओर ही, बट उसके साथ साथ हमारा माइंड, हमारी बॉडी, हमारे इमोशंस पर भी हम काबू रख सकते हैं. तो डॉक्टर जी, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि हम जब बात करते हैं जीवन शैली, तो अच्छी जीवन शैली और बुरी जीवन शैली, इसमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है?
0: तो जीवन शैली में ये होता है कि हम एक दिन कैसे बिताते हैं.
1: अच्छा.
0: तो सुबह कितने बजे उठते हैं, कितने बजे हम सोने के लिए जाते हैं, कितना घंटा सोते हैं और कब खाना खाते हैं. तो काफ़ी ये टाइम ये होता है, बिजी लाइफस्टाइल के कारण ना लोग टाइम पे खाना नहीं खाते हैं या लेट सोते हैं सुबह और लेट उठते हैं. तो इसी से हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, बॉडी का जो एफिशिएंसी है, वो धीरे धीरे कम होते आता है. अगर हमने सही टाइम पे हमारे बॉडी के लिए रेस्ट, एक्सरसाइज या खाना सब दे रहा है, तो उसी से हमारा बॉडी बैलेंस रख सकते हैं.
1: यानी समय, सही समय पर सारा कुछ होना चाहिए. अगर आज आपने, ये तो स्वाभाविक बात है कि अगर हम देर से सोएंगे तो स्वाभाविक है कि देर से उठेंगे, और जो खाने का टाइम है वो भी शिफ्ट होता जाएगा, एक्सरसाइज का टाइम है वो भी, कई बार होता है कि एक्सरसाइज ही नहीं करने को, हम हमेशा ये कहते हैं कि टाइम नहीं मिलता. और यही सारी चीज़ें हैं जो हमारी जीवन शैली बनाती है. तो डॉक्टर जी, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि समय परिवर्तन, अभी जैसे टाइम चेंज हो रहा है, तो टाइम चेंज के साथ हमारे जीवन शैली में बहुत सारे बदलाव आए हैं. पर जैसे हम कह रहे हैं ना कि पहले के समय में लोग घर का काम खुद किया करते थे, कपड़े धोने नदी जाया करते थे, पानी भरते थे, ये सारी चीज़ें पहले होती थी. आज के समय में ये पॉसिबल नहीं है, टाइम चेंज हो चुका है. तो ये बदलते टाइम के साथ ये हमारे शरीर को भी अफेक्ट कर रहा है. हालांकि आज मॉडर्निटी हो चुकी है, मॉडर्नाइजेशन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इससे कैसे बचा जा सके?
0: ये अच्छा है कि हमारा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें फास्ट फास्ट चल रहा है.
1: सही.
0: पहले जब हम, अभी तो ग्राइंडर है या मिक्सी है, जो भी है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, हमारा
1: गैजेट्स बढ़ गए हैं.
0: तो इससे काफ़ी सारी चीज़ें हम ना टाइम ज़्यादा नहीं लगते हैं करने के लिए, लेकिन इसमें क्या होता है, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी कम हुआ है. और पहले जो भी काम होता था ज़्यादातर बॉडी फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होता था, लेकिन ज़्यादातर अभी एक कैबिन में बैठ के या स्क्रीन के आगे बैठ के, वो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल के कारण काफी सारे प्रॉब्लम्स आने लगा है लोगों को. तो हमें कॉन्शियसली इसके लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा
1: जी.
0: थोड़ा वॉकिंग के लिए, अगर ऐसा काम है 8 घंटा एक साथ बैठना है, तो हम बीच में पानी के लिए या कुछ ना, थोड़ा डेस्कटॉप स्ट्रेचेस ये सब करके थोड़ा बैलेंस कर सकते हैं. और ये भी है कि हमारा जो इंद्रिया है, सेंसेस, ये सेंसेस का भी थोड़ा बैलेंस हमें रखना है. हमें तो पता है ज़्यादा टाइम हम अगर हम ईयरफोन लगा के बैठते हैं तो कानों के लिए अच्छा नहीं है.
1: सही बात.
0: इसी तरह हमारा आंखों का भी हम एक्स्ट्रा ओवर यूज हो रहा है अभी आजकल. तो और ये आंखें और ब्रेन कनेक्टेड है, वो ऑप्टिक नर्व वगैरह है ना, तो इसलिए जो भी तनाव हमारे आंखों में आ रहा है वो उसका असर तो हमारे माइंड और ब्रेन पे भी आ रहा है. तो इसलिए रोज हमें थोड़ा सा रूटीन में ना थोड़ा बैलेंसिंग लाना है. तो इसमें एक तो चीज है, थोड़ा ऑयल मसाजेस आंखों के लिए, थोड़ा पानी से हमें धोना है, और एक्स्ट्रा हम केयर दे सकते हैं, बीच बीच में थोड़ा रेस्ट आंखों को देना है. इससे जो एंड ऑफ द डे आपको महसूस होना वाला है, जो भी थकावट वगैरह, वो कम होता है.
1: तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो जो भी हम कर रहे हैं, हम गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं टाइम बचाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने हेल्थ को गिव अप कर रहे हैं, हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रहे. तो आपने जैसे छोटे छोटे एग्जांपल्स में आपने बताया, ईयरफोन का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आँखों का यूज़ डेफिनेटली, हम स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा बढ़ा चुके हैं कि हम अपनी आँखों को रेस्ट देना भूल गए हैं, और जिसका तनाव हमारे ब्रेन पर पड़ता है, और हमारे कह सकते हैं कि हमारा जो स्लीपिंग टाइम है जितना होना चाहिए उतना नहीं है. हेल्दी स्लीप जो बोलते हैं वो बहुत रेयर लोगों को आजकल अनुभव होती है. तो ये सारी चीज़ें हमारे हेल्थ को असर कर रही है. डॉक्टर जी, मैं पूछना चाहूँगी, अगर नींद पूरी ना हो, अगर हम जितनी नींद हमें चाहिए उतनी हम हेल्थ

0: जल्दी स्लीप जो बोलते हैं, डीप स्लीप जो बोलते हैं, वो ना लें, तो क्या हमारा इम्यून सिस्टम इससे ख़राब हो सकता है?
1: तो ये दिनचर्या हमें क्यों पालन करना है? एग्जैक्ट टाइम जैसे हम बोलते हैं सुबह जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है. ब्रह्म मुहूर्त ऐसा एक टाइम है ऑलमोस्ट लाइक 1-1.5 आवर्स सूर्योदय से पहले, जो टाइम है.
0: हाँ.
1: तो उस टाइम पे अगर अगर हमने कभी एक्सपीरियंस किया है तो पता होगा, उस टाइम पे उठने से हमारा अलर्टनेस ज़्यादा रहता है.
0: अच्छा.
1: इसलिए बोलते हैं सुबह उठ के थोड़ा टाइम मनन करना है, अपने लिए थोड़ा मी टाइम लेना है, क्योंकि हमारा दिमाग भी तेज चलता है, पढ़ाई के लिए भी अच्छा है, ग्रास्पिंग भी अच्छा रहता है. लेकिन अगर हमारा आदत ऐसा हो गया कि लेट सोते और लेट उठते, तो थोड़ा हमारा जो एफिशिएंसी, शार्पनेस, फोकस, वो थोड़ा धीरे धीरे कम होते आ रहा है. तो ये हम कर सकते हैं हमारे रूटीन में थोड़ा. और हर एक टाइम पे हमारा बॉडी का हर एक जो भी है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स कुछ ना कुछ तो एक्टिव रहता है.
0: बिल्कुल.
1: इसलिए हम बोलते हैं कि लंच टाइम पे थोड़ा, इट इज़ एट द पीक, सन जो है, सूर्य का जो बल है वो ज़्यादा रहता है. इसलिए उसी तरह हमारे अंदर भी अग्नि भी अच्छा रहता है. इसलिए हमें ना मेन मील ऑफ द डे अच्छा खाना क्वांटिटी वाइज भी,
0: न्यूट्रिशन वाइज, क्वांटिटी वाइज
1: दोपहर में लेना है. तो इसलिए हमें ये भी जानना जरूरी है कि कब कितना खाना है, कैसे खाना है, इससे हमारा नरिशमेंट भी अच्छा होता है. और दिन में पूरा काम करते रहता है तो रात को तो रेस्ट चाहिए होगा. और जब हम गहरी नींद में हैं तो हमारा बॉडी का काफ़ी सारा रिपेयरिंग वर्क होता है, जैसे कि हमारा मेन ऑर्गन्स इंटरनली, लीवर, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइंस का, जो भी वो दिन का जो भी वेस्ट है वो निकालने का वो काम उसी टाइम पे चलता
0: के टाइम होता है.
1: अगर हम गहरी नींद में नहीं है और अगर खाना लेट खा के अभी भी डाइजेशन चल रहा है तो वो डिटॉक्स ही नहीं हो पाएगा. तो इसलिए अगर देखें तो काफ़ी सारे लोगों को आजकल फैटी लीवर का इश्यू है. वो केवल सेडेंडरी लाइफस्टाइल के कारण ही नहीं, ये जो गलत टाइम पे खाने से भी होता है.
0: तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कई सारी जगहों पर, मैं समझती हूँ हमारे जो खासकर यहाँ का जो कल्चर है, ईटिंग कल्चर है, कैसे होता है कि दोपहर के टाइम में हम उतना हैवी भोजन नहीं ले पाते, क्योंकि हम काम करते हैं और काम करने के टाइम पर कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत जल्दी जल्दी हमें खाना खाना पड़ रहा है. और ऐसा माना जाता है कि भाई शाम के टाइम आराम से जाके अच्छा डिनर बनाएंगे, भरपूर पेट भर के हम लोग फैमिली के साथ बैठकर खाते हैं. और देर रात को, मतलब ये यूजुअली यहाँ पर 8-9 बजे खाना खाया जाता है. और कई बार ऐसा होता है कि तुरंत, कुछ लोगों को आदत है कि खाना खा के तुरंत जाके सो जाते हैं. तो मैं समझती हूँ ये भी एक बहुत ही गलत आदत है जो हमारे हेल्थ को प्रभावित कर सकती है. और डेफिनेटली जैसे हम बात करते हैं आजकल इंसोम्निया यानी नींद ना आना, माइग्रेन यानी लगातार सर दर्द रहना, एसिडिटी जैसी इश्यूज जो है ये भी हमारे जीवन शैली के कारण बढ़ते जा रही है. तो डॉक्टर जी, मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या ऐसी बीमारियों को इन सारी चीज़ों के साथ हम कम कर सकते हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि खाना सही टाइम पर खाना है, नींद सही टाइम पर लेना है, तो ये सारी समस्याएं भी क्या इससे ठीक हो सकती हैं?
1: ये समझने के लिए हमें थोड़ा हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन हम बोलते हैं ना, हाँ. हमारे शरीर 5 तत्व से बनता है
0: जी.
1: तो जब हमारा अंदर जो अग्नि तत्व है, इसी से डाइजेशन रिलेटेड है
0: जी.
1: अगर मैं आज 8 बजे खाना खाया और कल 8 बजे में स्किप करके,
0: हाँ.
1: थोड़ा 10 बजे ब्रेकफास्ट ले रहे हो, तो इसमें क्या होता है, वो 8 बजे बॉडी रेडी होता है,
0: हाँ.
1: थोड़ा डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह ना रेडी होता है, लेकिन खाना नहीं आ रहा है. तो इसकी वजह से एसिडिटी बढ़ता है. तो एसिडिटी बढ़ने से वो अग्नि हीट वो बढ़ता है, और इसी की वजह से कुछ लोगों को वो माइग्रेन वगैरह होता है. एक दिन दो दिन में प्रॉब्लम्स नहीं होता है, लेकिन
0: कंटिन्यूस
1: रॉन्ग टाइम पे खाना, इससे एसिडिटी डेफिनेटली होता है. और काफ़ी ऐसा भी देखा है कि लोगों को ज़्यादा वर्क, स्पेशली डेडलाइन लेके काम करते हैं, वो स्ट्रेस्ड रहते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, अपना ध्यान नहीं रखते हैं उस टाइम पे, कभी खाना भी नहीं खाते, नींद भी ठीक से नहीं होता है. इसी से भी हम, इससे रिलेटेड भी हमारा जो गर्मी है बॉडी का, हीट, ओवर हीटर, जैसे जो भी मशीन ज़्यादा टाइम काम करता है तो वो गर्म हो जाता है।
0: सही बात, सही बात।
1: इसी तरह हमारा बॉडी भी ओवर हीट होता है, इसकी वजह से भी हमारा जो हीट है ज्यादा होता है और माइग्रेन ट्रिगर होता है, एंड ऑफ कोर्स माइंड इमोशन।

0: हमारे बॉडी के ऊपर जो भी प्रभाव है लाते हैं, इससे भी ये सब एसिडिटी भी होता है। इसलिए जिन लोगों को कांस्टेंट प्रेशर में काम करना पड़ता है ना, उनका एसिडिटी का इश्यू हो सकता है,
1: मतलब उनका जैसे क्रॉनिक होने शुरू हो जाता है, क्योंकि ये ऑन एंड ऑफ, जैसे आप बता रहे हो कि वो ऑन एंड ऑफ उसको ट्रिगर करता है, उसको बढ़ाता है। तो क्या एसिडिटी ऐसे ऑन एंड ऑफ बढ़ते रहने से, क्रॉनिक होने से, क्या और हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं डॉक्टर जी?
0: हाँ, इससे हमारा माइंड भी ट्रिगर हो सकता है।
1: अच्छा,
0: इरिटेबिलिटी, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, छोटे से बात को लेके वो बहुत
1: गुस्सा हो जाना,
0: गुस्सा, और कभी कभी ना काम पे फोकस नहीं हो पाता है। एक्चुअली ये डेंटल हाइजीन, मेंटल हाइजीन, फिजिकल हाइजीन, ये सब इम्पॉर्टेंट रहता है। तो हमें एक साथ थोड़ा सा बैलेंस के लिए योगा, मेडिटेशन, ये भी प्रैक्टिस करने से जो भी तनाव आ रहा है वो थोड़ा हैंडल कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: खाने का तो हमें पता है क्या अच्छा है क्या नहीं है,
1: सही।
0: लेकिन कभी कभी हम फॉलो नहीं करते हैं, वही है प्रॉब्लम। वो अवेयरनेस है सबको, लेकिन थोड़ा सा वो उसके लिए थोड़ा
1: लेजी हो रहे हैं, थोड़ा कहीं बार हम लोग लेट गो कर रहे हैं, जाने दे रहे हैं, जो हमारे हेल्थ को असर करता है। सही बात कहा, जैसे डॉक्टर दिया ने हमें समझाया कि कई बार हम सब जानते हैं कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा क्या है, पर हम उस बातों पर ध्यान नहीं देते। ध्यान तब देते हैं जब हमारी सेहत पूरी तरह से बिगड़ना शुरू हो जाती है। पर देखा जाए तो अगर आप इन सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दें, इन्हें आदत बनाएं, तो आप देखेंगे कि आप लंबे समय तक बीमार भी नहीं होंगे, आपका हेल्थ भी अच्छा बना रहेगा। एंड डेफिनेटली ये हर एक की जिम्मेदारी है। एक व्यक्ति अगर पूरे घर की जिम्मेदारी ले तो ये भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हर एक इंसान अपनी जिम्मेदारी को समझे और अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दे। हम सारी दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं पर अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देते। कहीं ना कहीं यही एक कारण है जो हमारी लाइफस्टाइल, हमारी जीवन शैली को बिगाड़ रहा है। बिल्कुल, आज की चर्चा का कार्यक्रम, और आज हम बात कर रहे हैं जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल से उत्पन्न होने वाले कई ऐसी हेल्थ इश्यूज़ जो हम जानते हैं पर नज़रअंदाज करते हैं। आज रेडियो मॉरिशस पर इसका कार्यक्रम सीधा प्रसारित अभी आप सुन पा रहे हैं और MBC के तीसरे चैनल पर इसे आप देख पा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त तकनीक पर हमारा सहयोग दे रहे हैं कादिया, और साथ ही साथ प्रोडक्शन असिस्टेंट है उरुसा। बिल्कुल हमारे साथ बने रहें, अभी थोड़ी ही देर में इस कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा एक गीत के बाद।

0: आज की चर्चा का कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस की लहरों पर और एनबीसी के तीसरे चैनल पर आप इसे देख पा रहे हैं। जी हाँ, हमारे साथ हमारी प्रोड्यूसर शीतल लुबिन हमारे साथ जुड़ चुकी है और बेशक आज के इस कार्यक्रम में हमारी जो मेहमान, हमारी जो अतिथि हैं वो है आर्ट ऑफ लिविंग से आई हुई डॉक्टर दिया बाबू। भारत से वे यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। वे एक आयुर्वेदा डॉक्टर है और साथ ही साथ लाइफ स्टाइल कंसल्टेंट है। और आज के इस कार्यक्रम में हमारा सौभाग्य ये है कि हम जान पा रहे हैं कि हम गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आप भी इन जानकारियों को अपने जीवन में उतारेंगे, जीवन शैली को बदलने का पूरा प्रयास करेंगे। और चलिए, यहाँ पर आजकल हम कहते हैं ना कि डिजिटल वर्ल्ड हो चुका है, हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न होते जा रहे हैं और कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारी डिक्शनरी में ऐड होते जा रहे हैं और उनमें से एक शब्द है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर जी से। जी हाँ डॉक्टर जी, आज फोमो या स्क्रोलिंग करना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कंपैरिजन करना, सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे भीतर एंजाइटी का कारण बनती जा रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगी डॉक्टर जी, ऐसा क्यों हो रहा है?
1: तो पहले हमें घर में अगर कुछ फ्री टाइम मिल रहा था तो हम कुछ करते थे,
0: प्रोडक्टिव थे।
1: यस एग्जैक्टली, और इंटरेक्शन काफ़ी होते थे एक दूसरे के साथ या नेबर के साथ, कुछ भी, बच्चे भी है ऐसे घर से निकलते हैं बच्चों के साथ मिलकर,
0: हाँ।
1: लेकिन अभी क्या हो रहा है कि सबका अलग अलग एक डिफरेंट स्मॉल स्मॉल वर्ल्ड्स दुनिया बन रहा है। एक ही कमरे में बैठते हैं लेकिन अलग अलग दुनिया,
0: कोई किसी से बात नहीं कर रहा।
1: हाँ, वो इंटरेक्शन कम हुआ है। और एक मोबाइल लेके बैठते हैं तो ब्रदर भी लेके बैठे अलग दुनिया में बैठे, फादर मदर

0: सब लोग. तो ये जो इंटरेक्शन की कमी हुई है, इसी की वजह से सब इनसिक्योरिटीज भी हुआ है. पहले ऐसा होता था कि जब घर लौटते तो सब पूछते हैं कैसा रहा दिन, क्या क्या हुआ. तो अभी तो फास्ट लाइफ चल रहा है, मम्मी पापा दोनों काम कर रहे हैं, तो इट्स मिसिंग आउट. और इसके साथ साथ न्यूक्लियर फैमिलीज भी है.
1: तो पहले दादा दादी हुआ करते थे तो कुछ ना कुछ दादा दादी भी अपने बच्चों को कहानियां सुनाते थे, टाइम स्पेंड होता था.
0: तो इससे क्या होता है कि जो बाहर की दुनिया को देख के हम जो महसूस करते हैं ना, कभी कभी हमें लगता है सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, मेरा ही ऐसा ही हो रहा है. तो वो अकेलापन का ये हो रहा है क्योंकि इंटरेक्शन नहीं होता है. इसलिए क्वालिटी टाइम निकालना है, एटलीस्ट एक फैमिली में सब लोग बैठ के 15 मिनट्स 10 मिनट्स जो भी है, साथ साथ में डिनर खाने का जो वक्त, वो सिर्फ हमारे लिए रखना है. वो मी टाइम निकालने से ये काफ़ी सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है. इसलिए हम हर एक जो एज ग्रुप है, इन लोगों के लिए जो भी इन वर्कशॉप्स लेके आते हैं, जो योगा मेडिटेशन एज रिलेटेड इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ है, क्योंकि टीनेजर्स का बहुत सारा प्रॉब्लम्स रहता है वो हार्मोन्स की वजह से और चैलेंजेस की वजह से. तो उनको थोड़ा उनका पर्सनालिटी को वो मॉडिफाई करें, क्योंकि उनका भी अलग अलग इश्यूज रहता है, फ्रेंडशिप रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड,
1: पढ़ाई को लेकर, बिल्कुल सब.
0: तो उनका जो भी प्रॉब्लम्स है वो एड्रेस करने के लिए उनको पहले उनका सही रास्ता दिखाना है.
1: गाइडेंस बहुत जरूरी
0: है. और हम हमेशा ये बोलते हैं, हम जब पॉजिटिव रहते हैं तो सब अच्छा होता है, लेकिन ये पॉजिटिविटी अंदर कैसे लाना है?
1: सही बात.
0: तो हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम पूरे दुनिया को बदल सकते हैं. वो एंथुसियाज्म रहता है, ऑप्टिमिस्टिक रहता है, हम वो कुछ करने के लिए रेडी रहते हैं. लेकिन कभी कभी हम उदास बैठते हैं, एनर्जी लो रहता है, ऐसे फील होता है कि हम अकेले हैं, कुछ अच्छा नहीं है, कुछ ठीक से नहीं चल रहा है. ये एक्चुअली प्रॉब्लम होता है हमारे अंदर. हमारे अंदर अगर हम बैलेंस लेके आ रहा है तो वो हम सभी जो प्रॉब्लम्स होता है वो फेस कर सकते हैं. तो वो कैसे लाना है, इसलिए मेडिटेशन प्राणायाम प्रैक्टिसेस बहुत ज़रूरी है. से हमारा प्राण बढ़ता है. प्राणायाम क्या होता है, प्राण को बढ़ाने वाला टेक्निक. तो वो करने से हमारा पॉजिटिविटी है, ऊर्जा, एंथुसियाज्म सब अच्छे से बनाए रखते हैं. इसलिए सब एज ग्रुप के लिए योगा और मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है.
1: बहुत ज़रूरी है. यानी डॉक्टर दिया का यही कहना है, यही मानना है कि हर एक ग्रुप को योगा, मेडिटेशन. और ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा शरीर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो. हम कई बार इन्हीं सारी चीज़ों से डर कर बस पीछे कदम ले लेते हैं कि हमसे योगा नहीं होगा. पर देखा जाए तो योगा हर एक ग्रुप के लिए बना है. कैसे करना है, टेक्निक सिखाई जाती है हर सेंटर्स में, आर्ट ऑफ लिविंग के सेंटर्स में. कई सारे ऐसे ट्रेंड टीचर्स हैं जो आपको सही गाइडेंस देते हैं. दिया जी, मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी यहाँ पर कि जैसे आप हमें बता रही हैं कि ये जो सारी गलत आदतें हैं, मोबाइल टाइम में हम इतना ज़्यादा टाइम बिताते हैं, किसी से बात नहीं करते, तो क्या इसका संबंध हमारे, इसका जो प्रभाव है हमारे इमोशंस पर भी पड़ता है? क्योंकि आज जैसे आप बता रहे थे कि बहुत चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन. मैं समझती हूँ 100 साल पहले एंग्जाइटी डिप्रेशन जैसी कोई समस्या हमने कभी नहीं सुनी थी, पर आज के समय में ये तो आए दिन छोटे बच्चों में भी एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्या है. तो क्या इसको भी हम जोड़ सकते हैं कि हमारी जीवन शैली के कारण ही ये हमारे इमोशंस को अफेक्ट कर रहा है?
0: डेफिनेटली ये जीवन शैली की वजह से है. आजकल बच्चे लोग स्क्रीन लेके वो सोते हैं, सुबह उठते फर्स्ट स्क्रीन ही देखते हैं.
1: स्क्रोलिंग.
0: हाँ, स्क्रोलिंग की वजह से क्या होता है, अटेंशन स्पैन कम हुआ है. और जो काम टाइम पे होना है उसके लिए बहुत लंबा टाइम लगता है, और या सही टाइम पे या सही मात्रा में वो कर नहीं पा रहे. तो इससे क्या होता है, टेंशन बढ़ता है. तो पढ़ाई ठीक से नहीं हो रहा है, टाइम पे वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, फोकस नहीं है. जो बाहर की दुनिया में चल रहा है वो अवेयर भी नहीं होता है.
1: सही बात.
0: तो वो प्रेजेंट मोमेंट में माइंड को लाना बहुत ज़रूरी होता है. और कभी कभी अपने पास जो भी बैठा है उनका क्या चल रहा है वो भी नहीं पता चलता है.
1: जी, जी.
0: तो एक इंटरेक्शन भी कम होता है, इसकी वजह से एंग्जाइटी डिप्रेशन सब होता है. कभी कभी हमने तो सुना होगा ना, जो भी सुइसाइड करते हैं,
1: आजकल तो सुसाइड केसेस बहुत बढ़ने लगे हैं.
0: उनको क्या हुआ होगा कि उस मोमेंट में उसे लगा होगा मुझे कोई नहीं है. वो जो स्ट्रेस है वो बाहर नहीं निकाल पा रहे थे,
1: शेयर नहीं कर

0: पा रहे
1: हैं. एग्जैक्टली. तो और वो मोमेंट में उन्हें लगा कि मुझे ये सब खत्म करना है. तो इट्स जस्ट ए मोमेंटरी थॉट. तो वो मोमेंट में ठीक से नहीं लगा और उनको सही डिसीजन नहीं ले पाया, इसलिए वो गलत रास्ते पे.

0: मुझे क्या लग रहा है, पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग देना है. इसलिए हम नो योर चाइल्ड बोल के एक प्रोग्राम भी रखा है जो पेरेंट्स के लिए रहता है.
1: अच्छा.
0: एक दो घंटे का प्रोग्राम है, वो भी नो योर चाइल्ड नो योर टीन, अलग अलग प्रोग्राम्स है, क्योंकि उनको डील करने के लिए एक तरीका ना, वो पेरेंट्स को भी आना है.
1: बिल्कुल. डॉक्टर दिया, मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगी कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स ऐसा समझते हैं कि बच्चे उन्हें नहीं समझते, और बच्चे ऐसा समझते हैं कि पेरेंट्स को तो कुछ पता ही नहीं है, हम ज़्यादा जानते हैं और हमें हमारे जो इमोशंस से हम डील करते हैं. मैं समझती हूँ हर एक पेरेंट का आज के समय में यही एक्सपीरियंस रहा होगा. बच्चे बार बार ये कहते हैं कि आप मुझे नहीं समझोगे, आपसे नहीं होगा. तो ये सारी जो जो जनरेशन गैप वाली जो फीलिंग है, वो प्राणायाम योगा द्वारा वो कैसे मिटाया जा सकता है, या फिर जो भी आप बता रहे हैं सेशंस होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, आप थोड़ा एक एक्सपेरिमेंट या कोई एक एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसके थ्रू बच्चों में और पेरेंट्स में वो कोऑपरेशन बना रहे, वो बॉन्डिंग बनी रहे.
0: वो एक तो है क्वालिटी टाइम जो मैंने पहले बताया था, वो एक ऐसा फ्री टाइम रखना है जहाँ पे हम खुल के बात कर सकते हैं
1: जी.
0: तो एक तो है हम क्वालिटी टाइम पे जो भी बात कर रहे हैं, एक फ्रेंड जैसा बैठ के बात करने का, उनको सुनने के लिए पेरेंट्स रेडी रखना है. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पेरेंट्स जो बोलते हैं वो फॉलो करना है बस.
1: हाँ.
0: वो जो बोलते हैं वो सुनने के लिए कोई नहीं होता है, इसलिए प्रॉब्लम शुरू होता है. तो पहले उनके जो लेवल पे जाके सुनना है, तो उससे काफ़ी सारा वो ओपन अप हो जाता है.
1: बिल्कुल.
0: और वो रिलेशन भी ज़्यादा ना वो अच्छा बनता है फादर मदर के साथ.
1: बिल्कुल.
0: तो ये तो एक चीज़ है. दूसरा है, अपना खुद का तनाव लेके घर आ जाता है सब लोग. इट कैन बी वो बच्चे का भी तनाव होता है या पेरेंट्स का भी,
1: मतलब किसी और का गुस्सा कहीं और निकल रहा है.
0: हाँ, तो इसकी वजह से भी बिगड़ जाता है प्रॉब्लम्स. वो सुनने के लिए भी हम तैयार नहीं होते हैं ना. तो इसलिए प्राणायाम मेडिटेशन से हम फिर से एक नया स्लेट जैसा, हम काफी सारे लिखते हैं लेकिन

0: लेकिन क्रिएट होती जा रही है, और ये जो नॉट्स है वो हम खोलने के बजाय उसे और उलझाते जा रहे हैं, जहां पर हमारी जीवन की जो समस्याएं हैं वो सुलझने के बजाय और भी उलझती जा रही है। डॉक्टर जी, मैं यहाँ पर बड़े बुजुर्गों के बारे में भी पूछना चाहूंगी। जैसे हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, और खासकर मॉरिशस में ऐसे कई सारे बड़े बुजुर्ग हैं जो अकेले रहते हैं, अकेलेपन का सामना करते हैं, और अकेलेपन, अकेलापन एक ऐसी, हम बीमारी तो नहीं कहेंगे, पर एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ से निकलना मुश्किल है, और इसके कारण उनको बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है, मेंटल हेल्थ इश्यूज होती है, माइंड की इश्यूज, इमोशंस की इश्यूज, इनसिक्योरिटी डेवलप होना, बहुत सारी ऐसी इश्यूज हैं जिनके कारण वो उससे फाइट नहीं कर पा रहे। तो क्या आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा उनको भी कोई ऐसी सिचुएशन से निकलने की सीख या गाइडेंस दी जाती है?
1: तो सबका यही प्रॉब्लम होता है कि एक टाइम होने के बाद ऐसा लगता है वो कुछ नहीं कर पा रहा है।
0: बिल्कुल, जैसे उनको लगता है कि वर्थलेस है, उनका कोई मायना ही नहीं है, अब समाज में उनकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है।
1: तो ऐसा है कि उनका दुनिया ऐसा चलता था कि काम और घर, काम और घर, और बच्चे बड़े होने के बाद उनको काम ही नहीं है ज्यादा। तो इसकी वजह से उनको ना वो उनका सोच विचार में वो कुछ भी नहीं है काम और घर के अलावा।
0: बिल्कुल।
1: तो ऐसा है कि हम जो एक्सपीरियंस से कुछ सीखे होंगे अपने जिंदगी में, वो किसी और को देने से या शेयर करने से वो काफ़ी तनाव दूर हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सेवा एक्टिविटीज, कुछ ग्रुप्स बना के कुछ कंबाइंड एक्टिविटीज ला सकते हैं। मैंने देखा है कि यही है सोशल मीडिया का एक प्लस पॉइंट, काफ़ी सारे लोग ना उनका खुद का ग्रुप रहता है, उसमें काफ़ी जो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक
0: होता है,
1: इंटरेस्टिंग टॉपिक, किसी किसी को कुछ श्लोक पढ़ने का ये है, कुछ पुराने एंशियंट जो भी है टेक्स्ट बुक्स रिलेटेड ना, चैंटिंग्स क्लासेस रहते हैं, भगवद गीता सुनना, ऐसा ना ग्रुप्स रहता है, तो वो बहुत एंजॉय करते हैं एक्चुअली।
0: बिल्कुल।
1: तो अगर हमारे साथ भी कोई नहीं है तो वो ग्रुप में हम जुड़े रहते हैं। तो इट्स गुड टू मेक यूज ऑफ द कम्युनिटी,
0: मतलब अपने आप को बिजी रखना है किसी ना किसी तरीके से। मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग है, माफ़ करना मैं किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचा रही, पर कंप्लेनिंग वाला जो नेचर है ना, वो कहीं ना कहीं वो डेवलप होना शुरू हो जाता है कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, हर एक चीज़ में हम एक चीज़ ढूंढते रहते हैं जिसको हम हमेशा कोसते रहते हैं। तो क्या ये भी कोई एक वजह हो सकती है, एक कारण हो सकता है जो हमारे जीवन शैली को नुकसान पहुँचाए, हमारे आस पास के लोगों को नुकसान पहुँचाए, क्या ऐसा भी हो सकता है?
1: तो अगेन कमिंग बैक टू स्क्रीन टाइम, आजकल तो बूढ़े लोग भी देखते हैं स्क्रीन, और एल्डरली, और सब लोग,
0: सब एज ग्रुप।
1: तो जीवन शैली में मैंने बताया कितने बजे हम उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, और प्रॉपर रेस्ट, एक्सरसाइज, सब बैलेंस रखना है। और उन लोगों को भी वो थोड़ा देखभाल रखना है, क्योंकि हमारा अगर रेस्ट पीरियड ठीक नहीं है, नींद ठीक नहीं होता है, तो ज़्यादातर ना उनका इम्यूनिटी भी कम होता है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और हमने देखे होंगे काफ़ी सारे हार्मोन रिलेटेड इश्यूज़ वगैरह होता है, स्पेशली फीमेल्स में मेनोपॉज रिलेटेड इश्यूज़। इस टाइम पे हमें ज़्यादा केयरिंग बॉडी को देना है। तो जैसे हम पहले बिना एक्सरसाइज के बैलेंस रखते थे, वो नहीं होगा। 50 के बाद हमें थोड़ा योगा, स्ट्रेचेस रेगुलर रखना है, थोड़ा ऑयल मसाजेस वगैरह, क्योंकि स्टिफनेस बढ़ता है बॉडी में, और हमारा जो बॉडी का ड्राइनेस, डिस्टर्बेंसेस, और नींद का जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा कम होते आता है। जितना हम जैसे 7-8 घंटा सोते थे, लेकिन जब एज बढ़ता है ना, वो 6 घंटा हो जाता है।
0: कई सारे लोग हमारे प्रोग्राम में भाग लेते हैं तो हमें ये कहते हैं कि रात को 2 बजे नींद टूट गई, अब नींद ही नहीं आ रही थी, 3-4 बजे तक वो लोग ऐसे ही जाग रहे थे। तो क्या ये भी उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज या फिजिकल हेल्थ इश्यूज को प्रभावित करता है?
1: डेफिनेटली फिजिकल हेल्थ की वजह से ये हो रहा है, इसलिए हमें थोड़ा बैलेंसिंग के लिए कुछ चीजें रेगुलर रखना है। एक तो है आयुर्वेदिक की तौर से बोला है कि रोज हमें ऑयल मसाज करना है बॉडी को, थोड़ा सीसे में ऑयल या मस्टर्ड ऑयल, जो भी सरसों का जो भी यहाँ पे मिल रहा है, वो थोड़ा गर्म करके लगाना है, स्पेशली अभी विंटर्स चल रहा है, थोड़ा गर्म ऑयल से मालिश करने से बॉडी रिलैक्स हो जाता
0: क्या
1: है।
0: क्या मैं खुद ही कर सकते हैं?
1: खुद कर सकते हैं, डेफिनेटली।
0: अच्छा,
1: खुद थोड़ा गर्म ऑयल लेके मसाज करके 10-15 मिनट रखे, नहा सकते हैं
0: अच्छा।
1: गर्म पानी में, वो इसी तरह हमें हेड मसाज भी करना है। ये जो हेड में है पूरा कंट्रोलिंग पॉइंट
0: बिल्कुल
1: हमारा पूरा बॉडी का हार्मोन।

0: लेटर नर्वस सिस्टम और सर्कुलेशन सब इसी से कनेक्टेड है, सब कमांडिंग इसी
1: वो एक से जैसे हम कहते हैं ना कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट हमारे सर में से ही मतलब सारा कंट्रोल हो रहा है
0: और पूरा इंद्रियों का भी ये होता है क्योंकि एज रिलेटेड इनको ना थोड़ा आंखों की रोशनी कम होता है या सुनने में थोड़ा प्रॉब्लम्स वो इरिटेट हो जाता है तो पहले ही हमने थोड़ा इसके लिए कुछ बैलेंसिंग किया तो अच्छा होता है। एक तो है टाइम पे सोना, ऑयल मसाजेस ये बहुत सिंपल है लेकिन मैंने देखा है कि जो लोग रेगुलरली ऑयल करते हम क्या सोचते हैं बालों के लिए ऑयल लगाते हैं लेकिन जो ऑयल करते हैं उनका आंखों का प्रॉब्लम बहुत कम रहता है,
1: मतलब वो जो आजकल ड्राइनेस की जो इश्यूज है या हियरिंग एड इश्यूज है उसके उसको लेकर भी मैं समझती हूँ ऑयल मसाज करने से ये सारी
0: डिजेनरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है एज की वजह से, वो एजिंग प्रोसेस को हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं।
1: तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बताई और मन भी मैं समझती हूँ हमारा जो दिमाग है वो भी थोड़ा ठंडा रहता है, थोड़ा शांत रहता है और थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। तो डॉक्टर जी आजकल जो है भाग दौड़ भरी जिंदगी है, सुबह उठते ही शुरू हो जाती है हमारी ट्रेन, तो ऐसे में ब्रेक कैसे ले, बिकॉज मैं समझती हूँ खासकर जो वर्किंग लेडीज हैं जो वर्किंग पुरुष हैं उनके लिए ये हम कहेंगे कि भाई ब्रेक लो लेकिन उनके लिए ब्रेक लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में वे कैसे ब्रेक कर सकते हैं या फिर अपने जीवन में लाइक जो डेली रूटीन है उसमें आप कोई अगर हमें एक्सपेरिमेंट करके बताएं या किस तरह से वो एटलीस्ट एक मिनट या दो मिनट का ब्रेक ले सकते हैं जो उनके हेल्थ को भी कंट्रोल रख सके।
0: द बेस्ट वे टू टेक ए ब्रेक वो क्या है कि हम थोड़ा अपने सांस की ओर ध्यान लेके आए और एक दो प्राणायाम ब्रीदिंग पैटर्न्स है ना, हम एक दो मिनट में हमारा फोकस अटेंशन रेस्ट वो वापस ला सकते हैं।
1: अच्छा,
0: इसलिए थोड़ा नाड़ी शोधन प्राणायाम या अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग करने से और थोड़ा टाइम 15 मिनट्स मेडिटेशन करने से, इसलिए सुबह थोड़ा टाइम मी टाइम अपने लिए रखना है।
1: अच्छा,
0: ऐसा नहीं कि सुबह अलार्म बजा और सब भाग दौड़ में हम
1: कई बार अलार्म को हम स्नूज करके 10 मिनट और ले लेते हैं, कहां 10 मिनट के बाद आँख खुलती है तो लगता है एक घंटा हो गया, फिर यहाँ पर ही सारी समस्याएं खड़ी हो जाती है।
0: अब सुबह थोड़ा 15-20 मिनट्स भी थोड़ा योगा और ध्यान से शुरू किया तो काफी सारा तनाव को हम हैंडल कर सकते हैं। एक तो ये है, दूसरा चीज ये है अपना पूरा फैमिली के लिए थोड़ा सा एक रूटीन रखना, ये ब्रेकफास्ट टाइम है, ये डिनर टाइम है, अगर फोन यूज करना है तो चलो हम खाना खाते टाइम नहीं यूज करने वाला है,
1: मतलब कुछ ऐसे ऐसे हम सिचुएशन क्रिएट करें जहां पर हम इन सारी चीजों को ना ले, क्योंकि मैं समझती हूँ बच्चे जो है वो बड़ों के ही रेप्लिकेट होते हैं, यानी जो बड़े करते हैं उसको वो फॉलो करते हैं, तो अगर हम मोबाइल नहीं छोड़ेंगे, हम अपना मोबाइल पकड़ के रखेंगे तो बेशक उनको ज़्यादा बढ़ावा मिलता है, तो ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान देना है। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि इमोशंस की बात आती है और जहाँ पर इमोशंस की बात आती है मैं ये पूछना चाहूँगी डॉक्टर दिया जी से कि आज के समय में हम कॉम्प्लीमेंट कम करते हैं कंप्लेन ज़्यादा करते हैं, तो क्या ऐसा नेचर पालने से भी ये हमारे इमोशंस को हिला सकता है, हमारे हेल्थ को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है?
0: हाँ, वो अवेयरनेस से हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कंप्लेन मोड में जब हम रहते हैं तो हमें वो गुस्से की वजह से या किसी से कुछ नफरत चल रहा है इसकी वजह से हम बातें करते रहते हैं।
1: सही बात।
0: लेकिन अगर हम थोड़ा वो ध्यान डाला तो हमें पता चलता है कि ये कंप्लेन करने से कुछ बदलते नहीं है, कुछ बदलने के लिए हमें एक साथ काम करना पड़ेगा या कुछ बातचीत करना पड़ेगा, हम ऐसे कंप्लेन करते बैठेंगे तो कुछ फर्क नहीं दिखेगा।
1: सही बात है, सही बात है। और जैसे हम कॉम्प्लीमेंट अगर हम मान लीजिए हमारा काम का माहौल या हमारे घर का माहौल ऐसा है तो ऐसे माहौल में हम कॉम्प्लीमेंट कैसे करें, क्योंकि चलिए ऐसा भी होता है कई बार कि हमारे जो फेलो कलीग्स हैं, हमारे जो बॉस है, हमारे जो आसपास के लोग जो हमारे साथ काम करते हैं उनके साथ मर्ज होकर उनके साथ रहकर हमें काम करना, तो ऐसे में हम कॉम्प्लीमेंटिंग नेचर कैसे डेवलप करें?
0: तो कॉम्प्लीमेंट देने के लिए पहले हम खुश हमें खुद खुश रखना है। हम
1: सही बात।
0: द व्हेन वी आर कंटेंट, आई एम हैप्पी विथ माई सेल्फ, देन आई कैन गिव अ कॉम्प्लीमेंट। तो यूजुअली हमारा जो पूरा जो दुनिया हम देखते हैं उसी में हम लगे रहते हैं, ये हम भूल जाते हैं और हमारा जो तनाव है वो रिलीज नहीं होता, इसकी वजह से हम सही टाइम पे जो भी करना है सोचना है वो भूल जाता है। इसलिए वो हमारा जो मी टाइम है अपने नेचर पे थोड़ा टाइम हमें बैठना है, उसी में मेडिटेशन।

0: बहुत काम आता है. और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें डीप सर्विसिंग भी चाहिए, डीप क्लीनिंग, इसलिए हम ना एडवांस प्रोग्राम्स भी देते हैं.
1: अच्छा.
0: जैसे हम बोलते हैं सुदर्शन क्रिया, प्राणायाम, डेली प्रैक्टिसेस. इसके अलावा एडवांस मेडिटेशन प्रैक्टिसेस भी रहता है जो साल में एक बार या दो बार करने से पूरा क्लीन हो जाता है. जैसे हम बोलते हैं आयुर्वेदा में पंचकर्मा ट्रीटमेंट्स है, तो हमें टाइम नहीं मिल रहा है इसलिए हमने काफी सारे चीजें नहीं देखा, लेकिन साल में एक बार में पूरा क्लेंसिंग कर रहा हूँ बॉडी का.
1: सही बात.
0: तो ऐसा कुछ ईयरली भी हम प्लान कर सकते हैं या मंथली कुछ डिटॉक्सिंग.
1: बिल्कुल. और जब डिटॉक्स की बात कर रहे हैं, एक सोशल मीडिया पर एक वर्ड के अक्रॉस में आई, डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन. तो डॉक्टर जी, डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन कैसे किया जाता है?
0: मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो नींद से कनेक्टेड है स्क्रीन टाइम.
1: अच्छा.
0: इसलिए जो सोने से पहले जो टाइम है, आधा घंटा या एक घंटा, वो स्क्रीन टाइम अवॉइड करना है. वो हमारे सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो मेलाटोनिन जो भी हॉर्मोन्स है हमारे अंदर, वो डिस्टर्ब हो जाता है इमीडिएट नींद से पहले. जो भी वो ब्लू लाइट एक्सपोजर से ना, वो गहरी नींद में प्रॉब्लम आ जाता है. वो अगर हमें वो डीप रेस्ट नहीं मिल रहा है तो वो रिपेयरिंग में प्रॉब्लम होता है और डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हॉर्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स. मैंने काफ़ी टाइम ये देखा है कि जब भी एग्जाम्स चलता है उस टाइम पे फीमेल्स का ना थोड़ा हॉर्मोन्स भी बिगड़ जाता है, क्योंकि सब लोग एक बजे दो बजे तक बैठते हैं रात को, उसकी वजह से वो पूरा साइकिल्स खराब होता है. तो नेक्स्ट टाइम आते हैं हमसे मिलने के लिए तो बोलते हैं कि ये ठीक से नहीं हो रहा है.
1: तो मतलब ये डिस्टर्ब हुआ. और ये एक दो दिन का नहीं होता है, कंटिन्यूसली बहुत दिनों तक ये चलता है और इसी कारण आपके हेल्थ को ये असर करता है.
0: हाँ. तो कभी कभी क्या होता है, वो एक टाइम पीरियड में ऐसे करते हैं, लेकिन कुछ टीनेजर्स का ऐसा ही आदत है रात को देर तक बैठ के, एक घंटे तक बैठ के कुछ करके या स्क्रॉल करके फिर सोने का.
1: बिल्कुल.
0: इसलिए वो
1: अनवांटेड, जो अनवांटेड इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर करते हैं और जो ज़रूरी नहीं है हमारे सेहत के लिए. कई बार ऐसा भी होगा, मैं समझती हूँ हमारे में से बहुत सारे लोग ऐसा करते होंगे, सुबह उठते ही पहला होता है कि मोबाइल पर देखना किसने क्या मैसेज भेजा. तो डॉक्टर जी, इससे कैसे पीछा छुड़ा सके, क्योंकि ये एक ऐसी आदत बन चुकी है बहुत सारे लोगों की कि किसने क्या पोस्ट किया, किसने क्या रिएक्ट किया, या सोशल मीडिया पर किसने हमारे लिए क्या बताया, इन सारी चीजों से कैसे पीछा छुड़ाए.
0: फॉलो दिनचर्या. दिना मीन्स डे, चर्या मीन्स रूटीन. तो दिनचर्या में हमारा जो मॉर्निंग टाइम जो है वो हमारे लिए रखना है, वो 15 मिनट्स या आधा घंटा, जैसे मैंने बोला,
1: किसी से मतलब कोई बात नहीं करनी थोड़े देर के लिए, और बिल्कुल जैसे ये नहीं देखना है कि दुनिया में क्या चल रहा है.
0: थोड़ा मेडिटेशन या कुछ योगा एक्सरसाइजेस इसके बाद देखना है, एक तो है. और सिमिलरली वो रात को सोने से पहले वो कट ऑफ करना है डिटॉक्सिंग में.
1: बिल्कुल.
0: दूसरा है अपने लिए खुद थोड़ा एक टाइम लिमिट रखना है. आज मैं एक घंटा स्क्रॉल करने वाले या आधा घंटा, वो ठीक है. और कभी कभी क्या होता है ना, लोग अब ज़्यादातर रील्स ही देखते हैं.
1: हाँ.
0: हमारा अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है कि ये रील्स में क्या होता है, 10 सेकंड्स रील्स, 20 सेकंड्स. पहले होता था 1 मिनट का, अभी तो 30 सेकंड्स या 20 सेकंड्स, उससे ज्यादा तो टिकता ही नहीं है लोगों का
1: बिल्कुल
0: अटेंशन.
1: हाँ.
0: तो मुझे क्या लग रहा है, एक टाइम फिक्स करके एक मूवी देखा या कुछ देखा, तो उसमें थोड़ा डिसिप्लिन हमारे फैमिली से ही शुरू करना है.
1: बिल्कुल.
0: सब लोग, जैसे आपने बोला कि अगर मम्मी पापा फोन देख के बैठ रहे हैं तो बच्चा भी वही करने
1: करेगा. सही बात है. सही
0: बात. दैट डिसिप्लिन विल कम फ्रॉम होम.
1: बिल्कुल बिल्कुल. जो बड़े करते हैं वो फॉलो करना है, और उसी से हमारा जो फैमिली का जो लाइफस्टाइल है वो हम ठीक कर सकते हैं. डॉक्टर जी, मैं ये पूछना चाहूंगी, ऐसा कहा जाता है मेंटल हेल्थ इज रियल हेल्थ, इसमें कितनी सच्चाई है, इस पर आप क्या कहेंगे?
0: कभी कभी क्या होता है, हमारा माइंड स्ट्रांग है तो जो भी बॉडी में हो रहा है वो हम टॉलरेट कर पा रहा है. अब कभी कुछ बीमारी आ गया, जैसे कि लोगों को कभी कभी कैंसर, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है, तो पहले जो फीलिंग इमोशन उनके अंदर होता है वो फियर. भाई.
1: हाँ.
0: तब वो पूरा जो एनर्जी था वो पूरा गया.
1: हाँ,
0: तो जब भी हमारा माइंड स्ट्रांग रहता है, बैलेंस रहता है, तब हम सब हैंडल कर सकते हैं. इसलिए हमें हमारा मन का जो हाइजीन है, जैसे मैंने बोला मेंटल हाइजीन, वो ठीक से रखने के लिए डेली थोड़ा प्राणायाम मेडिटेशन प्रैक्टिसेस रखना है.
1: बिल्कुल बिल्कुल. तो ये करने से मतलब हमारा मन स्ट्रांग बनेगा, फोकस्ड रहेगा, हमें क्या करना है, क्या सही है क्या गलत

0: है ये समझने की हमारी जो क्षमता है वो बढ़ेगी। और डेफिनेटली डॉक्टर जी, हमारा जो आखिरी क्वेश्चन होगा कि हमारे जो श्रोता हैं जो हेल्दी जीवन जीना चाहते हैं, यहाँ पर आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा कई सारे ऐसे वर्कशॉप्स चलाए जाते हैं, मैं ज़रूर आपसे निवेदन करूँगी ये आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये कहाँ कहाँ पर चलाए जाते हैं और उसका जो टाइम लिमिट ड्यूरेशंस जो हैं वगैरह उसके बारे में अगर आप हमें बता सकें।
1: तो जैसे मैंने बताया सब एज ग्रुप को ये चाहिए,
0: हाँ,
1: इसलिए हमने 5 साल से लेके सबको अलग अलग प्रोग्राम्स डिजाइन करके रखा है।
0: हाँ जी।
1: तो बच्चों के लिए उत्कर्ष योगा और टीनएजर्स के लिए मेधा योगा प्रोग्राम, उनके लिए थोड़ा पर्सनालिटी रिलेटेड नो इवेंट्स एक्टिविटीज सब रहता है टीनएजर्स के लिए। और हमने बच्चों के लिए एक अलग सा एक प्रोग्राम इंट्यूशन प्रोग्राम भी रखा है।
0: अच्छा।
1: जहाँ पे ना बच्चों का इंट्यूटिव एबिलिटी द सिक्स्थ सेंस वो एक्टिवेट करके रखने के लिए टेक्निक सिखाते हैं। बहुत बच्चों ने इसका काफी सारा फायदा उठाया क्योंकि उनको सही टाइम पे क्या गलत है क्या सही
0: ये
1: है,
0: समझना
1: ये समझ में आता है। और वो प्रेडिक्ट भी करते हैं काफी सारे चीजें, सो दे विल गेट अ क्लैरिटी विजन अबाउट लाइफ, एक तो ये है। और दूसरा है सबको 18 प्लस जो भी है उनके लिए सुदर्शन क्रिया प्राणायाम वगैरह सिखाने वाले बेसिक प्रोग्राम, हैप्पीनेस प्रोग्राम भी है और एडवांस लेवल प्रोग्राम्स, और एक यूनिक मेडिटेशन टेक्निक भी हम सिखाते हैं, सहज समाधि मेडिटेशन, कहीं पे भी हम बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं।
0: अच्छा।
1: बहुत सरल टेक्निक होता है वो भी है। और ये सब हमारा मेन जो सेंटर्स है वोटन और गुडलैंड्स में, वहाँ पे रेगुलर क्लासेस रहता है और वहाँ और हमारा बहुत सारा सब सेंटर्स भी है पूरे मॉरिशियस में,
0: और वहाँ पर टीचर्स जैसे टीचर्स द्वारा ऐसे गाइडेंस दी जाती है।
1: और ये लाइफस्टाइल रिलेटेड भी लोगों को अवेयरनेस चाहिए, इसलिए हम आयुर्वेदा रिलेटेड हीलिंग रिलेटेड प्रोग्राम्स भी देते हैं, जैसे कि हमारा वाइटल पॉइंट्स को लेके मर्मा पॉइंट्स को लेके सेल्फ हीलिंग कैसे करना है और आयुर्वेदा को डेली लाइफ में कैसे यूटिलाइज करना है, और कभी कभी कुछ स्मॉल मुद्रास जो हेडेक है उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं,
0: मतलब वो सिखाया जाता है जिससे कि उनकी जो छोटी छोटी इश्यूज हैं वो ठीक हो सके।
1: आयुर्वेदा रिलेटेड प्रोग्राम्स भी देते हैं, आयुष जागृति
0: जी। तो आज हमारे साथ है, जी हाँ, आयुर्वेदा डॉक्टर दिया बाबू आज हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित रहीं, जो कि खुद एक लाइफस्टाइल कंसल्टेंट भी हैं और बेशक आर्ट ऑफ लिविंग ये एक ऐसा सेंटर है जो आज लोगों को सेहतमंद बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे वर्कशॉप्स बहुत सारे ऐसे कार्य कर रहा है। और ये केवल मॉरिशस नहीं, ये पूरी दुनिया में हर कोने में ऐसे ऐसे टीचर्स हैं जो बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों को गाइडेंस दे रहा है कि किस तरह से आप जीवन शैली को बदल सकते हैं अपने ही हाथों से और एक छोटी सी गाइडेंस के द्वारा। तो जी हाँ, आज का ये कार्यक्रम बस यहीं पर समाप्त करने का समय हो चला है। आर्ट ऑफ लिविंग के जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी लोग हैं जो इस नोबल कार्य में अपना सहयोग दे रहे हैं, उनको बहुत सारी बेस्ट विशेस हमारी टीम की ओर से, और ख़ासकर हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर दिया बाबू का जो आज के इस शो में वे उपस्थित हुई, और बिल्कुल हमारी टेक्निकल टीम जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ी रही, इस कार्यक्रम को आप तक पहुँचाने में उनका सहयोग मिला, हमारे साथ तकनीक पर बने रहे काद्या, साथ ही साथ उरुसा बानू, और हमारे साथ बनी रही हमारी प्रोड्यूसर शीतल लुबिन, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे श्रोता, हमारे दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपको भी हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। अगले कार्यक्रम में फिर उपस्थित होंगे एक ऐसे ही टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को।

0: और ये सुनते हैं संक्षिप्त समाचार सुमेहरा के साथ। आपको नमस्कार और आदाब।
1: नमस्कार आदाब। मुर्शिद में पहली बार एक नया पेसमेकर इम्प्लांट किया गया, जीटू अस्पताल में एक मरीजा के दिल में लीडलेस पेसमेकर कामयाबी के साथ डाला गया। ऑस्ट्रिया से आए स्पेशलिस्ट डॉक्टर सेजर कैजन ने मुर्शिद कार्डियोलॉजिस्टों के साथ मिलकर ये सर्जरी की। मरीजा की उम्र 87 साल की है और उन्होंने पहले भी दो बार पेसमेकर लगाया है। इस दफा इस लीडलेस पेसमेकर से कॉम्प्लिकेशन के खतरे कम हैं। पहले इस तरह के ऑपरेशन के लिए लोगों को विदेश जाना पड़ता था, यहाँ इस सर्जरी के बाद मुर्शिद को महारत हासिल हुई है। आज सुबह कंपनी गार्डन पोर्टली में सहकारिता स्मारक के सामने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की गतिविधि की गई। इस साल का विषय सहकारिता दुनिया में शांति की सेवा में। आज का दिन एक ऐसा मौका रहा जो देश की अर्थनीति में सहकारिता तंजीमों के किरदार और गरीबी के खिलाफ संघर्ष पर रोशनी डालता है। पुराने जज विनोद बुलेल कॉन्स्टिट्यूशन और रिव्यू कमीशन की अध्यक्षता संभालेंगे और पूर्व अध्यक्ष की हैसियत से आफुंगचुई युनचुंग ये जिम्मेदारी संभालेंगे। कल कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। विदेश में दक्षिणी यूरोप में जंगलों में आग के खतरे बढ़ रहे हैं। फ्रांस में तेज गर्मी की वजह से दक्षिण में कई जगहों पर आग लगी है। पुर्तगाल में गर्मी की वजह से पेशा आग में कम से कम 9 लोग जख्मी हुए हैं, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगी जा रही है। और स्पेन में भी हालत बहुत गंभीर है। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
1: टैगोलेन लाफ्लोरा में 44 साल के 44 years old श्री शक्ति मधु जो शक्ति के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के सवा बारह बजे इनकी पत्नी काजल मधु के घर टैगोलेन लाफ्लोरा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गौबुआ की शमशान भूमि

0: HIJ की क्रिमिशन टुमारो एट क्वार्टर टू नून शोक में दुबे परिवार से हमें हमदर्दी है.
1: You're listening to RM3 Radio Mana.

कहा नमस्कार आदाब एंड वेरी वेलकम इन गीत गाथा देश की। ये प्रोग्राम चलता है हर शनिवार की शाम को 4 से लेकर 5 बजे के बीच, और इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम देश की बात करते हैं, देश के इतिहास के बारे में बात करते हैं, देश की देश से ताल्लुक रखने वाली ऐसी जानकारियों के बात करते हैं। और आज जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे विश्व में वर्ल्ड कप का बुखार चढ़ा हुआ है, तो हम स्थानीय फुटबॉल के बारे में बात करेंगे। और हम ये जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर टीमों के बारे में, यहाँ पर खिलाड़ियों के बारे में कितना कुछ जानते हैं। हमारा फ़ोन नंबर का सौदे का तो सुसन जिस या 252-50-6200 अगर आप व्हाट्सएप के जरिए हमें भेजना चाहें कोई मैसेज। और जो पहला प्रश्न हम आपसे पूछते हैं, क्या आप जानते हैं किस साल में, क्या आप जानते हैं किस साल में मॉरिशस पार्टिसिपेटेड इन द अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस। एक ही बार इतिहास में एक ही बार हुआ है दैट मॉरिशस हैज पार्टिसिपेटेड इन द फाइनल्स ऑफ द अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस, और वो लगा था इजिप्ट में। आप जानते हैं कि किस साल में मॉरिशस पार्टिसिपेटेड इन द अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस। आपका जवाब कत सौ दो कत सौ जिस पर

रेडियो मनोरंजन की लहरों पर आप सुन रहे हैं गीत गाथा देश की और फुटबॉल का बुखार और कुछ हफ्तों के लिए चलने वाला है और आज हमने विषय रखा है फुटबॉल मुशस के इतिहास में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ दैट आवर कंट्री हैज पार्टिसिपेटेड इन द अफ्रीकन इन द फाइनल्स ऑफ द अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस और ये फाइनल्स लगी थी इन इजिप्ट आपको हमें बस बताना कि किस साल में मुशस पार्टिसिपेटेड इन द अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस अनिता जी ने हमें फ़ोन किया फ्रॉम होशनुआ और उन्होंने साल 2003 के बारे में बात की नो इससे बहुत पहले हुआ था आप हमें फ़ोन करके बता सकते हैं अगर आपके पास जवाब है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 402 80 70

रेडियो मनोरंजन की लहरों पर गीत गाथा देश की। आज फुटबॉल से संपर्क रखने वाले प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं। सवाल हमने पूछा कि इन विच ईयर डिड मॉरिशस पार्टिसिपेट इन द अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस फाइनल्स, और ये फाइनल्स खेले गए इन इजिप्ट, और जवाब था 1974 के फाइनल्स में क्लब एम एक ऐसे ग्रुप में खेला जहां पर कोंगो, ज़ाइर जिसे हम कहते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, और गीनिया थे, और उस समय मॉरिशस ने अपने तीनों मैचेस में टीम एम हार गई थी और वो ग्रुप स्टेज को पार नहीं कर पाए थे। बट दैट वाज अ बिग बिग प्रेस्टीज मॉरिशस के लिए कि स्वतंत्रता के 6 साल बाद हमारी नेशनल टीम ने जाकर अफ्रीकन लेवल पर फाइनल्स में भाग लिया था। सो दैट वाज अनदर एपोक। सो जवाब था 1974 जब क्लब एम ने अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस के फाइनल में भाग लिया था इन इजिप्ट।

गीत गाथा देश की संजय के साथ ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो मनोरंजन सागर की बात हुई, समुद्र की बात हुई, चलें हम हिंद महासागर खेलों की बात करते हैं। मॉरिशस ने दो बार द इंडियन ओशन आइलैंड गेम्स फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है, यानी कि इस टूर्नामेंट में उन्होंने स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल दो बार हासिल किए। आप हमें बताएं कि किन किन सालों में मॉरिशस वॉन द इंडियन ओशन आइलैंड गेम्स फुटबॉल टूर्नामेंट। आपका जवाब उनका 2014

0: गीत गाता देश की संजय के साथ अंदर फ्रिक्वेंसीज और रेडियो मनोरंजन। आज फुटबॉल के बारे में बात करें, लोकल फुटबॉल के बारे में बात करें, खासकर क्रिब एम को लेकर। और हमने पूछा कि किन दो सालों में मॉरिशस ने इंडियन ओशन आइलैंड गेम्स में स्वर्ण पदक, फुटबॉल में स्वर्ण पदक जीता। चले हम इनसे मिलते हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार, आपका नाम?
1: सूर्यदेव जी है, लालमाची से।
0: लालमाची से सूर्यदेव जी, बताएं आपके पास जवाब क्या है?
1: एक 1985,
0: ओके। और दूसरा?
1: दूसरा मालूम नहीं।
0: दूसरा साल 2003 में था।
1: मुझे दिखाई नहीं देता।
0: दूसरा
1: सुनता
0: हूँ। हाँ, दूसरा 2003 में था और ये फाइनल जॉर्ज फिफ्थ स्टेडियम में खेला गया था। और उस फाइनल में मॉरिशस ने रेन्यू आइलैंड को 2-1 के स्कोर पर हराया था। और उस दिन हम वहाँ पर थे, उस भीड़ में थे जब मॉरिशस की जीत हुई थी। क्या आलम था क्रिकेट की।
1: मैं भी था तब, मैं तो ठीक था।
0: हाँ,
1: मैं भी गया था।
0: क्या आलम था, क्या वाइब्रेशन था,
1: बहुत बहुत
0: पूरे पूरी क्रिकेट में जो भीड़ लगी थी और जो माहौल था, किस तरह से लोग उस जीत को मना रहे थे
1: जैसे कि नया साल थे।
0: हाँ, वो सिर्फ एक ही बार हमें उस वाइब्रेशन को जीने का मौका मिला था, उसके बाद ये मौका हमें फिर से नहीं मिला। सो 1985 जब पहली बार के लिए मॉरिशस को स्वर्ण पदक हासिल हुआ था, और साल 2003 में। सो सूर्यदेव जी, इन दिनों वर्ल्ड कप चल रहा है, आपका कोई फेवरेट टीम है आपकी?
1: मेरी फेवरेट में चार निकाला था, चार भी आए, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस और कोलंबिया।
0: और चारों की चारों अभी तक
1: है, अभी जिंदा है वो।
0: स्पेन का मुकाबला किससे होगा?
1: मुझे तो

0: नेक्स्ट ट्यूसडे को।
1: फ्रांस तो खेल रहा है वो कैसे, पराग्वे के साथ,
0: पराग्वे के खिलाफ। सो लग रहा है कि फ्रांस के लिए आसान होगा,
1: फ्रांस फेवरेट है।
0: हाँ फेवरेट है बेशक। सो सूर्यदेव जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में भाग लिया और हमें आधा सही जवाब दिया। ओके धन्यवाद, जय मॉरिशियस।
1: धन्यवाद, जय मॉरिशियस।

सभी लिसनर्स को बहुत बहुत शुक्रिया साथ निभाने के लिए। गीत गाथा देश की रेडियो मनोरंजन पर संजय के साथ ये प्रोग्राम चलता है हर शनिवार की शाम 4 से लेकर 5 बजे तक, जिसमें हम देश के बारे में प्रश्न पूछते हैं और हमारे श्रोताओं से हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि वे लोग अपने देश के बारे में कितना कुछ जानते हैं। आज हमने विषय चुना है फुटबॉल और अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस के बारे में बात की, 1974 के उस कंपटीशन के बारे में बात की, फिर उसके बाद इंडियन ओशन गेम्स के बारे में बात की और ये जाना कि 1985 में और साल 2003 में दो बार मॉरिशस ने ये स्वर्ण पदक जीता फुटबॉल के क्षेत्र में। चलिए अब की बार हम एक खिलाड़ी को ढूंढते हैं, एक बहुत ही मशहूर मॉरिशन फुटबॉलर को ढूंढ रहे हैं जिनका जन्म 1960 में हुआ था, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत की 16 साल की उम्र में मस्लिम स्काउट्स में और फिर लेट 80s के सालों में उन्होंने सनराइज एफसी में खेला और मॉरिशस की नेशनल टीम में भी बहुत नाम कमाया। आई सपोज कि इन सभी जानकारियों से आपको पता चल गया होगा कि हम किस खिलाड़ी को ढूंढ रहे हैं। आपका जवाब देने के लिए आप फ़ोन करें 1902 4 सौ

0: So, अब की बार हम एक खिलाड़ी को ढूंढें, एक ऐसे मशहूर मोशन फुटबॉलर को ढूंढें जिनका जन्म 1960 में हुआ था और जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी 16 साल की उम्र में मुस्लिम स्काउट्स में, और फिर लेट 80s के सालों में उन्होंने सनराइज एफसी और मॉरिशस के नेशनल टीम में बहुत नाम कमाया। हम किस की बात करें, चले हम इनसे मिलते हैं। हेलो
1: हेलो
0: नूरानी साहब, आदाब। आदाब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मोचिदा के रहने वाले हैं नूरानी जी। हाँ, सलीम मूसा, आपने जवाब दे दिया, अच्छा जवाब है सलीम मूसा। आप बताएं कि आप फुटबॉल में दिलचस्पी रखते हैं? लिवरपूल का फैंस है। ओके, तो लिवरपूल के दो खिलाड़ी हम जानते हैं, तीन खिलाड़ी जानते हैं। एक तो मोहम्मद सलाह जो इजिप्ट में खेलते हैं, दूसरे खिलाड़ी हैं इसाक, अलेक्जेंडर इसाक। हाँ, वो उनकी टीम तो चली गई, और वान डाइक भी नेदरलैंड्स के साथ चली गई। हाँ, सुनो रानी जी, अब आप किस टीम के लिए आप किस टीम के फेवर में हैं? आपकी फेवरेट टीम अभी इंग्लैंड के लिए? ओके, हैरी केन के इंग्लैंड के लिए आप आगे जा रहे हैं? ओके, सुनूरानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भाग लिया और सलीम मूसा सही जवाब आपने दिया। आप ऐसे ही रेडियो मनोरंजन सुनते रहें और एमबीसी पर फुटबॉल देखते रहें। धन्यवाद, जय मॉरिशस।

देवी और सजनों गीत गाथा देश के ये प्रोग्राम यहाँ पर समाप्त होने को चला। जैसे कि हमने पहले आपको बताया, आज हमने विषय रखा था फुटबॉल, मोशन फुटबॉल। हमने अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस के बारे में बात की, हमने इंडियन ओशन गेम्स के बारे में बात की, और फिर हमने लोकल फुटबॉल का जिक्र किया। सो आज का प्रोग्राम यहाँ पर समाप्त होने को चला। आप वर्ल्ड कप बेशक एमबीसी स्पोर्ट्स 11 और एमबीसी प्ले पर ज़रूर देखें। चार साल में एक बार ये कंपटीशन आता है, सो नेक्स्ट बार जब आएगा तो हम होंगे पता नहीं। सो लेट्स मेक द बेस्ट कि जब की मौका मिल रहा है, और जिस तरह से आयोजन हुआ है, जिस तरह से प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है, जिस तरह से इन सभी टीमों को खेलने का अवसर प्राप्त हो रहा है, और हर एक देश के जो जो सपोर्टर्स हैं किस तरह से बहुत ही उत्साहपूर्वक अपनी अपनी टीमें को, हाँ हालांकि टीम हार भी जाती हैं तब भी उन लोगों को प्रोत्साहित करते रहते हैं, इनकरेज करते रहते हैं। इट्स अ बिग बिग बिग सेक ऑफ पैट्रियटिज्म और साथ ही साथ ऑफ ह्यूमैनिटी कि हम एक ही साथ एक ही जगह पर एकत्र हो सकते हैं। स्पोर्टिवली वी कैन प्ले अगेंस्ट ईच अदर, और तब भी हम अपनी इंसानियत को नहीं भूलते हैं। सो इसी के साथ ही आज का हमारा ये प्रोग्राम यहाँ पर समाप्त होता है। लॉन्ग लिव मॉरिशस, लॉन्ग लिव फुटबॉल, जय मॉरिशस। फिर से मिलते हैं गुरुवार की शाम को प्रोग्राम राम रस धारा में।

0: Center, 95.5. North, South, 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station. Purane Nagme.
3: 94.6, 98.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है और एम फ्री रेडियो मनोरंजन. स्वीकार कीजिए और जय प्रताप सिंह का प्यार भरा नमस्कार. वेलकम टू आवर शो, योर मस्त इवनिंग शो पुराने नगमे. पुराने नगमे अभी से लेकर 6 बजे तक. यस, उसके बाद 6 बजे समाचार, 6:15 बजे नई सोच और 7 बजे दिलों की आवाज़. और हमारा आपका साथ पूरा हो जाएगा आज रात के 9 बजे. सो 5 बजे से 9 बजे तक आपको हमारा साथ देना है ऑन ऑरेंज फ्री रेडियो मनोरंजन. यादों की दुनिया में चले आइए, सितारों की महफिल है जहाँ पर एक से एक सितारे कदम बढ़ाने जा रहे हैं. बड़े अच्छे लगते हैं रेडियो मनोरंजन और उसके लिसनर्स और आप. चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना अमित कुमार की आवाज़ में. बड़े अच्छे लगते हैं.

श्रीदेवी जो है उन्होंने बहुत सारे फिल्मों में काम किया और ज़बरदस्त अभिनय उन्होंने दिया, स्पेशली इन द फिल्म नागिन, जी हाँ नागिन के रोल में, और नजर आई थी और सपेरे के रोल में थे अमरीश पुरी साहब, और इस फिल्म में नजर आए थे मेन आर्टिस्ट यू नो, और ऋषि कपूर इन द मेन लीड विद श्रीदेवी, और श्रीदेवी की आँखें जब वो नागिन बनती है तो आँखें नीली हो जाती है। मैं तेरा दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा, मैं नागिन तू सपेरा। और बेशक नागिन पर, नागिन टाइटल पर बहुत सारी फिल्में बनी, केवल श्रीदेवी पर नहीं, बहुत सारे आर्टिस्ट पर। तो सुनते वो पुराना सा गाना, पुरानी फिल्म नागिन से लिया गया, तन डोले मेरा मन डोले। चलिए एक साथ सुनते प्यारा सा गाना, नागिन फिल्म का गाना, दिस इज द ओल्डेस्ट नागिन, ऑलराइट। इसमें श्रीदेवी नहीं थी ना ही अमरीश्वरी, दैट्स द ओल्डेस्ट फिल्म नागिन। चलिए एक साथ सुनते What a lovely music. आप ही नागिन की तरह डोलिएगा, हम भी आपके साथ डोलते हैं, ऑरेंज फ्री रेडियो मनोरंजन पर। मेरा मन डोले, मेरा तन डोले।

रियल लाइफ में बहुत से लोग नाग नागिन से डरते हैं, क्योंकि नाग जब दसता है तो बहुत जहरीला होता है और इंसान की जान चली जाती है। पर भारत में नाग नागिन की पूजा होती है, नाग पंचमी मनाया जाता है। यस, आई वाज टॉकिंग अबाउट श्रीदेवी कुछ समय पहले, सब उस पर पिक्चराइज जी गाना। यस, लेट श्रीदेवी आज वो हमारे बीच नहीं है इस दुनिया में, पर उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। हम में से बहुत से लोग श्रीदेवी की बहुत ज़बरदस्त चाहने वाले उनके फैंस हैं। सो हो जाएगा ना, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू सपेरा। यस, क्या ज़बरदस्त डांस किया था श्रीदेवी ने इस फिल्म में। यस, बहुत साल पहले बनी थी फिल्म, और जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो ये गाना रोज़ रेडियो पर आता था, MBC रेडियो पर रोज़ गूंजता था, और पहले लोग पोस्टकार्ड भेजा करते थे कि हमें ये गाना चाहिए। सो पीपल वेरी लव दैट सॉन्ग, यू नो। आज भी लोग जब इस गीत को सुनते हैं तो उस दृश्य को याद करते हैं, किस प्रकार अमरीश पुरी बीन बजा रही है और श्रीदेवी उस बीन की धुन पर नाच रही है, उनकी आँखें नीली करते हुए अमरीश पुरी पर प्रहार करती है। क्या बात है, नागिन और सपेरा का जो होता है ना आमना सामना, बहुत ही भयानक होता है। चलिए भी सुनते हैं प्यार से गाना लता जी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है नगीना।

एक तरफ अगर अमरीश पुरी हमेशा विलेन के रोल में नजर आते हैं तो दूसरी ओर सनी देओल हमेशा हीरो के रोल में नजर आते हैं। और सनी देओल की पहली फिल्मों में से एक फिल्म थी बेताब। यस, बादल यूं गरजता है। यस, क्या एक्टिंग किया है उसने इस गीत में। साथ में थी अमृता सिंह। यस, एंड दैट फिल्म वॉज अ ब्लॉकबस्टर। इस फिल्म के गाने बहुत अच्छे थे और आज भी लोग इस गीत को बार बार सुनना चाहते हैं। यू नो, सनी देओल हैज ऑलवेज बीन डिपिक्टेड एज द एंग्री यंग मैन। दामिनी में क्या रोल निभाया था। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। जज साहब, ये तारीख पे तारीख कब समाप्त होगा? आपको याद है ना, सनी देओल साहब? यस, और बहुत जल्द रामायण फिल्म बन रही है और इस फिल्म में वो नजर आएंगे, यू नो, इन द रोल ऑफ हनुमान। यस, आपने सही सुना, फिल्म रामायण जो नई फिल्म बन रही है जो एक दो महीने में तैयार हो जाएगी, उस फिल्म में सनी देओल ने हनुमान का रोल किया है। सो वी यूजुअली सी हिम एज एंग्री यंग मैन। देखते हैं इस फिल्म में हनुमान का रोल कैसे निभाती है। सो सनी देओल और अमृता सिंह पर पिक्चराइज वही रोमांटिक सा सीन। क्या बात है, बादल यू गरज, अभी मौसम सुहाना है। आई एम श्योर

0: जी हाँ दोस्तों, आप सबको ये शाम मुबारक हो। और ये शाम एकदम खूबसूरत है, लाजवाब है, क्योंकि आप लोगों का साथ हमें जो मिल रहा है शाम के 5:40, और बेशक आप सुन रहे हैं और इन फ्री रेडियो मनोरंजन रेडियो से प्रोग्राम पुराने नगमे। पुराने गीतों की बात ही कुछ अलग है। जरा याद कीजिए वो ज़माना जब हेमा मालिनी नजर आई थी फिल्म सत्ते पे सत्ता पे। यस, सत्ते पे सत्ता में उनके साथ है बिग बी अमिताभ बच्चन साहब, आसरानी एंड मेनी अदर आर्टिस्ट। कैसे हेमा मालिनी सुधारती है अपने देवरों को एक भाभी अपने देवरों को कैसे सुधारती है, इस फिल्म में आप सिखाया जाता है। एंड दैट वाज अ ग्रैंड मूवी, यू नो, बिग बी अमिताभ बच्चन साहब और साथ में हेमा मालिनी, इनका जो साथ है लोगों ने बेहद पसंद किया। स्पेशली ये गाना जो था, झुका के सर के पूछो मैडम हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। कुछ लोग फ़ोन करके पूछ रहे टिकटॉक क्यों नहीं चला। अरे भाई, टिकटॉक चलेगा 6 बजे के बाद, 6:15 से रात के 9 बजे तक। आई बी लाइव ऑन टिकटॉक ऑन द पेज ऑफ ऑरेंज रेडियो मनोरंजन, सो डोंट वरी, बी हैप्पी। विल बी लाइव ऑन टिकटॉक 6 बजे के बाद, ओके। अभी के लिए हो जाए हेमा मालिनी और बिग बी पर पिक्चराइज वही गाना, झुका के सर के पूछो मैडम हाउ डू यू डू। और जितने मैडम हमें सुन रहे हैं, लेडीज सुन रहे हैं, मैडम हाउ डू यू डू, लेडीज लोग कैसे आप, ठीक ठाक, खाना बन रहा है ना या खाना नहीं बनेगा आज शायद आज जो है जेंट्स खाना बनाएंगे और लेडीज बैठ के खाएंगी, क्या बात है।
1: ओहो, अरे कोई सांस तो छेड़ो। झुका के सर को पूछो मैडम हाउ डू यू डू।
2: नहीं नहीं नहीं भाभी, ऐसे नहीं, एक्टिंग करके बताओ।

0: ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो,
1: अरे तू भी चुप हो जा।
0: खामुखा बीच में बजाता रहता है। अच्छा भाभी, अगर वो नहीं शर्माई तो?
2: अरे पागल बुद्धू, वो अगर नहीं शर्माई तो कोई और शर्माएगी।
3: ऐसा क्या?
2: हाँ,

अभी जो गीत आपने सुना उसे हमने लिया था फिल्म सत्य पे सत्ता से एंड द लास्ट टू सेंटेंसेस वर इंटरेस्टिंग आई लाइक यू एंड आई लव यू सो इन दो वाक्यों में अंतर क्या है आई लाइक यू फॉर समवन एक दोस्त है आप एक दोस्त कहते हैं हे दोस्त आई लाइक यू बट व्हेन यू आर टेलिंग योर स्वीट हार्ट अपने जानमन से कह रहे आई लव यू सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन फ्रेंडशिप एंड लव दोस्ती दोस्ती है प्यार प्यार है Don't mix up two things together, all right? अब जरा हम आपको सुनवाते हैं कैसा गाना जहाँ पर ऋषि कपूर साहब और जय प्रदा ने साथ में एक्टिंग की थी That was the movie सरगम डफली वाले डफली बजा आपको याद है ये गाना ना Yes, जय प्रदा was dropped in a white साड़ी और ऋषि कपूर साहब डफली बजा रहे थे And Jayaprada ne achhe dancer ka role nibhaya. She danced so well in that song, you know. It's geet mein unhone itna achha tarah se nacha ki kya bataye. Aur aap mein se bahut se log Jayaprada aur Rishi Kapoor ki fans hain. Hain ki nahi? So geet aapke naam Dafali Wale, Dafali Baja.

अगर लोग वादा निभा नहीं सकते तो क्यों बड़े बड़े वादे करते हैं जी हाँ वादा तो वो है जो निभाया जाए हर हाल में पर कुछ लोग बहुत झूठे होते हैं कहते हैं मैं तुम्हारे ये करूँगा वो करूँगा पर जब समय आता है कुछ करने के लिए तो पीठ दिखा देते हैं और छोड़ कर चले जाते हैं वेरी बैड और आजकल लोग ऐसे ही हो रहे हैं समय के साथ हम देखते हैं कि लोग झूठे वादे करते हैं और कुछ लोग झूठे वादों में बिलीव भी करने लगे हैं सो डोंट बिलीव इन एनीवन आज की दुनिया ही ऐसी है जिससे पे वादा करते हैं जिसके साथ वादा करते हैं वही वादा तोड़ देते हैं पर आप उन लोगों में से बनिए जो वादा करे तो वादा हर हाल में निभाए यू वादा ना तोड़

तेरी मेरी प्रेम कहानी जगदीश सिनंदन और कविता कृष्णमूर्ति की गायी संगीत के साथ ही पुराने गीतों पर आधारित प्रोग्राम पुराने नगमे यहीं पर समाप्त होता है। 6 बजे होगा पूरा समाचार बुलेटिन और समाचारों के बाद हमारी आपकी मुलाकात फिर से होगी इसी चैनल पर नई सोच प्रोग्राम के साथ और साथ में प्रोग्राम होगा दिलों की आवाज़ 6:15 से 7 बजे तक नई सोच और रात के 7 से 9 बजे तक दिलों की आवाज़। सो आई विल बी विद यू सुबह के 6 शाम के 6:15 बजे से रात के 9 बजे तक

6 बजे है। पेश हैं समाचार बुलेटिन। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। मुशरस में पहली बार एक नया पेसमेकर इम्प्लांट किया गया। जिटू अस्पताल में एक मरीजा के दिल में लीडलेस पेसमेकर बाकामयाबी डाला गया। ऑस्ट्रिया से आए स्पेशलिस्ट डॉक्टर सेजर कैजिन ने मुशरस कार्डियोलॉजिस्टों के साथ मिलकर ये सर्जरी की। अब मरीजों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जिन बच्चों के व्यवहार में गंभीर मसले हैं, इनकी देखभाल करने में पेश चुनौतियों का हल ढूंढने के लिए गठित कमेटी की बड़ी सिफारिशों से एक खास इकाई कायम। परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक कानून को अमल में लाने का फैसला किया। खियोले में सर रविंद्रनाथ गबारन स्टेडियम फिर से नई सहूलतों के साथ कार्यरत। करार प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और इलाके के निर्वाचित सदस्यों ने मूल ढांचे का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि चुनावी अभियानों के दौरान वासियों ने इस स्पोर्ट्स सुविधा के स्तर को बेहतर करने की मांग की थी। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने सन 2015 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए सबसे सॉलिडारिटी की

0: मांग की है ताकि सब अच्छी दिशा में बढ़ सकें। कल त्रियोली में वे पेंशन प्रणाली पर बात कर रहे थे। और यूरोप में शदीद गर्मी, फ्रांस में अतिरिक्त 1000 मौतें दर्ज हुई हैं। नमस्कार, रादाब। एक बार फिर से मुर्शस में पहली बार एक नया पेसमेकर इम्प्लांट किया गया। जीटू अस्पताल में एक मरीजा के दिल में लीडलेस पेसमेकर बकामयाबी डाला गया। ऑस्ट्रिया से आए स्पेशलिस्ट डॉक्टर सेजर कैजिन ने मोशन कार्डियोलॉजिस्टों के साथ मिलकर ये सर्जरी की। मरीजा की उम्र 87 साल की है और उन्होंने पहली बार पेसमेकर लगाया, यानी ये लीडलेस पेसमेकर लगाया। इस दफ़ा इस लीडलेस पेसमेकर से कॉम्प्लिकेशन के ख़तरे कम हैं। पहले इस तरह के ऑपरेशन के लिए लोगों को विदेश जाना पड़ता था। यहाँ इस सर्जरी के बाद मुर्शस को महारत हासिल हुई है। कोयल सितर, रजनी बेकर।
1: मॉरिशस में 87 वर्ष की मरीज पर एक वायरलेस पेसमेकर लगाया गया। ऐसा पहली बार हुआ है। चिकित्सा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ही देश में ये लघु उपकरण लाया गया। ऑस्ट्रिया के एक हृदय चिकित्सक की मदद से मॉरिशन टीम के सहयोग से ये सर्जरी संपन्न की गई। कार्डियोलॉजी कंसल्टेंट इंचार्ज डॉक्टर देवादा सेंचलन ने कहा,
2: à deux reprises, sa fille infectée du côté droit, du côté gauche, finalement, parce qu'il n'a aucun moyen pour tirer des pilules olivies. Que les cas typés dépendants, le NPHMK temporaire. Heureusement, nous finissons de discuter avec mon directeur de l'hôpital, qui, avec la bénédiction du ministère de la Santé, a accepté d'acheter un boîtier qui comme ça, et qui coûte très cher. Vous pensez qu'à la longue,
1: परंपरागत पेसमेकर के मुकाबले इस उपकरण को सीधा दिल में लगाया जाता है। इसके लिए केबल की आवश्यकता नहीं। इसके साथ ही इन्फेक्शन के कम खतरे और कम जटिलताएं भी है। डॉक्टर सेजा खाजन ने कहा,
3: I'm really happy that it went well. As always, the complication of this leadless are so low and it reduced the cost. It's a little bit expensive, the device, but long-term and longevity of this system can hold for 20 years or more. And there is no complication.
1: अभी तक मरीजों को इस सर्जरी के लिए विदेश जाना पड़ता था। पहली बार ऐसा किया गया है और ये सरकार के विजन के अंतर्गत आता है, जैसे बजट में घोषित विजिटिंग डॉक्टर्स स्कीम के माध्यम से। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू ने कहा,
4: मैम के साथ ये पेपली शेयर में जनरल को सीसी इवन प्रेस्के ला मोचे जैसे कि नो एनवॉय दे हो ए अवेक सा सिस्टम ला कि नो कैपेबल रिड्यूस द नंबर ऑफ पेशेंट कि नो पे एनवॉय ला मेम ला डेपिस एनवी जिसका मेंटेनेंस नो मोफिन ट्रूवे एन रिडक्शन इन द नंबर ऑफ पेशेंट्स कि नो पे एनवॉय दे हो अलो नी बेसे ट्रू मोयन से नो कैपेबल फे टू समन ऑपरेशन आम ब्रिस।
1: मॉरिशस में कार्डियक इलाज के लिए एक अहम प्रगति। भविष्य में ज्यादा मरीज देश छोड़े बिना ही इस विशेष इलाज से लाभ उठा सकेंगे।
0: जिन बच्चों के व्यवहार में गंभीर मसले हैं, इनकी देखभाल करने में पेश चुनौतियों का हल ढूंढने के लिए गठित कमेटी की सिफारिशों से एक खास इकाई कायम की जाएगी। और इस लक्ष्य से परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक कानून को अमल में लाने का फैसला लिया है। सिलवाना पागीमामन, रजनी बेकर।
1: हमला करना, ज्यादा गुस्सा करना, नियमों का पालन करने से इनकार करना, गैर सरकारी संगठनों के अनुसार शेल्टर्स में भर्ती 5-10% बच्चों को व्यवहार संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अक्सर समान हादसे पेश आते रहते हैं और वहां रहने वाले अन्य लोगों की सुरक्षा प्रभावित होती है। चिल्ड्रन फाउंडेशन के 3 शेल्टरों में 0-18 साल के बच्चे जाते हैं। उच्चाधिकारी और कर्मचारी इनके परेशानी वाले व्यवहारों के पहले प्रत्यक्ष दर्शी होते हैं। चिल्ड्रन फाउंडेशन के अध्यक्ष विनेश कुंजल ने कहा,
5: Si dans la famille, il y a brutalité, il y a présence de la drogue, il y a une situation où ça va dans sa vie, il y a vécu. Il y a un ramassant, et quand il vient les autres places, il retient. Il retient pourquoi? Pour violence physique, mentale, et du bully, tout le monde qui est autour, etc. etc. Là, lui, il est incontrôlable. D'autres se retirent à soi, se disent, t'as envie de manger à soi, des heures du matin, se brotent dans la cuisine, se bouffer ça qu'ils ont envie, se disent, t'as envie de guetter la télévision, se disent, je ne vois plus dormir, se faire un cas comme ça. C'était dans un cas pareil. L'hiver est difficile pour un personnel capable de mettre un plan de travail avec eux. Et là, oui, on a les autres, quand ils guettent un comportement pareil. Ils ont dit, c'est une intendance, je crois, mais si ça a à faire, nous aussi, nous sommes capables de faire pareil.
1: इन दिनों मॉरिशस में 8 रेजिडेंशियल केयर संस्थाएं कार्यरत हैं, जिनमें से एक नेशनल चिल्ड्रन काउंसिल की ओर से संचालित। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एवं अटॉर्नी जनरल की ओर से एक समिति की सह

0: अध्यक्षता करने वाली एक समिति का गठन किया गया है जो व्यवहार की गंभीर समस्याओं वाले बच्चों को संभालने से जुड़ी चुनौतियों और समाधानों को आइडेंटिफाई करने का काम करेगी। कुछ प्रमुख कमियां पाई गई हैं, साथ ही एक विशेष संस्था की अनुपस्थिति है और इन बच्चों की जिम्मेदारी लेने की बात को लेकर मौजूदा संस्थाओं के बीच कंसेंसस की कमी भी। ये निष्कर्ष निकाला गया कि आपातकालीन रूप से उन बच्चों के लिए एक विशेष संस्था कायम की जानी चाहिए जिन्हें व्यवहार संबंधी गंभीर परेशानियां हैं।
1: Il y a tout un travail qui vous a fait. Vous avez toute une équipe qui est spécialisée, multidisciplinaire. Ça, l'équipe là, il y a un psychologue, un psychiatriste, il y a un occupational thérapeute. Aussi, nous avons un éducateur spécialisé pour comprendre comment pour faire pour travailler avec ces enfants-là. Alors, c'est pour ça que nous avons une équipe multidisciplinaire pour capable guider ces enfants-là holistiquement dans tout ce approche.
0: इस नई विशेष संस्था के दोहरे कार्य हैं: बच्चों के लिए शरण प्रदान करना और उन्हें शिक्षा प्रदान करना। यहाँ पर प्रशिक्षित पेशेवर कर्मचारी होंगे जो पूरी तरह से स्वायत्त भी होंगे। इस संस्था को कायम करने के लिए एक उपयुक्त कानूनी ढांचा तैयार किया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम फाइनेंस बिल को अंतिम रूप देने के लिए एक आर्थिक कमेटी की अध्यक्षता संभालेंगे। समिति की पहली बैठक बुध 8 जुलाई को लगाई जाएगी। कल कैबिनेट की बैठक में ये नोट लिया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री के हालिया सेशल दौरे का भी जायजा लिया गया। कैबिनेट की बैठक में ये भी फैसला लिया गया कि पुराने जज विनोद बुलेल कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन की अध्यक्षता संभालें। पूर्व अध्यक्षा की हैसियत से अफुंग चुई युंग चोंग ये जिम्मेदारी संभालेंगी। आयोग के दूसरे मेंबरान भी होंगे। त्रियोले में सर रविंद्रनाथ गबारन स्टेडियम फिर से नई सहूलतों के साथ कार्यरत होने लगा है। कल रात प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम, स्पोर्ट्स मंत्री देवेंद्र नागालिंगम और इलाके के निर्वाचित सदस्यों ने इस मूल ढांचे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि चुनावी अभियानों के दौरान वासियों ने इस स्पोर्ट्स सुविधा के स्तर को बेहतर करने की मांग की थी। मौके पर एक गैला मैच का आयोजन भी किया गया। राजीव कंपत, रजनी बेकर।
0: त्रियोले स्थित सर रविंद्रनाथ गबारन स्टेडियम में फुटबॉल की शाम थी। स्टेडियम में पुनर्निर्माण कार्य किए गए, रोशनी की व्यवस्था की गई जिसकी बदौलत रात में भी स्पोर्ट्स गतिविधियां चलाई जा सकेंगी। साथ में चेंजिंग रूम, बैठने की जगह और अन्य स्थानों में भी मरम्मत के काम पूरे किए गए। निवासियों के लिए ये संतुष्टि की बात है जो काफी लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे।
3: Mais aujourd'hui, nous gagnons des gars pour nous, ça fait un grand plaisir, nous sommes capables de pratiquer le football plus bien.
4: Il y en a pas mal, ils nous réunissent, nous recommençons nos entraînements en soi, tout ça.
5: Il y a beaucoup de jeunes qui viennent là, ils viennent jouer au football, et il y a un grand timon aussi qui viennent le matin, ils viennent faire du sport.
0: प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के कल कमनों द्वारा रात में इसका औपचारिक पुनः उद्घाटन किया गया। युवा एवं खेल मंत्री तथा चुनाव क्षेत्र के सांसद और अन्य कई महानुभाव भी मौजूद रहे। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने स्पोर्ट्स में लोगों के संगठित करने की क्षमता के महत्व पर बात की। इसके अलावा उन्होंने ये याद दिलाया कि स्टेडियम का पुनर्निर्माण कार्य करने की मांग चुनाव अभियान के दौरान बासिंदों द्वारा की गई थी।
6: Passer dans floodlights, c'est qu'une brûlée, une reste brûlée. Pendant qu'un éclairage, l'herbe une montée, ça était là, pas coupé. Seringue dans le gazon. Fencing une cassée, pas de réparer. Les chiens errant partout, et supposé faire ce pot là. Et moi, je promets, si je viens premier ministre, nous pour refaire ce stade-là pour du monde qui a pratique sport comme au bizarre. Et aujourd'hui, d'après ce que vous trouvez là, ce stade-là est un bijou.
0: मंत्री देवेंद्र नागालिंगम ने देश भर में सभी स्तरों पर स्पोर्ट्स को प्रोत्साहित करते रहने की सरकार की पहल पर बात की। साथ में युवा उत्थान पर भी बात की गई।
7: किली फुटबॉल, लैटलेचिस Dans tout niveau, nous allons sentir revivre. Et c'est ça qui nous veut faire. Les tours de l'île Maurice, doucement, doucement, nous permettent pas de nous faire ce qu'il fait.

0: parce que c'est un outil ça. Pour combattre la drogue, ou bien donner un moyen pour qu'ils aient enfin là contents dans ce qu'ils veulent faire.
1: रियोले स्थित इस स्टेडियम का नया रंग रूप, वहां उपस्थित लोगों को इलाके की दो टीमों के बीच एक पहले मैच को देखने का आनंद उठाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक ऐसा स्थान जो छोटे बड़े सभी को नियमित रूप से स्पोर्ट्स करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
2: सर रविंद्रनाथ गबरन स्टेडियम के उद्घाटन के दौरान बोलते हुए प्रधानमंत्री ने पेंशन प्रणाली को लेकर भी बात की। डॉक्टर नवीन रामकुलाम ने सन 2015 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की रिपोर्ट का उल्लेख किया, जिसमें तभी पेंशन से में सुधार लाने का मुद्दा उठाया गया था। प्रधानमंत्री ने सबसे सॉलिडारिटी की मांग की ताकि सब अच्छी दिशा में बढ़ सकें। उन्होंने कहा कि रास्ता मुश्किल है क्योंकि पिछली सरकार ने गंभीर आर्थिक स्थिति छोड़ी है, लेकिन देश के बेहतर भविष्य के लिए ये चरण जरूरी है, कहा सरकारी नेता ने। उन्हें सुनते
3: हैं au partage de l'économie dans les affaires qui disent où there's no such thing as a free lunch. Tout les affaires qui vous faire et n'ont pas de conséquences. Aujourd'hui, nous avons toutes les conséquences. Parce qu'il y a des gens qui disent mais qu'il ne faut pas augmenter TVA. Pense à casser puis pension. Pas ça la solution. Parce qu'il est insoutenable. Aujourd'hui, sa pension, son budget, il peut coûter plus que budget la santé, budget l'éducation et une partie pour le logement social. Vous mettez ensemble pension coûte plus cher. Moi pas connais réforme là pour un populaire. Mais c'est moi qui m'a besoin faire moi. Pareil comme un papa dans sur la case. Il a besoin faire certains sacrifices pour que ses enfants capables gagner l'avenir vivant. C'est ça qu'il nous peut faire. Et c'est pas vrai que personne n'a besoin de pension. Hein? Si nous parlons maintenant que Bini dit mais les là vous trouvez pas besoin de pension à un certain moment. Nous besoin d'être global. Nous pouvons faire tout pour transformer ce pays là. Et moi me confie moi. Hein? Pour confier en l'état venu, nous revenons devant vous pour connaître qu'il nous fait et qu'il nous pas faire. Mais il prend le temps. Parce que jamais nous connaissons, nous trouvons Venezuela, il y a un tremblement de terre, mais la case est écrasée, même les affaires ici-là. Je ne détruis l'économie, Maurice. Nous avons besoin de refaire tout à zéro.
2: पुल बेरोंजे जोआना बेरोंजे और चेतन बाबूलाल आज सुबह प्रेस से मुखातिब हुए। पेंशन प्रणाली में सुधार पर मुख्य रूप से बात हुई और फ्रों मिलिटेंट प्रोग्रेसिस्ट के गठन पर भी चर्चा हुई। यासीन दिन मोहम्मद की रिपोर्ट पर यचना मिश्रा का विवरण।
4: पेंशन प्रणाली में बदलाव को लेकर पुल बेरोंजे ने कहा कि प्रस्तावित प्रणाली में अनिश्चितताएं हैं। उन्होंने फाइनेंस बिल के परीक्षण के लिए गठित मंत्रालय समिति पर चर्चा की।
5: Qui est Ramgoulam pour présider un comité interministériel.
4: अब जाकर नवीन रामगुलाम एक मंत्रालय समिति की अध्यक्षता करेंगे। कम से कम संबंधित लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए थी। पेंशन फाइनेंस बिल का हिस्सा ही नहीं होना चाहिए था। सबसे पहले बजट कदम प्रस्तावित करें और बाद में समय लेकर चर्चाओं के बाद पेंशन सुधार
5: लाएं।
4: मींस टेस्ट हटाए जाने के संबंध में पूर्व डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का मानना है कि कई पहलुओं पर स्पष्टीकरण बाकी है। सिर्फ मींस टेस्ट समस्या नहीं, 60 से 65 साल के बीच और उसके बाद भी कैसे पेंशन निर्धारित होगा। राजनीति को लेकर पुल बेरोंजे ने फ्रों मिलिटेंट प्रोग्रेसिव के भविष्य पर बात की। उन्होंने कहा कि ये दल ज्यादा तेजी से हस्तक्षेप कर सकता है। उन्होंने कहा कि वे कई गैर संसदीय संगठनों के साथ संपर्क में हैं।
2: आज युवकों के साथ जूनियर मंत्री तनेश्वर दामगी, फैब्रिस दावीद और सांसद कविराज रुकनी ने बजट 2026-2027 को लेकर एक पोस्ट बजट ब्रीफिंग का आयोजन किया साइबर सिटी एबेन में। नौजवानों ने बजट को लेकर अपनी उम्मीदें जताई हैं, खासतौर पर नौकरी के मौक़ों को लेकर और पेशवराना विकास

0: के चलते खरीद क्षमता पर भी बात हुई है। कई साझेदारों के सहयोग से इसका आयोजन किया गया, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस और लेंस को मॉरिशस शामिल है। आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है। मॉरिशस में करीब 900 सहकारिता संगठन हैं, जो मुल्क की अर्थनीति के अहम सेक्टरों में काबिलेदाद योगदान दे रहे हैं। इनकी हिम्मत अफजाई के लिए कई पहल ली गई हैं, खासतौर पर नई नस्ल को सहकारिता क्षेत्र में कटिबद्ध होने में हौसला देने के लिए और हौसला देने के लिए नौजवानों से सहकारिता क्षेत्र का शोला जराए रखने की उम्मीद है, ताकि सॉलिडारिटी और समर्थन की बुनियाद पर खड़े किए गए आर्थिक मॉडल में नवीनता लाकर इसे आगे बढ़ा सकें।
1: लिस्कालिए सहकारी समिति की शुरुआत बेहद सरल तरीके से हुई थी। शुरुआती दौर में कुछ निवासी पेड़ की छांव में इकट्ठा होकर अपनी सहकारी संस्था के गठन पर चर्चा करने और इस सामूहिक परियोजना की नींव रखने आए। एक छोटी सी पहल जो समय के साथ एक बड़ी सफलता की कहानी बनी। 1940 में इसकी स्थापना हुई। चुनौतियों के बावजूद हम काम जारी रख पा रहे हैं, नौजवानों को भी साथ ला रहे हैं ताकि हमारा काम आगे बढ़ता जाए। आज ये सहकारी समिति 200 से अधिक सदस्यों को एक साथ जोड़ती है, जो शक्कर उद्योग से जुड़े हुए हैं। संस्था अब नई पीढ़ी को भी आकर्षित कर रही है, जो इसके विकास में सक्रिय योगदान दे सकती है। कानूनी क्षेत्र में कार्यरत युवा पेशेवर शेल्विन हमसामी अब इसके प्रशासनिक परिषद का हिस्सा हैं। सहकारिता जारी रहनी चाहिए, हमें समाज और देश के विकास में योगदान देना चाहिए। हम नई प्रणालियां, टेक्नोलॉजी और ज्ञान ला सकते हैं। हालिया बजट के समर्थन के साथ अब सहकारिता मंत्रालय का उद्देश्य सहकारी समितियों को अधिक आधुनिक और प्रभावी साधनों से लैस करना है, ताकि वे आज की आवश्यकताओं के अनुरूप खुद को ढाल सकें और अपनी प्रतिस्पर्धा तथा आकर्षण को और मजबूत बना सकें। डिजिटल दुनिया में टेक्नोलॉजी सभी क्षेत्रों में छाई है। हम सहकारी सोसाइटियों को एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर्स आदि दे रहे हैं, जहां वे खाता लिख सकते हैं, संचालन को डिजिटलाइज कर सकते हैं। मॉरिशस में लगभग 900 सक्रिय सहकारी समितियां अलग अलग क्षेत्रों में काम करती हैं, जैसे कृषि, मत्स्य उद्योग, परिवहन और सेवाएं।
0: जी हाँ, और आज सुबह कंपनी गॉर्डन पोर्टवी में सहकारिता स्मारक के सामने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की गतिविधि की गई। इस साल का विषय सहकारिता दुनिया में शांति की सेवा में। आज का दिन एक ऐसा मौका रहा जो देश की अर्थनीति में सहकारिता तंजीमों के किरदार और गरीबी के खिलाफ संघर्ष पर रोशनी डाला गया। विदेश में दक्षिणी यूरोप में जंगलों में आग के खतरे बढ़ रहे हैं। तेज़ गर्मी की वजह से दक्षिणी फ्रांस में कई जगहों पर आग लगी हुई है। मौतों की संख्या 2025 के पार है। पुर्तगाल में गर्मी की वजह से पेशाग में कम से कम 9 लोग जख्मी हुए हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगी जा रही है। स्पेन में भी हालत बहुत गंभीर है। फ्रांस में उबर प्लेटफॉर्म पर रोक लगाई गई है। सन 2025 से एक विज्ञापन अभियान शुरू किया गया था, जिस पर मुकदमा चलाया गया। टैक्सी पारिजियन की जगह उबर पारिजियन नाम का इस्तेमाल करने पर उद्योग को 50,000 यूरो का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसी के साथ पेश हैं कुछ दूसरी खबरें अदिति गानू अवतार के साथ।
2: भारत, रशिया, कतर और ओमान समेत दुनिया के कई वरिष्ठ नेता और उच्चाधिकारी ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामिने की मैयत में शामिल होने के लिए तेहरान पहुंचे हुए हैं। उनके शव को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। कई महीने पहले उनकी मृत्यु एक हमले में हुई थी। उन्हें देश के सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थल पर दफनाया जाएगा। रशिया यूक्रेन के बीच हमले थमने के आसार नहीं दिख रहे। रूसी ताकतों द्वारा केंद्रीय यूक्रेन पर किए गए सिलसिलेवार हमले में कई लोग घायल हुए हैं। 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। ये हमले आवासीय इमारतों को निशाना बनाकर किए गए। ज़ापोरिज़्या और नीप्रो शहरों पर भी मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए हैं। मौजूदा कमजोर युद्ध विराम के बावजूद इसराइल ने दावा किया है कि वो लेबनान में मौजूद हिजबुल्ला ठिकानों पर हमले

0: जारी रखेगा। इस बीच 14 पॉइंट्स वाले मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर विचार विमर्श चल रहा है। शांति वार्ता अली खामिनी के अंतिम संस्कार के बाद जारी रखी जाएंगी। मध्यस्थों के अनुसार अगली बातचीत दोहा में अमेरिकी और ईरानी प्रतिनिधियों के साथ चलेंगी। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के आधिकारिक दौरे पर जा रहे हैं। वे इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा करेंगे। इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में वे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मेलबर्न में वे 3rd इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट में शामिल होंगे, जबकि न्यूजीलैंड में द्विपक्षीय सहयोग पर बातचीत चलेगी।
1: और अब फुटबॉल की बात करते हैं। वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबलों में फुटबॉल फैंस को जबरदस्त मैच देखने को मिला। अर्जेंटीना ने काबो वेर्द के खिलाफ एक्स्ट्रा टाइम तक चले रोमांचक मुकाबले में 3-2 से जीत दर्ज करके अगले दौर में जगह बनाई, जबकि पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 और स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराया है। ऑस्ट्रेलिया और इजिप्ट के बीच का मुकाबला 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ, जहां पेनल्टी शूटआउट में इजिप्ट ने बाजी मार ली। कोलंबिया और गाना के बीच रोमांचक मुकाबला आज सुबह हुआ, जहां कोलंबिया ने 1-0 से जीत हासिल की है।
2: केप वर्दी वाली खेले जी जान से, पर डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना सामने था। हारकर सर ऊंचा करके जा रहे हैं केप वर्दी वाली। अर्जेंटीना का पहला गोल स्कोर करता है लियोनेल मेसी 29वें मिनट पर अफ्रीका के बहादुर ब्लैक शार्क्स हिम्मत जुटाते हुए इक्वलाइज करते हैं सेकंड हाफ में जुआते का गोल। फिर से अर्जेंटीना आगे, लिजांड्रो मार्टिनेज के गोल पर इंजुरी टाइम में लोपेस काबाल का ये लाजवाब गोल लाखों में एक। मैच पेनाल्टी सत्र की ओर जा रहा था, पर 111वें मिनट पर एक ओन गोल पर केप वर्दे का दिल टूटा। अर्जेंटीना 3 केप वर्दे 2। केप वर्दे की टीम की हिम्मत को सलाम। अर्जेंटीना जैसी महारथी को थरथरी दिलाना आसान नहीं है। अर्जेंटीना का अगला मैच इजिप्ट के खिलाफ होगा। मोहम्मद साला की टीम पेनाल्टी सत्र में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हरा पाई। 1-1 रहा ये मैच। 3rd मिनट में इजिप्ट के लिए आशूर गोल स्कोर करता है, फिर हानी के ऑन गोल पर मैच बराबर। पेनाल्टी सत्र में भाग्य ने इजिप्ट का साथ दिया, मोहम्मद सलाह का लाजवाब पेनाल्टी और इजिप्ट की टीम क्वालिफाई खेलेंगे किसके खिलाफ? डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना के खिलाफ।
1: और आज रात 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में कनाडा का सामना मोरक्को से होगा, जबकि दूसरे मुकाबले में पैराग्वे की टक्कर फ्रांस से होगी। दोनों ही मुकाबले क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। अरविंद बिसेसर,
2: इस वर्ल्ड कप में अभी केवल 16 टीमें बचेंगी और बेस्ट ऑफ 16 शुरू हो गए हैं। कनाडा का मुकाबला मोरक्को से आज रात। कनाडा की टीम जो अपने ग्रुप में पहले स्थान पर आई थी, पहली बार के लिए यहां तक आई है और आगे जाना चाहेगी। उनके सामने है द अटलास लायंस, मोरक्को की टीम जिसने यहां तक आने के लिए नेदरलैंड्स को हराया, ग्रुप स्टेज में ब्राजील को रोका है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं वर्ल्ड कप। पिछले वर्ल्ड कप में ये लोग सेमीफाइनल तक गए थे। सुबह 1 बजे पराग्वे और फ्रांस के बीच आमना सामना। आपको याद होगा 1998 में ये दोनों जब मिले थे तो मैच गर्म था, खासतौर पर यूजे लुई शिलावे और लोरेंट ब्लांक के बीच ये सब पल यादगार हैं। पराग्वे की टीम ने जर्मनी को एलिमिनेट किया है। सॉलिड है, अनुशासन है इनमें और ये लोग परेशान कर सकते हैं फेवरेट फ्रांस को। फ्रांस की टीम जिसने स्वीडन को रफा दफा किया, जी जी देशों की टीम में सब कुछ है, चाहे वो डिफेंस हो, मिडफील्ड और उनके 4 स्ट्राइकर कमाल कर रहे हैं।

और अब करते हैं मौसम की बात। आम हालत हमारे इलाके में हल्की हवा चल रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात और कल सुबह मौसम सुहाना रहेगा। कल दोपहर बाद उत्तर उत्तर पश्चिम और सेंट्रल प्लेटो के एक हिस्से पर बादल घिराएंगे और रह रहकर बारिश होगी। हवा आज रात दक्षिण पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। लगुनों के उस पार समुद्र चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिम में

0: मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लेटो में न्यूनतम तापमान 14 से 17, अधिकतम 21 से 24, साहली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 6:46 पर सूरज उगेगा और शाम को 5:42 पर सूरज ढल जाएगा। मौसम के बारे में ये अतिरिक्त जानकारी है। एक जोरदार एंटी साइक्लोन दक्षिण पश्चिम की तरफ से नज़दीकी बढ़ा रहा है और इसी वजह से हमारे इलाके में ज़ोरदार हवाएं चलेंगी और ठंड भी महसूस की जाएगी और तापमान करीब 3 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नीचा होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप तक ये बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभाग और हमारे तकनीकी साथी आवी की मदद मिली है। नमस्कार, आदाब, शोक समाचार कुछ देर में।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: पालमा रोड कथबोन में 32 साल के 32 years old श्री दिविज अबनाराम जो दिविज के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थात कल शाम साढ़े चार बजे इनके पिता बाडी अबनाराम के घर पालमारोद कथबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 4:30 PM। ओलीगुड नंबर एक वाकवा में 66 साल के श्री गुरुदत्त दूधी जो मुनुन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल एक बजे इनके भाई सुनील दूधी के घर ओलीगुड नंबर एक वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ख्वामा मेल वाकवा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। नोवेल फ्रांस विलेज हॉल के पास सवान रोड नोवेल फ्रांस में 44 साल की श्रीमती सोमा देवी बोला पैदाइशी नाम तिलक जो सोमा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 12 बजे के घर सवान रोड नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेन मानियों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट नून। तागोलेन लाफलोगा में 44 साल के श्री शक्ति मुदू जो शक्ति के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल पौने बारह बजे इनकी पत्नी काजल मुदू के घर तागोलेन लाफलोगा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खोबुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1:45 PM। कैमिलिया स्ट्रीट टेरासों पॉइंट साबले में 84 साल की श्रीमती परमा लागंदी पेम्बन पैदाशी नाम रामसामी जो विनोदा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के 11 बजे मोरा फ्यूनरल पिचित्रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भोईले वालिदे प्रेत्र की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। सिमेट्री रोड प्लान मान्यों में 36 साल के श्री वितीश बुदन जो निचले के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी सोमवार को साढ़े चार बजे इनकी माँ संध्या राबूजी के घर सिमेट्री रोड प्लान मान्यों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लान मान्यों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन मंडे एट 4:30 PM। एवेन्यू जीव नारायण पालमा कैथ्रोबोन में 59 साल के श्री सूर्यादत्त लखन जो अशोक अम्पोतिया के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल सुबह साढ़े नौ बजे इनकी पत्नी पूनम लखन के घर एवेन्यू जीव नारायण पालमा कैथ्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9:30 AM। जानकी रोड पुत्रदो विलाज में 78 साल की श्रीमती बृहस्पति राम जो सत्या के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 10 बजे इनकी बेटी सीता झुमक के घर जानकी रोड पुत्रदो विलाज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM।

0: बेंगली रोड बुसोंज में 71 साल की 71 years old श्रीमती बिरवंती मिटन, श्रीमती बिरवंती मिटन जो माला के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दो बजे इनके घर बेंगली रोड बुसोंज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मुहताज साहब या बॉम्बू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM। मुसलमान रामफल बुआमोंग प्लेंडी पपाई में 70 साल के 70 years old श्री इंदरदेव लक्ष्मण प्रसाद, श्री इंदरदेव लक्ष्मण प्रसाद की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 10 बजे इनके घर बुआमोंग प्लेंडी पपाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआमोंग प्लेंडी पपाई की शमशान भूमि दी जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। काली माई रोड खिविया जोंपो में 19 साल के 19 years old श्री अजागेन रंगास्वामी, श्री अजागेन रंगास्वामी जो आविसेन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी बाद में इनके पिता सिवन रंगास्वामी के घर काली माई रोड रिविया जोंपो से उठाई जाएगी। सिबालक लेन वाकवा में 70 साल के 70 years old श्री रोहित बहादुर जो राधेव मौशों के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थे कल सुबह साढ़े दस बजे इनकी पत्नी प्रेमिला बहादुर के घर सिबालक लेन वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ट्रामा मेर की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: RM3 Radio.
2: Nee, so.

94.6 98.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है ऑरेंज फ्री रेडियो मनोरंजन एमबीसी का म्यूजिकल चैनल। शाम के 6:34 और अभी से शाम के 7 तक प्रस्तुत है प्रोग्राम नई सोच और जय प्रताप सिंह मिक्स भाव गीतों पर आधारित प्रोग्राम है। ये दुनिया बहुत कठोर है और यहाँ पर रहने वाले लोग बहुत ही कठोर, जिससे आप प्यार की उम्मीद करते हैं वही धोखा दे जाते हैं। यहाँ पर कोई अपना नहीं, हर कोई पराया है। आप अकेले आए हैं और यहाँ से आप अकेले ही जाएंगे। लोगों से कोई उम्मीद ना रखें, क्योंकि उम्मीद रखते हैं तो हम धोखा खा जाते हैं।

इंसान गोरा हो या काला हो क्या फर्क पड़ता है, इंसान महान बनता है अपने चरित्र अपने स्वभाव से। जी हाँ, इंसान चाहे गोरा हो या काला हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसका स्वभाव अच्छा हो चरित्र अच्छा हो तो वह एक अच्छा इंसान कहलाता है।

जी हाँ, ये दुनिया है दिल वालों की, और दिल वाले जो लोग होते हैं ना, तो उन लोगों की बहुत ज़रूरत है आज की दुनिया में, ताकि वो एक दूसरे की सहायता कर सके। और कहते हैं ये पैसा इंसान को नचाता है, हंसाता है, रुलाता है। पैसा ना हो तो कुछ भी नहीं, पैसा है तो जैसे भगवान है। जेब में पैसा होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी जा रहे हैं तो पैसे की ज़रूरत तो है। पैसे को हम लक्ष्मी माँ कहते हैं ना। कुछ लोग कहते हैं कि पैसा लक्ष्मी माँ है, तो कुछ लोग कहते हैं कि पैसा हाथ का मैल है। पर हो न हो, ये पैसा तो चाहिए, ये पैसा सबको नचाता है।

कभी-कभी होता है कि परिस्थितियां इतनी कठिन होती हैं, हालात इतने जटिल होते हैं कि इंसान हिम्मत हार देता है, घबरा जाता है, निराश हो जाता है, रोने लगता है, विलाप करने लगता है। पर रोने से क्या होगा दोस्तों, रोने से कुछ भी नहीं होता। कमज़ोर होते हैं वो लोग जो बात बात पर रोते हैं। आप तो बहादुर है, बलशाली है, सो कोई भी अगर मुसीबत आए तो उसका डट कर सामना कीजिए। जीवन से कभी मत हारिए, क्योंकि जीवन में हार जीत होती रहती है, पर आपको हर हाल में जीतना है। ऑलराइट, एक बार अगर हार गए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम यू हैव टू विन। जीवन से न हार हिम्मत वाली, किशोर कुमार की आवाज़।

लेडीज एंड जेंटलमैन सांस और आवाज के हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों देवी और सज्जनों, इसी भाव गीत के साथ ही भाव गीतों पर आधारित प्रोग्राम नई सोच यहीं पर समाप्त होता है। सात बच्चों का अगला प्रोग्राम दिलों की आवाज डिस्को म्यूजिक पर होगा, डांस एंड म्यूजिक ओनली। 7 बजे से रात के 9 बजे तक आप फोन कर सकते हैं 4028070 और गीत मांग सकते हैं। शुड बी डिस्को म्यूजिक ऑन। ऑलराइट, आज रात सैटरडे है सो डिस्को एंड डांसिंग म्यूजिक 7 से 9 बजे तक दिलों की आवाज़ ऑन ऑरेंज रेडियो मनोरंजन। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।

0: लेडीज एंड जेंटलमैन गाइस एंड गर्ल्स चेक आउट योर टाइम इस समय मॉरिशस में रात के ठीक 7 बजे है
1: सेंटर 94 नॉर्थ साउथ 95.6 ईस्ट वेस्ट 98.2 यू आर लिसनिंग योर RM3 रेडियो की आवाज

Yes, ladies and gentlemen, guys and girls, dear audience, स्वीकार कीजिए. अजय प्रताप सिंह का क्या भरा नमस्कार. Very good evening to all of you. दिलों की आवाज अभी से लेकर रात के 9 बजे तक हम आज चलाएंगे डिस्को म्यूजिक, डांसिंग म्यूजिक. जी हाँ, ऑल डांसिंग सॉन्ग्स और धमाकेदार म्यूजिक चलेगा अभी से लेकर रात के 9 बजे तक. Your dedication on 4028070. It should be disco songs, all right? Disco Bollywood songs. It could be songs from album as well of Bollywood. और फिर आप हमें मनोरंजन और एमपी रेडियो मनोरंजन के टिकटॉक पेज पर देख रहे हैं. वहाँ भी आप अपने डेडिकेशन भेज सकते हैं. बट रिमेंबर, कीप इन माइंड, इट शुड बी डिस्को म्यूजिक. सो आज की रात हम नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे अभी से लेकर रात के 9 बजे तक. 2 hours show, evening, must evening show, दिलों की आवाज. ये पहला गाना नाच, नाच मेरी जा, नाच नाच, सुखविंदर सिंह की आवाज में गीत. It's taken from the movie मुझे मेरी बीवी से बचाओ. This गाना for all the listeners of Radio Manoranjan and all the viewers of TikTok page of RM Free. नाच मेरी जा, नाच नाच.

नाच मेरी जान नाच ना जिया नाचे गाइए झूमिए सभी गमों को भूलकर मस्ती में डूब जाइए। अगला गाना मैं लड़की अकेली अकेली अकेली पीछे परे लड़के सौ सौ डेली। फिल्म का नाम जानम समझा करो। एंड दिस गाना यस हम चलाएंगे रड 29 के नाम। यस इंदिरा जी गीत आपके नाम भी यही गाना जाएगा। राम के नाम अमृता अमीरू रूपचंद मिर्दा फिर यही गीत वीरेन कुमारी वंदना गुमानी माधवी रमी पराग फ्रॉम इटली सुजाना कांदाई सुमन बाल्दा चीनू कविता जी यह गीत आपके नाम और आपकी बेटी पूजा रिया बेटा आयुष के नाम भी हम चलाएंगे। इंदिरा इंदिरानी अमुगम निवेन वेंकट स्वामी ठाकुर सिंह गुरुदत्त और एंजेल फिर हमारा साथ दे रहे हैं कविता एंड दीक्षु एज वेल। ऑलराइट ये गाना नाजम के नाम और ब्रह्मस्थान से समवन। ऑलराइट ठीक है। सो जितने भी लोग हमें टिकटॉक पर देख रहे हैं और रेडियो मनोरंजन पर सुन रहे हैं उनके नाम भी गीत सुरेखा उचाई भी है गीत आपके नाम। विशाल मंडप इटली से है उनकी पत्नी उनकी बेटी और मॉरिशस में उनकी माँ है उनकी बहन है उन सब मंडप परिवार के नाम। बाबू राली आसा हेलो। इब्राहिम साहब है पोर्ट्रेट से बहुत बहुत प्यार आपको ढेर सारा आशीर्वाद हमारा साथ दे रहे हैं गीतों को एंजॉय कर रहे हैं। एंड ब्राम्बोलिस्तान ये कहाँ पर है? ओके यस सो समवन लिसनिंग टू मी फ्रॉम बम्बोलिस्तान। ऑलराइट गाना आपके नाम। मीला जी ये गीत आपके नाम भी हम करते हैं और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए रेडियो मनोरंजन पर ये गाना आपके नाम इट्स टेकन फ्रॉम द मूवी जानम समझा करो। आज की रात हम फर्स्ट म्यूजिक चला रही है डिस्को म्यूजिक पर ढली गाने। ओके

0: हमराज इस गाना फॉर क्रीटा महादेव फ्रॉम बॉयफ्रेंड अस अगेन बॉबी रंगनाथन रानी जयसूरी की है गीत आपके नाम हाय नीन यही गाना हम चलाएंगे नगेंद्र महतो के नाम ममता मंदु सत्यकाम शोभा गंगाराम जी मुश्ताक खान यह गीत आपके नाम भी रूमिला मूलचंद अमर तमंग यह गीत आपके नाम इंदिरा यस यह गीत आपके भतीजे के जन्मदिन के अवसर पर उनका नाम है विमाल सागर हैप्पी बर्थडे विमाल सागर और बेशक प्रिंसेस साधना यह गीत आपके नाम ललित मोहन भट्ट यह गीत आपके नाम भी हीर दिस गाना फॉर यू एंड फॉर योर हबी आपके भाई भाभी और सब पांचों परिवार के नाम और राइट एंड ऑल्सो फॉर अजय और यहाँ पर एक फोन कॉल हम लेते हैं यस ऑलराइट हेलो
1: हेलो नमस्ते
0: नमस्ते जी आपका शुभ नाम
1: मैं सीता हूँ पोते लास्कर से
0: सीता जी आपका स्वागत है बोलिए
1: हाँ हमार बहन के मन बात सुनने के चांदनी का चांद हो गया
0: हमने आप हमने आपको बताया प्रोग्राम की शुरुआत में आज सब डिस्को गाने चल रहे हैं ऑलराइट
1: आप गाने
0: आपने
1: एक गाने डाल देना
0: हाँ डिस्को गाना चलेगा आपकी बहन का नाम क्या है
1: हमार बहन जीवंती खातिर
0: हाँ
1: ओकर दोस्त बा ओकर सहेली बा एथी अनीता
0: हाँ
1: एगो डाल दिया कोई गीत सुन के
0: तब ओके उनका जन्मदिन है आज
1: जन्मदिन बात
0: और
1: जन्मदिन
0: फिर ललिन
1: नहीं
0: मिला कोई बात नहीं हम चला
1: देंगे
0: ओके ओके सो थैंक यू और अगला गाना हम आपके नाम करेंगे ऑलराइट
1: सब सुनने वालों के लिए
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपने फोन किया थैंक्स फॉर कॉलिंग यस एंड जी हाँ हमने आपसे कहा अभी करें ध्यान से सुनिए आज का जो प्रोग्राम है वो सब में डिस्को म्यूजिक होगा जिल बी नो कूल नो रोमांटिक डिस्को एंड डिस्को राइट बर्दाश्त नहीं कर सकता जी हाँ यह प्यारा सा गाना ललित मोहन भट्ट के नाम और अमृत जी के नाम भी एवो यह गीत आपके नाम भी हम चलाएंगे एंड यस रानी जयसूरी दैट विल बी हमराज फॉर यू यस चल रहा है और यही गाना हम चलाएंगे जॉन होलों के नाम जॉन होलों के और किसी परिवार वाले के लिए गास्पर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुफियान हेलो दिस गाना फॉर योर मम्मी पापा एंड यस एंड योर होल फैमिली हाय मनीषा ये गाना आपके नाम भी जाएगा रानी की ओर से गीत उनकी बेटी परी फिर उनके पूरे परिवार के लिए यह गीत रीता जी के नाम रहते मोहतबा उनके दो बेटे बहू सभी बच्चों के नाम भी हम चलाएंगे और हाँ एक लड़का है जो अभी उसने लिखा है जॉफों सीते उसने अपना नाम डाला है ऑलराइट सो सब जॉफों सीते के नाम जो मैं प्यार से सुन रही है दर्द गाना वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकता अनिष्ठा दिस गाना फॉर यू एज वेल

0: बर्दाश्त नहीं कर सकता जी हाँ बहुत सारे लोग हमारे साथ झूम रहे नाच रहे अगला गाना फ्रॉम द ओरी जोरी नंबर वन सुना तिलक ये गीत आपके नाम एंड फॉर योर टीचिंग टीम ऑलराइट भाई श्रवण भाभी कृति अभिनव किया नाव्या तिलक फैमिली यस यही गीत अभिषय अवोया के नाम केलान हेलो शाहिद इकबाल खान ये गीत आपके नाम फाउजिया ये गीत आपके नाम भी हम चलाएंगे हाय शिवा आरती राज किस्तमा यस आरती जानू एंड गीत आपके नाम भी एंड चंद्रा जी हमारा साथ दे रहे हैं अभिषय है संदीप मगर है राजन कुजन अनिल और राइट दिस गाना फॉर यू और अभी देखते हैं अभी लाइन पे कौन है कौन सा दोस्त हमारा इंतजार कर रहे हैं Yes, all right, Susan, your dedication on TikTok page and 4028070. Hello.
1: Hello, namaste, Pratap ji.
0: Namaste ji, aapka naam?
1: Anita, Pikonflaxer.
0: Pikonflaxer, kaisi Anita ji? Sab theek thaak?
1: Theek hai, aap?
0: Ekdam mast. Aur agla gana hoga, mast munda.
1: Program to bahut mast chal rahi hai.
0: Saturday ko mast chalayenge na, kyunki aaj Saturday hai.
1: सतेदी है ना
0: तो नाचेंगे गाएंगे
1: क्यों नहीं
0: हाँ जी बोलिए
1: नाचेंगे गाएंगे
0: साथ साथ
1: ऐश करेंगे सुन सुना
0: हाँ
1: तो एक गाना चला दीजिएगा हमारे लिए फिल्म है मुकद्दर का सिकंदर
0: कौन सा गाना

0: bu mukadder kasikender.
1: It should be disco music.
0: मैंने नहीं समझी.
1: आज का जो हमारा थीम है सब में डिस्को फास्ट टैपिंग म्यूजिक होना चाहिए. That's not disco. Disco music.
0: Disco.
1: Disco. बोलिए disco वाला गाना. I am a disco dancer.
0: Okay.
1: आपने हमारी मुंह की बात छीन ली. क्या बात है. हमने आपके दिल की बात छीन ली.
0: आपके लिए, रेडियो मंदिर रंजन के सभी टीम के लिए, हमारे लिए, हमारी सभी फैमिली के लिए.
1: जरूर चलाएंगे, सुनते रहिए. ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, बाय बाय. चलिए एक साथ सुनते हैं. यस, अभी गाना हमने यहाँ पर डाल दिया है. सुनेंगे हम सुनिधि चौहान. मस्त कुड़ी मस्त मुंडा फ्रॉम द मूवी जोरी नंबर वन. और यही गाना हम चलाएंगे दिनेश मातू के नाम, आरव रसिक, लवली दीप ये गाना आपके नाम भी, और राविश मंडू ये गीत आपके नाम, अब सब मंडू परिवार के लिए. संजय बिहारी हमारा साथ दे रहे, उनकी पत्नी सुरेखा एंड ऑल बिहारी परिवार.

0: मस्त कुरियर मस्त मुंडा जब एक साथ मिलते हैं तो धमाका ही धमाका होता है, धमाल ही धमाल होता है। और हम जानते हैं कि आपको ये गाने पसंद है, सैटरडे की शाम है, रंगीन रात है और आप में से बहुत से लोग जश्न से जश्न के मूड में हैं, जाम से जाम टकराए जा रहे हैं, क्या बात है। हरिलाल दीनू नेक्स्ट गाना फॉर यू, जब दिल मिले जब दिल मिले। यस, यादव फिल्म का धमाकेदार गाना फॉर आवर दोस्त हरिलाल दीनू, फॉर हिज वाइफ, उनके बेटे बहू सभी बच्चों के नाम और सब दीनू परिवार के नाम। हाय निशा, गाना आपके नाम, आमी गीत आपके नाम भी, ये गाना सासी बनमाली जी के नाम, उनके पूरे परिवार की। ये लॉन्ग चिबुक राजा स्टीव प्रवीण भैरव जिमी दुखिया एंड श्याम मंगल, दैट गाना फॉर यू। डू लव फैमिली ऑफ लालमाची, अमृता डुंगुर लालमाची से है ढेर सारा प्यार, आपके बेटे अभिषेक और सब डुंगुर परिवार के नाम। रेहाना हासिन अली फ्रॉम फेनिक्स, आपकी बहनें हैं बैन सायदा और आपकी नीस जलीला और सब हासिन अली परिवार के नाम। जयराज की ओर से गीत जाएगा रानी के नाम, संगीता मीरा नव लाहौजा, उनके भाई दान आजी, उनकी मामा जो कासर रहती है, वंशिका रक्षिता, उनकी दो बहनें हेमा और शांति, सुमीरन परिवार एंड मोहन परिवार, जय के सब बाबू परिवार के नाम जाएगा। और यही गीत एंजल के नाम, हाय एंजल, हेलो सुधा, नमस्ते गुरु जानी को, आप है पेरिस से, पेरिस फ्रांस से मैं सुन रही है, प्रेमिला फ्रांस से है और बेशक ये गीत आपके नाम जाएगा। सचिता बिहारी, दिस गाना फॉर यू। और जितने भी लोग अभी भी आपने रेडियो ट्यून किया है हमें सुन रहे हैं, सो दिस इज आरएम फ्री रेडियो मनोरंजन एमबीसी का म्यूजिकल एंटरटेनिंग चैनल। प्रिंसेस रीना, यह गीत आपके नाम भी, जी अनत ये गाना आपके नाम भी। फिया भी हमारा साथ दे रही है। फातिमा फ्रॉम न्यू ग्रोव, रोजिदा फ्रॉम हाईलैंड्स, मेहजबीन फ्रॉम पोर्टवेज, हाई मेहजबीन, मेजबीन जो है बहुत प्यार से हमें सुन रही है और देख रही है, क्या बात है मेजबीन। दिस गाना फॉर यू, जब दिल मिले जब दिल मिले। चलिए दिल से दिल मिलाते हैं।
1: जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले, तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले, जब दिल मिले तब गुल खिले, जब गुल खिले तब दिल मिले, मिले मिले मिले मिले

कोई तौबा करे कोई सजदा करे क्या गाना है एंड नाउ इट्स टाइम फॉर प्रेम मैं प्रेम की दीवानी हूँ संजना आई लव यू जी हाँ बहुत ही प्यारा सा गाना और ये गाना हम चलाएंगे विवेक की ओर से उनके सभी दोस्तों के नाम हाय विवेक नटराज रामकोटन फ्रॉम नोबल फ्रांस उनके मम्मी पापा भाई बहन और सभी दोस्तों के नाम एंड सुफियान लिसनिंग टू मी ऑफ ग्रेड 10 from SSS Saint-Aubin. All right, Sufyan, this gana for you and for all your friends. Phir yehi gana hum chalayenge Vimla ke naam aur Vandana Gumani. Hello, Vandana Gumani, this gana for you. Kajer bhai humare saath hai. Pampuna, aap bhi humare saath de rahe hai. Thank you. Aur Veena Kubasamy from Mayberg. Aapke pure parivar ke naam. एंड सुलमान दुखी आप मेबर्ग से हैं थैंक यू जी हमारा साथ देने के लिए मिस दीना दीना फ्रॉम शुमेघन ऑलराइट रेहान ये गाना आपके नाम प्रेमिला दनाओ ये गीत आपके नाम भी सोनम रामचरण जी हमारा साथ दे रही है थैंक यू सोनम फॉर वाचिंग अस एंड लिसनिंग अस और डेजी पर्सन भी हमारा साथ दे रही है दिस गाना फॉर यू और ये गाना खासकर हम चलाएंगे अश्विन बच्चन के नाम वीएचपीएस के रहने वाले हैं फॉल बच्चन परिवार उदय धनी राम वहीं से हैं प्रीतम राज जी मिला गीत आपके नाम भी यही गाना हम चलाएंगे किशन गुरी आपके नाम एंजल्स मिल यह गीत आपके नाम और यह गीत मिस सौजू के नाम भी हम चलाएंगे और वीरापेन के नाम अपाया के नाम भी गुरु जी गंगू मिस्टर एडू मिस्टर रोसाई एंड ऑल एंड द होल फैमिली ऑलराइट और जे फैमिली के सभी दोस्तों के नाम भी शर्मिला जी ये गीत आपके नाम स्वीट अदाला ये गीत आपके नाम भी जाएगा तो एक साथ सुनते हैं ये प्यारा सा गाना फ्रॉम द मूवी मैं प्रेम की दीवानी हूँ

ये गाना था उन सभी लड़कियों के नाम जिनका नाम है संजना, क्या बात है। नेक्स्ट गाना कहो ना प्यार है। यस यश फ्रॉम इंग्लैंड हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू जी। दिस गाना फॉर यू, बहुत बहुत प्यार के साथ। फिर यही गाना यस लिवरपूल इंग्लैंड से यश साहब है ये गीत, उनके नाम जोड़ी गीत आपके नाम भी। एंड सिगोहुर लायन ये गीत आपके नाम भी। देव रानी सोनू दिस गाना फॉर यू। सुरम रामचंद्र जी अपने भैया के यहाँ पार्टी चल रहे है, बेबीज प्लेस रोज बेल उनकी भाभी उषा और हस्बैंड राज के साथ। ओके एंजॉय। माला जी दिस गाना फॉर यू। माला झरी यह गीत आपके नाम चलेंगे। संजय बुधवा ये गाना फॉर यू। फिर पंपुना अजोदा ये गीत आपके हबी सतीश अजोदा एंड ऑल फैमिली। ऑलराइट ये गीत हम चलाएंगे। पीरतम जी ये गीत आपके नाम भी। सूफियान दिस गाना फॉर यू। लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ सूफियान। सूफियान की ओर से उसके सभी गर्लफ्रेंड्स के नाम। हेलो बटरफ्लाई ओके दिस गाना फॉर यू। ऑल्सो बीबी हमारा साथ दे रही है। हेलो सीमा धीमा सरी हाय सीताराम यस सुमी भी हमारा साथ दे रही हैं। और जितने भी प्यारे प्यारे लोग हमें देख रहे हैं टिकटॉक पेज पर और जितने प्यारे प्यारे लोग हमें रेडियो पर सुन रही है दिस गाना फॉर यू। कहो ना प्यार है। प्रकाशा फ्रॉम सुरीनाम ये गाना आपके नाम भी। कविश भूपति गीत आपके नाम। हाशमी फैकन और कविराज बिचुक ये गाना आपकी पत्नी आपके बच्चे और पूरे परिवार के नाम जो हमें बहुत प्यार से सुन रहे हैं। थैंक यू। हाय फिया हाउ डू यू डू होप यू आर डूइंग वेल। हम तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं और यहाँ रेडियो मनोरंजन प्रसाद दे रहे हैं। मणिप्रिया दिस गाना स्पेशली फॉर यू। चलिए एक साथ सुनते हैं कहो ना प्यार है।

हमें भी आप लोगों से बहुत प्यार है आई लव यू ऑल इसीलिए तो हम चले आए हैं आप लोगों का साथ देने के लिए और एम फ्री रेडियो मनोरंजन सुबह को हमारी आपकी मुलाकात हुई थी 6 बजे से 9 बजे तक और अभी रात को हम आए हैं आपसे मिलने के लिए ये क्या बात है ये प्यार नहीं तो क्या है नेक्स्ट गाना आंखें मिलाने वाले नाज़िया हसन की आवाज़ में ज़ुहैब हुसैन की आवाज़ भी होगी धनुष बाबना दिस गाना फॉर यू हेलो फिया ये गीत आपके नाम अमरी ये गीत आपके नाम हम चलाएंगे शैलेंद्र भी हमारे साथ दे रहे हैं हेलो शैलेंद्र बेला मांबा ये गीत आपके नाम राजू और राजकुमार सिंह रामपरगास ये गीत आपके नाम दिनेश मातो एंड संजू राय ये गीत आपके नाम हाय सीमा संगीता नाथ यह गीत आपके नाम भी और गणेश वरुण भी हमारे साथ झूम रहे गा रहे नाच रहे ऐसे ही नाचते गाते रहिए रात के 9 बजे तक फरजाना दिस गाना फॉर यू एंड बंटू भी हमारा साथ रहे हेलो बंटू जी ये गाना हम चलाएंगे सेंट थॉमस एस कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स रेक्टर टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ के नाम मिस्टर राव जो रिटायर हुआ है सैटरडे को सो मिस्टर राव हैप्पी रिटायरमेंट लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस योर वे हाय जगदीश हेलो वेद यह गीत आपके नाम राजेश साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए आशीष महाजौर इंग्लैंड में है हाय आशीष महाजौर दिस गाना फॉर यू जय श्री ओंगनू भी हमारा साथ दे रहे लक्ष्य गंगाराम फ्रॉम रॉसबेल हाय लक्ष्य हाउ आर यू होप यू आर डूइंग वेल और जितने भी स्टूडेंट्स इंजीनियर एग्जाम्स दे रहे हैं खासकर ग्रेड 9 ग्रेड 11 ग्रेड 13 के स्टूडेंट्स मॉक एग्जाम्स में भाग लेंगे सो ऑल द बेस्ट एंड गुड लक टू यू गाइस चलिए आपके नाम ये गाना आंखें मिलाने वाले और आंखें मिलाने वाले क्या करते हैं ठीक सुनते हैं

0: That was Nazia Hassan, जी हाँ आंखें मिलाने वाली. Next गाना जी हाँ कमबख्त इश्क बहुत ही प्यारा सा गीत है ये from the movie प्यार तूने क्या किया और इसमें ये रात के 8:05 हो रहे हैं.
1: Continuous music. RM3.
2: दिलों की आवाज की आवाज.
0: बेशक दिलों की आवाज और जय प्रताप सिंह के साथ रात के 9 बजे तक घड़ी में ऐसे चलिए रात के 8:05 हो रही है. एंड टुनाइट इट्स सैटरडे 4 जुलाई 2026. जी हाँ जुलाई का महीना भी आ गया. और यहाँ पर हम नाच रहे हैं गा रहे झूम रहे हैं आप लोगों के साथ. क्या बात है, ऐसे ही हैप्पी हैप्पी रहना चाहिए क्योंकि जिंदगी में जब हैप्पी हैप्पी रहते तो सब कुछ हैप्पी हैप्पी होता है. सो डोंट बी सैड, डोंट लूज होप इन लाइफ, ऑलवेज कीप बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड एंजॉय लाइफ. समीर साहब है, हेलो समीर जी कैसे हैं आप. नेक्स्ट गाना फॉर क्रिस्टी, ये गीत आपके नाम एंड ये गीत क्रिस्टी के नाम हम चलाएंगे. लक्ष्मण मौर्या, यस आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, क्या बात है. यादव शक्ति, हेलो आश. रवि इटली से है, इस प्रोग्राम को बेहद एंजॉय कर रहे हैं, क्या बात है. गुरु जानी कोको, क्या नाम है, गुरु जानी और कोको तीनों साथ. एंड क्रिस्टी बोलती है कि क्या प्रोग्राम है, एकदम मस्त. चलिए सुनते हैं गाना प्यार तूने क्या किया. I've got 4 न्यू मैसेजेस. ऑलराइट चलिए सुनते हैं गाना. कमबख्त इश्क है जो ये गाना हम चलाएंगे ईश्वर सुबन के नाम, उनके पत्नी उनके बेटी बहू बेटी दामाद जो विदेश में है. युधिष शिवदारी गीत आपके नाम, आपके दोस्तों के नाम. प्रताप की ओर से उनके बेस्ट फ्रेंड हिरीश नारायण के नाम. देविका और चंपा रामगतिया मोहताबा से है, ये गीत आपके नाम. और सब मंडप फैमिली और मोहताबा एन ए फैमिली और मोहताबा, ये गीत आप सभी के नाम.

कमबख्त इस जन्नत दिखाता है कभी रुलाता है कभी हंसाता है इश्क कभी मीठा होता है कभी खट्टा होता है ये इश्क को जानना बहुत मुश्किल है यस Na na na na na na na na na na na Mile to jil yahan diyar ho gaya Jawani jaane man Haseen dil ruba jihan is geet ki ye request Aya hai hamari paas So hum zarur chalayenge Ye gaana khasam khas Beena Padukarian for the whole team Ashwin Nana geet aapke naam Lal Babu Preet Beena Padu Robert Yosen ke उनकी गर्लफ्रेंड माया के नाम एंड सुनीता गणेश के नाम यह गीत जाएगा और यही गीत हम चलाएंगे क्रिस्टी के नाम हाय क्रिस्टी और यस सो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं रोबर्ट कह रहे हैं कि वो अभी हल्दी से आ रहे हैं उन्होंने वहाँ पर क्या भोजन किया सेत कागज छिपुरी क्या बात है सो स्पेशली गाना क्रिस्टी के नाम जवानी जानी मन और ये गीत जितने भी लोगों को पसंद है गीत उनके नाम भी

निशा आहा हा आहा हा निशा आहा हा। जी हाँ, बहुत ही प्यारा गीत आ रहा है और बिग शॉट रिमिक्सेस एल्बम से लिया गया, निशा आहा हा आहा हा। एंजल की ओर से नितिन के नाम ये गीत जाएगा बहुत बहुत प्यार के साथ। एंजल इज सो हैप्पी, क्या बात है। एंड गीत सनम तेरी कसम फिल्म का गाना, बट इन ए रिमिक्स वर्जन टुनाइट। यही गाना हम चुनाएंगे रवि बंगारू के नाम। हाय रवि बंगारू, कैसे हो दोस्त? आई नो यू एंजॉइंग द प्रोग्राम, यू एंजॉय द सॉन्ग्स वी आर प्लेइंग फॉर यू टुनाइट। और आज सभी लोग डिस्को के मूड में हैं, क्या बात है, क्या बात। इस ठंड को भगाने के लिए हम लाए हैं डिस्को ही पर आधारित कुछ गाने। चलिए सुनते हैं रवीन बंगारू, एंजल और नितिन जी के नाम प्यारा सा गाना, निशा आहा हा आहा। श्वेता कालू, ये गाना आपके नाम भी।

निशा आहा हा। अगला गीत दिल लेना अवसार फिल्म का गाना ज्योति गुली। यह गीत आपकी मामी विद्या के नाम हैप्पी बर्थडे मामी फ्रॉम अनिशा मेरीना नताशा अमर अंतिश अविनाश निर्वन और जो भी। यही गाना हम चलाएंगे करुणा के नाम। यस करुणा लीला रघुबर।

0: आपके नाम भी चांदनी सिंह सिपासाद और ये गाना हम चला रहे दीपेश डनवा शीला सिबोरत अनिता तापसी जयराज अस्कन और बेशक नमस्ते ज्योति गुली विशिंग हैप्पी बर्थडे टू ब्रो साहिल फ्रॉम वाइफ माधवी ब्रो आशीष वशिष अनुप प्रिया एंड दीक्ष एंड प्रिस्का ऑल राइट सागी भी हमारा साथ दे रही है और यूके से ब्रिंदा है हाय ब्रिंदा हेलो हाउ आर यू स्वीट एंड लवली ब्रिंदा डॉक्टर अंजू हमारा साथ दे रही है हाय डॉक्टर ये गीत आपके नाम भी बहुत बहुत प्यार के साथ भाई जीवन हमारा साथ दे रहे हैं हेलो जी एंड विदाउट फॉरगेटिंग माधव उनके चाचू साइलेन उनके चाचा जान माधव अपने चाचा जान से बहुत प्यार करते हैं दनिशा ऑल नेफ्यूज एंड नीसेस फ्रॉम ज्योति गुली ऑलराइट अभिसान यह गीत आपके नाम भी दिल लेना अवसार फिल्म का गाना
1: We are about to hear a song that has been heard before. This is different, you know, because it is funk, funk, funk, defunk, defunk, defunk.

एक बार आजा आजा आजा आजा आजा जब कोई प्यार से बुलाए तो जाना चाहिए ना कि रुकना। इस समय रात के पौने 9 बज रहे हैं। दिलों की आवाज प्रोग्राम रात के 9 बजे तक ऑन एम फ्री रेडियो मनोरंजन और टिकटॉक पे जब भी हमने वहां पर समाप्त किया हमारा प्रसारण वहां पर प्रसारण यहां चल रहे रेडियो मनोरंजन पर रात के 9 बजे तक। अगला गाना घिस घिस घिस वेलकम टू द जंगल फिल्म का गाना। जी हाँ, कॉमेडी से भरपूर मूवी है ये घिस घिस घिस, बहुत ही प्यारा सा गाना। एंड इन दिस मूवी यू कैन से परेश रावल, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी एंड अक्षय कुमार द ग्रेट कॉमेडियन। चलिए गीत घिस घिस घिस हम चला रहे हैं सोनिया के नाम, सोनिया जो रोजिल से हमें सुन रही है। हाय सोनिया, ये गीत आपके नाम, आपकी बहन रेखा के नाम भी और नोबेल फ्रांस के सब लिखराज परिवार के नाम, ज्योति उनके हस्बैंड, बेटा साहिल, बेटी शैली, उनकी बहन, उनकी माताजी और सब लिखराज फैमिली के नाम। ये गाना निशान सिंह चुबा के नाम लिस्काली से, उनकी पत्नी, बेटे, बेटी दामाद और सब चुबा परिवार के नाम। यही गाना खासम खास हम चाहेंगे राधा की ओर से, उनके बेटे प्रशांत, बहू बेटी शिल्पा, दामाद और सब शिवालक परिवार के नाम। घिस घिस घिस

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: इस समय बहुत से लोग लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं तो कुछ लोग लॉन्ग ड्राइव से वापस घर लौट रहे हैं. सो ऑल द ड्राइवर दोस्त जो हमें सुन रहे हैं, ड्राइव स्लोली एंड केयरफुली और कद्दलाहुत फॉलो करें ज़रूर. हमें यहाँ पर आप लोगों का साथ देने के लिए जितने भी लोग इस समय गाड़ी में बैठे आराम फरमा रहे हैं और ड्राइवर भैया ड्राइव कर रहे हैं. गीत अगला गीत आपके नाम गिला गिला गिला देव गिला गिला मीना मीना मीना कोई मिला मिला कौन मिला कौन नहीं मिला ये तो आप ही बताएंगे. फिल्म का नाम है एतराज एंड ऑल दोज पीपल वर्किंग टुनाइट. जो लोग नाइट शिफ्ट में हैं बॉम्को आश कहते हैं और जो लोग घर पे इस समय भोजन करें तो बोना पिची सुरुचि शुभहार हैव अ वंडरफुल डिनर. और जो लोग डिनर करने के बाद जो है इधर उधर टहल रहे हैं हमें सुन रहे हैं और तो आपको बता दें कि डिनर करने के बाद आधा घंटा तक तो कुछ टहलना चाहिए, तुरंत सोना मना है. जब खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाए तब सोने जाइएगा. और कुछ लोग कह रहे हैं ये तो मेरा दोस्त प्रताप है, कैसे हो प्रताप? अरे प्रताप तो बिल्कुल ठीक है और आप लोगों के साथ है. रात के 9 बजे और 10 मिनट है प्रोग्राम समाप्त करने में. गेला गेला गेला देर गेला गेला मिला मिला मिला कोई मिला मिला

Ladies and gentlemen, guys and girls, oh my darling, I love you. जी हाँ, इसी प्यारे संगीत के साथ ही दिलों की आवाज़ प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होने जा रहा है। शाम के 5 बजे से अभी तक आप लोगों ने हमारा साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर SMS एंड फोन कॉल्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी ऑन TikTok लाइव रेडियो मनोरंजन। 9 बजे आप सुनेंगे भोजपुरी तेरे का प्रोग्राम। हमारी आपकी मुलाकात होगी कल संडे की शाम को 3-4 बजे तक और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर। प्रोग्रामों का ऐसा भी होता है। इट वॉज वेरी नाइस टू बी विद यू, आप लोगों ने बड़ा साथ दिया, थैंक यू सो मच। और जी प्रताप सिंह साइनिंग ऑफ, हमारी ओर से आप सभी को ये सारा प्यार एंड नमस्कार, आदाब, लव यू ऑल, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, सी यू टुमारो आफ्टरनून 3 PM ऑन रेडियो मनोरंजन। बाय बाय, टेक केयर। और जी प्रताप सिंह की ओर से सभी को नमस्कार।

0: 19 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस,
0: रेडियो मॉरिशस।
2: भोजपुरी तड़का
3: आज की रात रत्ना के संगे एमबीसी रेडियो पर।
2: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का कार्यक्रम सुने होला हमारे सब कोई श्रोता लोगन के स्वागत करत है रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर। आप सब कोई के स्वागत करत है रत्ना और चला आज के कार्यक्रम के संगे जितना कोई हमने के संगे जुड़ गल हवन आशा है ये करब जा कि आप सब कोई मजे में हवा और शाम दी के रात ठंडा तनी जस्ती बा तो चला गर्मा गर्म भोजपुरी गीत संगे आज के कार्यक्रम के बढ़िया बढ़िया गीत के मजा लूटब जा।

अभी से लेके 11 बजे ले हम रहब आप सब कोई संगे तो जहाँ कहूँ से भी साथ देवत हवा कोनो खास मौका बा कोई के जन्मदिन बा या शादी होवता तो जरूर अपन पसंदीदा परिवार खातिन दोस्त खातिन अपन संगतिया खातिन गीत तुम मांगे सकब 4028085 4028085 पर और ये मेसाज विदा करे खोजा था 5251700 नहीं भूलाया भोजपुरी तड़का कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस और ये रेडियो मनोरंजन पर तो चला आज के कार्यक्रम के शुरुआत करब जा आज के है पहला गीत संगे ललिता पुनीत के आवाज में रखल है आज के गीत इंदिरा सन से ढोलक मंगाईला तो चला एगो बढ़िया शुरुआत आज के कार्यक्रम के

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का तड़का
2: चला तेरा घर में बैठ के गमट करे के मन करता था जरूर ट्यून इन कर रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन हर रोज शाम के सांझ के 9 बजे से लेके 11 बजे ले भोजपुरी तड़का कार्यक्रम चलेला और ढेर कोई हमनी के बोलेला हाई सब गीत सुन के त जैसे नाचे के हमनी के मन करे थपरी बजाए के मन करे कमर डोलावे के मन करे बहुत अच्छा लगेला त चला इसने बस खुशहाली के संगे आज के कार्यक्रम के संगे ढेर कोई हमनी के संगे जुड़ गल हवन तब इसने साथ दे दे रही है जाप बढ़िया बढ़िया गीत बढ़िया बढ़िया चुटकुला संगे चला हाई जा पर नवीन भैया हमनी के संगे जुड़ गल हवन नवीन लक्ष्मण रोज बैल बगल से और उनकर पत्नी हवन चित्रा जी जे अभी तनी कमजोर हवन पर चला भगवान से प्रार्थना करब जा कि वो हाली से अच्छा हो जाए और चित्रा जी जे तू हमने के सुना था हुआ तो बस तोहरा शिव जी के कृपा बनल रही तोहरा बहुत शक्ति मिली बहुत आशीर्वाद मिली और तोहर जितना परिवार हवन तोहर बेटी लोग बगल से और खास कर निवेदिता और सच्चिदानंद जी जे हवन साथ हमेशा देवेलन में बग से ललिता और धनराज चरण जी अपन बेटी संगे स्वीटी संगे हमेशा साथ देवेलन मॉडल भी बगल से राज और अमृता उबिलक हमेशा जुड़ल रहेलन न्यू ग्रो बगल से और रमेश और प्रीति जी साथ देवेलन हमनी के गाँव बुआ बगल से तो बस ऐसे ने साथ देते रहिए जा बहुते प्यार से सुख दुख के साथ ही हई और शिव जी से हये प्रार्थना करब जा कि जितना लोग अभी लोपिताल में हवन बीमार हवन पीड़ित हवन उन सब कई के रक्षा करी और लीलो माथुर सुकन के हई गीत नवीन लक्ष्मण जी पसंद कर ले हवन उनकर खातिर और ये चाचा चाची के किस्सा तनी सुनते चला चाचा चाची के का बोला कौन दिन चाची ऐसे नींद में से भड़ाक से खड़ा हो गल तो चाचा हौजा बैठे बैठे अपन पोताप देखत रहलन तो चाची के बोले कौन ची होल बोले जानत हव हम एगो सपना देख ले हई बोले कौन सपना बोले सपना में देख ले हई हम तो गर्ल हई स्विट्जरलैंड घूमे हाँ हो बड़का आवियों में बैठ के हम तो स्विट्जरलैंड घूमे गर्ल हई हौजा जितना बर्फ बा बड़का पालतो डल्ले हई उ जो तो नवा किन के हमनी के देले रहल लाने पे उ पहिन के हम तो जैसे हौतै में बैठ के सफर करत हई और ऐसन बड़का बड़का पहाड़ी देखत हई जेकर पे इतना इतना बर्फ बा बोले अरे वाह तो काहे उठ गई ले हाली से मोल तो ता तोप के चाची के बोले फेरो से सूत जाइय देख निमन से तू घूम के आइय काहे के हई पौसियों जो मिला था ना हई पौसियों में तोरा हम हसचे के नहीं घुमावे सकब सपना में घूम लिए तो उतना पैसा के खर्चा नहीं होई

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम मजेदार कार्यक्रम संगे हैजा पर रिहाना भी हमने के संगे जुड़ गर हवान प्यारी रिहाना के बहुत बहुत प्यार और चला फिनिक्स से उसाद देवा धवान हमेशा वो बहुत प्यार से साथ देवेलन और चला हैजा पर विश्वानी दुमन आज अपन जन्मदिन मनावा धवन विश्वानी जी तरह जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत प्यार से और बस ऐसे जीवन में खुश रहिए और अपन परिवार के प्यार हमेशा तोहर पर बरसल रही प्यार मिलते रही तोरा और तोहर संगे जुड़ गल हवन तोहर दू को बहिन इंदिरा और शारदा सखी हवन नीला और प्रतिभा शोभा जी गीता गजाधर और तोहर लैकवन दीपा कुश कोमल धर्मा और सब दुमन परिवार बिहारी राम किशुन और माथुर की परिवार के संगे तोरा ढेर ढेर आशीर्वाद और चला हमारे MBC बगल से MBC की टीम देने से तोरा हाई गीत हैप्पी बर्थडे बोले खातिन तो बस ऐसे ने हंसते मुस्कुराते साथ देते रहिए जाओ जितना कोई आज जन्मदिन मनावा था वन जरूर तू हमनी के जनैया और अपन पसंदीदा गीत के तू फरमाइश करे सकब एगो कादो के रूप में हम जरूर चलाओ अब जा तोहर खातिन

भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का कार्यक्रम मजेदार कार्यक्रम संगे चला है जहाँ पर हमनी के संगे जुड़ गल हवन उमा जी फोजू साक से साथ देवत हवन उमा जी हमनी के बोले हाउ एगो गीत हा बहुत खुशी हवन शारदा सिन्हा के गीत चाची हाई जोन गीत मंगले हवा वो फिल्म मैंने प्यार किया से लेवल गयल गीत हा तो चला है ये गीत चलाओ आप जा तोहर खातिन और आज हाई हाई सप्ताह में तोहर पड़ोस में जे रहेला

आरती के शादी हुआ था तो चला आरती खातिन और उनका सब परिवार खातिन है ये गीत शादी के गीत है तो जरूर तोहर खातिन चलाओ अब जा और हंसते मुस्कुराते होकर जीवन बस ऐसे आगे लेके जाए चला हंसते मुस्कुराते है जा पर चचा कौन दिन ऐसे खुशी हो गल चाची के जाके पाछे से धौड़ ले लग और चाची के बोले बहुत बहुत मेर्सी बहुत बहुत थैंकू तो चाची बोले अहो इतना प्यार काहे उमड़ता हो बोले हाँ काल खातिर काल के दिन खातिर तो चाची बोले काहे चचा बोले हाँ हमर काल के दिन तू इतना यादगार बना देलक वही से तोहरा थैंक यू बोला था तो चाची बोले तो काल तो हम तोहर संगे नहीं रहली हम तो हिया हमर माँ हिया गल रहली बोले वही खातिर तब बोला था हमनी के इतना पूरा दिन जितना शांति महसूस होल का बोलब तोहरा

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का।
1: चल देखते देखते तो 9:30 हो गल। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के जारी रखत है और हाई कार्यक्रम 11 बजे ले जारी रही और बहुत मजेदार कार्यक्रम संगे हाई जा पर विश्वानी दुमन जी के भी जन्मदिन हो गल और बढ़िया बढ़िया गीत के संगे संगे ढेर कोई हमनी के बोले आज उनकर भी जन्मदिन बाद जरूर दोहर खातिन चलाओ अब जाएगो बढ़िया गीत पर आगे। ऐजा पर चाची ललिता कुशल हमनी के संगे जुड़ गल अवंत ओले बगल से और उनकर खातिन हमेशा लागी नहीं छूटे राम के हई गीत के वो बहुत पसंद करेलन। आ ये गीत गायत्री जी खातिन भी चलाओ अब जा जेनुअल फॉन्स से हमनी के साथ देवेलन बेटा आ जाए। और संगे चाची ललिता ऐजा पर उनकर बहिन हवंसु देवी ज्ञानी मीता और छोटी दीदी जे पोलॉजे से साथ देवेलन। दादी प्रभावती नुअल फॉन्स के सुखलाल मौसी माला राम जवन उषा लोकाना हरीश भैया और आत्माराम भैया खातिन लागी नहीं छूटे राम के हाई गीत। और दादी और चाची जोन हमर हवन चाची चमेली क्या बोले बोले देखले हवा आजकल समाज में कितना शादी टूटा था हम बोले हाँ चाची इतना शादी टूटा था का बोलब कैसे समझावा भाई सब नौजवान लोग के कि शादी खेल नहीं हो। बोले हाँ सर हाई जानत हवा जितना पति लोग हवा नहीं समझेलन सा तो हम बोली का है चाची ऐसे बोलत हवा। बोले हाँ गर्लफ्रेंड खुशी रहेला गर्लफ्रेंड के बीवी बनावे के खुशी रहेला गर्लफ्रेंड में बीवी के खोजेला और बीवी में गर्लफ्रेंड के खोजेला और जे ही छोकरिया खुशी हो जाए अपन बीवी बनावे के ओकरा तो थोड़ा बरिस में जाके दूसरा गर्लफ्रेंड खोजी। हाँ चाची है तो तू बिल्कुल सच्चा बात बोला था वो।

भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का कार्यक्रम आगे बढ़ावे खातिर मीराबाई दोमिया के पसंद के है गीत चलाओ अब जा विद्वान विद्मावती संपत के आवाज में और है ये गीत दरमिया परिवार पादिया परिवार खातिन और खास कर उनकर बेटी और दामाद खातिन और जितना कोई हमनी के सुनत हवन का बोलब चाचा हमनी के बोले रात के हम तो एगो बड़का सपना देख के इतना डिड़ा गईनी कि का बोलब हम बोली कैसे सपना चाचा बोले हमनी के सपना में यमराज साक्षात हमनी के सामने ऐसे प्रकट हो गल हम बोले अरे वाह यमराज के दर्शन हो गल बोले यमराज के दर्शन करके के खुश होवे लगे हम बोले हाँ चाचा हाई तो सच्चे बात बोला था हाँ बोला बोला चाचा कौन कौन से बोलन यमराज यमराज हमनी के बोले तो चला तोहरा लेवे आल हई हम तो पसीना पसीना हो गई नी इतना डिड़ा गई नी का बोलब हम तो ओकरा बोल देने ऐसे कैसे हो हम तो इतना बुढ़ाल नहीं है हमर तो स्वास्थ्य भी अच्छा है तो यमराज बोले हाँ तोहर उम्र तो नहीं होल बा पर तू जाने ल तू आज अपन पोताप जोन है घरे भुला गल हव आउरी पोताप में तो लोक नहीं दल्ले हवन आउरी जन तोहर बुढ़िया है उ तोहर पोता अपनी मन से चेके करता केकर संगे तू हमेशा चैटिंग करते रहेला व्हाट्सएप पे जितना मैसेज तू सब छोकरी लोग के विदा करेला हई सब मैसेज वा देख ले ले बाचाची तो चाचा बोले हाँ हाँ यमराज भैया हमनी के तू लेके जाइए असल में देखो हम बोला था भैंसवा के हम बिल्कुल आगे में बैठब आइए हमनी के लेके जाइए जल्दी से ऐसे सपना देख के तो चचा डरा के एकदम से ठप से खड़ा होके बैठ गल बोले अच्छा होल बाप रे बाप ऐसे सपना देख लेनी का बोलब

भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम रात के 9:41 हो गल बा और मजेदार कार्यक्रम संगे चल हम भी जुड़ गल हाँ और मजेदार गीत सुना था तो और संगे संगे ठुमका मारत है आईजा पर गर्मा गर्म और चला अगला गीत जन है बहुते मजेदार गीत और है गीतवा चलाओ अब जा चाची शांता सुकागी खातिन से जमील फॉरेस्ट साइड से हमने के संगे जुड़ गल हवान और उनकर प्यारी नातिन संजना के जन्मदिन रहल काल नहीं 2 के यानी कि एक बीफे के उनकर मामा किरण पापा रावीन संगे हवन चाचा सुदेश सुजीत चाचा अशोक पुपू चांदनी और भैया हवन भावेश लीलो माथुर सुकन के आवाज में रखल है गीत दादी बहुत प्यार से मंगले हवन उनकर खातिन एगो ललना के गीत है तो चला है प्यारा सन गीत ओकर दादी की ओर से उनकर खातिन चलावट जा संजना तोरा जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत प्यार हमर टीम देने से और मजेदार कार्यक्रम सुनते रह प्यार से हंसते रह मुस्कुराते रह जिंदगी बहुते हसीन है और चुटकुला तो सुनते चला चाचा कौन दिन चाची के बोले हाँ तू यूनिवर्सिटी कबो गर्ल नहीं हवा तो चाची बोले नहीं नहीं नहीं गर्ल हई चाचा बोले काहे तो चाची बोले ओ हमनी के कबो ऊपर चटनी नहीं मिलल बा बोले कौन सी नहीं मिलल बा बोले ऊपर चटनी नहीं मिलल बा हो चाचा बोले अच्छा तोहर मतबल है अपॉर्चुनिटी बोले हाँ हाँ वही तो बोला था बोले वही कहाँ बोला था वह बुड़बक अपॉर्चुनिटी और ऊपर के चटनी कहाँ बोला था वह तू

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम हंसते रहा मुस्कुराते रहा और ही मजेदार कार्यक्रम संगे चला है जहाँ पर आत्माराम भैया हमने के साथ है देवत हवन और बेले ऐसे उजुड़ गल हवन बेले वैश्य से और उनकर चार गो बहिंदा दीदी प्रभावती और संगे हवन छोटी और दीदी ललिता खातिन कुशल परिवार खातिन सब कोई खातिन और संगे हवन सुनीता दीदी खातिन चलावत हैं अगला गीत और जन गीत मंगले हवन उ है ज्ञान महिपत लाल के आवाज़ में और ही मजेदार कार्यक्रम संगे चाचा और चाची के किस्सा के का बोला अब हम रात के 10 बजे चाची के बोले आई हो जन लड्डू तोहर साथ तोहर माँ विदा कल हवन बहुत मन करा था खाई के डब्बा खोल के बैठल हवन और चाची के बोले हाउ कहाँ बा बोले कौन ची खोजत हवा बोले रात के हाउ हथौड़ा खोजत हई बोले हथौड़ा काहे चाहिला बोले हाई जन लड्डू तोहर माँ विदा कर ले बा हम हमर दांत से तो नहीं टूटा था तो हाइये से हथौड़ा मार के तोड़ अब दब दब जाके खाई के मिली ओकरा

0: भोजपुरी तड़का तुहर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा।
1: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: भोजपुरी गीत रत्ना के संगे MBC रेडियो पर।
0: भोजपुरी तड़का
3: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम मजेदार कार्यक्रम और आप सबको के साथ देवत हवन रत्ना। अभी रात के 10 बज गल बा और अभी से लेके और ही एगो घंटा रह गल बा। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम सुने खातिर तो चला आगे बढ़ब सब बढ़िया बढ़िया गीत संगे है जा पर ज्ञान मही बदलाल के आवाज में रखल है मजेदार गीत संगे। और ये जो अगला गीत सुन ले चुनले हाई हई हाँ, पूर्णिमा फोकिरा जी के आवाज में रखल और हई गीत मानती जी पसंद कर ले वन नोवेल फ्रांस से उनकर बहिन हवन आरती और आनंदी संगे हवन उर्वशी और अनुषा उनकर दुगो बहु दुगो नातीन हवन गिरीशा और मितिशा संगे हवन नातीन हितांशु भव्य और पुष्कर। चला बस हाई जे ऐसने साथ देते रहिया जा और चचा चाची के झगड़ा का बोला दिन ब दिन जैसे चाची भी जैसे गाल बजावे लन सा चचा भी जैसे खीस करे लन सा का बोला कौन दिन चाची इतना गुस्सा में चलाल चाचा के बोले देखिए देखिए तू एक दिन नरक में जाइब नरक में तोरा जगह मिली नरक में भी तोरा जगह नहीं मिली ऐसे बोल देलक चाची कि का बोला तो चाचा बोले हाँ तो ठीक हा नरक में जगह नहीं मिली तो कोनो प्रॉब्लम नहीं है काहे के तू जहां रह हम तो हौजा तनको नहीं जाब चाचा भी फटक से जवाब देलक बुझाता है झगड़ा तो जाना था हौला मेघी के लड़ाई फिनी हो जाए पर चाचा और चाची के लड़ाई झगड़ा कबो फिनी नहीं हुई

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम जारी रखत है। रात के 10:06 हो गल बा और हई जा पर नीता खेदनी जी हमनी के संगीत जुड़ गल हवन सेंट जूलिया विलार से और उनकर भाई जी के दामाद के जन्मदिन रहल 3 तारीख के यानी काल शुक के रहल पाविन सुकलाल जी के जन्मदिन उनकर पत्नी हवन आयुषी ममा हवन देवी का और संगे दू गो लैका नयन और शुभ संगे हवन सासू माँ रीता और फूपू सास हवन नीता जी संगे आज 7 दिवस हवन रूमा और कृष्णानंद अपन ममा हिया घूमे गल हवन और संगे संगे हवन वैभव विभा और उनकर बेटा वैष्णव जे मालेजी में हवन दमाद बाबू हवन रवि और छोटी प्यारी नातिन आव्या। तो चला प्रवीण सुकलाल के जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई। एक और बात देवत हाई तक खुशियाली के संगे साथ है, देते रहिए जा। और चचा के तो हमेशा जाने ला ना, चचा इतना ज्ञान के बात का जानी कहाँ से खोज खोज के आने लन सो हमनी के बोले जाने ल जब झगड़ा हो जाला। हम बोली हाँ चचा हमेशा तो चाची संगे इतना झगड़ा करेला तो तोर सुलहा कैसे होला हो। बोले हम जानीला टाइमिंग। हम बोली कौन टाइमिंग। बोले जितना भी हमने के सुना था वह जान लिया जब वो कबो कभी तोहर झगड़ा हो जाए तोहर बुढ़िया संगे तो तोहर बुढ़िया के कबो नहीं बोलिए पगला बुढ़िया पगली हो गल हवा। हमेशा बोलिए ओकरा ए पगली छोकरिया तोरा नहीं बुधिबा। जैसे तू ओकरा छोकरिया बोलबे तो उ हंस के मुस्कुरा दे और तोहर झगड़ा ऐसे नहीं फीनी हो जाए।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का तड़का भोजपुरी
0: भोजपुरी तड़का तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम चला है जहाँ पर अमृता गणेश हमनी के संगे जुड़ गल हवन पिंटो बगल से और संगे हवन उनकर दूगो नातीन सोनिया और परी संगे हवन पूनम विशन और मीनाक्षी जे हमनी के हमेशा बहुत प्यार से साथ देवलन और सब गणेश परिवार खातिर अगला गीत के मांग करत हवन बहाल गौरी और सुग्रीव गौरी के आवाज में रखल है अगला गीत करब जा उनकर खातिर और ऐसा ठंडा के मौसम में जानत हवा चाचा कौन चिकलन चाची कौन दिन बेचारा सुतले रही और जाके ओकर पे एगो भोग पानी फेंक दिलक ऐसे हड़बड़ा के चाची नींद में से जाग गल और हम पूछले चाहे काहे चाचा हाई का कर दिलक तू काहे चाची के गीला कर दिलक काहे ओकर पे पनिया डाल दिलक बोले हाँ हमर ससुर जी बोले रलन हमर बेटी है फूल के समान नाजुक है ओकरा कभी मुरझावे न दिया बुढ़िया सुतले रहल त हमनी के बुझाल कि जैसे मुरझा गल हवन हवे से पानी डाल दिली ओकर पे हम बोली चाचा तू

भोजपुरी तड़का तड़का भोजपुरी तड़का कार्यक्रम 10:22 और हाई जहाँ पर हमनी के संगे हवन पूर्णिमा फुकीरा जी जिस साथ है दिवत हवन और उनका एल्बम के अगला गीत मांगत हवन उनका चार गो बेटी पिंकी प्राविनी पूजा और पूनम खातिन उनका नाती हवन शायन श्वानिश कानिश आयन और संगे हवन उनका नातिन परी उनका सब संगतिया खातिन जे एस एस आर एन लोपिताल में काम करे लन सर और उनका जितना जिले हवन जितना स्टूडेंट्स हवन गांव से उनकर खातिन सब फुकीरा परिवार देवी दयाल परिवार कालिया चेती परिवार नायको परिवार दसोई परिवार जे आज बहुत खुशहाली में हवन मगन में हवन तो चल मगन में रहिए और मजेदार कार्यक्रम संगे साथ देते रहिए जा और ही मजेदार कार्यक्रम संगे हैजा पर विजय बंधन जी भी हमनी के संगे जुड़ गल हवन खिलावेज से उनकर पत्नी हवन रेखा और साथ देवत हवन उनकर तीन गो बहिन चंदनी बिंदु कुमारी और उनकर सब संगतिया खातिन हैजा पर सुनीता जी भी गाँव गोब से बहुत प्यार से साथ देवत हवन उनकर बहिन कुंगोमा से साथ देवत हवन विमला जी और ही हवन गाँव गोब से अमृता जी और गुडलैंड से वीना जी भी हमनी के साथ देवत हवन तब ऐसने हंसते मुस्कुराते साथ देते रहिए जा और हंसते हंसते चाल आगे बढ़ब सा और चचा गजोधर अपन संगतिया मनोहर से मिलन मिल के बोले हाँ कैसे हाल चाल भैयो तो बोले बहुत बढ़िया चलता तो बोले

हाँ जाने ल हमर बुढ़िया बहुत गुस्सा करा था, बहुत खीस करा था। तब मनोहर भैया बोले हाँ हमनियों के बहुत खीस करा था पर जानत हव हम एगो ऐसन बात बोल देले हई ओकरा तब से उ तनी हमनी के संगे तनी कमती खिसियाला। तो चाचा बोले हमनियों के बतावो भैया हई सिख हई एगो राज के बात तब बतावा कैसे तू कौन चीज बोल देलक ओकरा। बोले जाने ल हम जोन दिन से ओकरा बोल देले हई हाई गुस्सा है चिड़चिड़ापन जाने ल बुढ़ापा में आवेला। उ दिन से उ कबो गुस्सा नहीं करता इतना प्यार से हमनी के बोल देले काहे कि हम जैसे ओकरा बोल देले के हई कि गुस्सा जोन है उ बुढ़ापा के निशानी है तो ओकरा तनी त्राका लगेला। अरे वाह ऐसे राज के बात बोल देले हवा। जितना नानी दादी सुनत हवन अब तनी कम खिसियन से हो।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम मजेदार कार्यक्रम संगे हाईजा पर आज लक्ष्मण जी भी हमनी के संगे जुड़कर हवन ला फ्लोगा बगल से और उनकर पत्नी हवन माला दूगो बेटी प्रार्थना आउरी प्रगति बहिन हवन मानती संगे हवन उनकर एगो भगिनी उर्मिला तुलसी उनकर साली साहिबा सुबा जी आज उनकर हियाँ घूमे आल हवन और हर भड़ी में तो राजन भैया साली साहिबा के नामे भूल गल बोले के चलो लक्ष्मण परिवार संगे हंसते रह मुस्कुराते रह बस ऐसने जीवन बिताते रह और हमनी के प्यार से ऐसने साथ देते रहिए जा और ये हैजा पर चचा जी खाती नेगो बढ़िया चुटकुला हमर जोन चचा गजोदर ह कोन दिन एगो बाबा जी के भेंट करे गल त बाबा जी के जाके बोले चचा कैसन हव बाबा जी तब बाबा जी बोले हम तो साधु है बाबा हम तो साधु है बेटा हम दी के तब भगवान राम जैसे रखे वैसे हम रहब तू सुनाओ बेटा तू कैसे हवा तो चाचा बोले हम तो संसारिक आदमी है बाबा जी हम का बोलब हमनी के जोन सीता है हमर घर के मैया हमर पत्नी हमर बुढ़िया वो हमनी के जैसे रखी उसने रहब का बोलब चाचा का बोलब बाबा जी गौरी ब्रदर्स की आवाज में रखल है अगला गीत चलावब जा राजन लक्ष्मण जी के पसंद पर
3: प्यारी प्यारी माँ

0: भोजपुरी तड़का
1: चला तनी ठेला ठेली के हाई गीत सुनब जा साजी जी रोजिल से हमनी के संगे जुड़ गल हवन और उनकर सब दोस्त खातिन सब संगतिया खातिन विनोद सिद्धत के आवाज में रखल बिस्टप में ठेला ठेली हाई गीत के उमांग करत हवन और ठेला ठेली कहाँ बिस्टप के तो छोड़ द घर में जितना ठेला ठेली होला का बोलब कौन दिन चचा इतना परेशान हो के चल गल फार्मासी में जाके वो भैया से बोले हमर बीवी हमर पत्नी जितना हमनी के संगे चपड़ चपड़ करेला कोनो ऐसन दवाई बा जेकर से उकर मुंह बंद करब तो फार्मासी वाला भैया बोले हाँ भैया

बोलब जे रहते ऐसन दवा त हम कार दिमास के दिन सांझ के 8 बजे ले बैठत हैजा पर तो समझ गईला ना जितना लोग अपन दुकान में अपन काम में देरी ले बैठेलन सब काहे बैठेलन सब तू तक खुद समझदार हो।

भोजपुरी तड़का कार्यक्रम ते चला आगे बढ़ब सा आगे बढ़े खातिर अगला गीत जोन है चलाओ अब जा भाई अबू आफिज उनका जितना नाती पोता हवन असलम आया जायान जहीरा रईस खाला छोटी संगे हवन उनकर खास संगतिया आपी और उनकर पत्नी बहाल गौरी की आवाज में रखा अगला गीत

दू की आवाज में रखल आज के हई आखिरी गीत और हई गीत के संगे आज के कार्यक्रम हईजा पर समाप्त हो जाए। हमने के साथ देलन हईजा पर युधीश, बहुत बहुत धन्यवाद युधीश, साथ देते रहिए जा। श्यामा जी भी हमने के बहुत

प्यार से साथ दिलन, बहुत बहुत प्यार सब कोई के, और जितना कोई हमने के अभी ले सुना था वन, आप सब कोई के दिन बढ़िया बढ़िया रही। रविवार के दिन तोहर परिवार संगे एगो निमन दिन बिताइया, और हये साथ बस अपन सेहत के बहुत बहुत ख्याल रखिया, काहे के ठंडा बढ़ता और कबो कबो गरम कबो कबो ठंडा, ऐसे खोकी ढेर कोई के धरता, तब बस अपन गर्मा गर्म चाय कॉफी पीते रहिए, और संगे संगे चाय संगे संगे तनी अदरक चला। इसी के साथ आज के रात के कार्यक्रम हैजा पर समाप्त करे के बेरा हो गल बा, हमनी के जाए घरे जाए के बेरा हो गल बा। आप सब कोई बहुत प्यार से साथ देलन, बहुत बहुत धन्यवाद। फेरो से भेट आप सा आवत सामधी के रात के, तबले अपन ख्याल रखिए और रत्ना के दीजिए अनुमति। शुभ रात्रि, नमस्कार, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू ऑल।

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

प्यारे प्यारे रेडियो मॉरिशस के हमारे सभी श्रोताओं को नीतुषा का करजोर प्रणाम। स्वागत है आप सबका सुनहरे पल कार्यक्रम में। एक बार फिर आपको ले चले हैं गोल्डन एरा के उस सुनहरे पल में, द 60s। आज खास तौर से जो संगीत है, जो फिल्म है उस दौर में बनती थी, जो जॉ कहते हैं, चाहे वो रोमांटिक मूवीज रही हो, चाहे वो म्यूजिकल फिल्म, चाहे सोशल ड्रामा, चलिए आज इनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं।

0: कहो ना
1: दीवाना।
0: फिर कहो
1: दीवाना।
0: फिर कहो
1: दीवाना।
2: श्रोताओ 1960s को बॉलीवुड का गोल्डन एरा माना जाता है, हम सब जानते हैं। ये वो दौर था जब फिल्मों में कहानी का दम था, संगीत में रूह थी और कलाकारों में एक अलग ही किस्म का चार्म। आज भी जब हम 60s की फिल्में देखते हैं या उनके गाने सुनते हैं तो एक गहरी सी मिठास दिल को छू जाती है, है ना? 60s के दौर में फिल्मों का एक अनोखा मिक्स होता था, रोमांस, ड्रामा, ट्रेजेडी, थ्रिलर, सोशल मैसेजेस फिल्म्स, सब एक साथ फलते फूलते थे।

चलिए उन फिल्मी जौ का कमाल देखते हैं जब बात करते हैं रोमांटिक मूवीज। इस दौर का रोमांस बहुत ही नाजुक, हल्का, गहरा और दिल से जुड़ा हुआ था। राज कपूर, शमी कपूर, देवानंद, शर्मिला टैगोर, दिलीप कुमार, साधना वगैरह वगैरह सबकी रोमांटिक केमिस्ट्री ने एक अलग ही जादू फैला दिया। सॉफ्ट गेज, स्लो मोशन सॉन्ग्स और नजर चुराकर मुस्कुराना, ये सब इस दौर की पहचान थी।

0: सवरिया
1: ओ गुजरिया
2: ओ सवरिया
1: ओ गुजरिया
2: ओ सवरिया।
3: 60s की फिल्में बिना मेलोडियस गाने म्यूजिक के सोचे ही नहीं जा सकती। कहीं पर क्लासिकल का छंद था तो कहीं मॉडर्न जैज का फ्यूजन। म्यूजिक ही फिल्म का बैकबोन होता था। फिर आया सोशल ड्रामा। ये वो वक्त था जब फिल्मों में समाज के मुद्दों को बहुत ही खूबसूरती से उठाया जाता था। गरीबी, समानता और इंसानियत के इमोशंस को इतनी शिद्दत से दिखाई जाते कि ऑडियंस दिल से कनेक्ट हो जाती।

या थ्रिलर और सस्पेंस। 60s में बड़ी खूबसूरती से सस्पेंस फिल्म्स बनी, जैसे कि वो कौन थी, 20 साल बाद, गुमनाम, मिस्टिकल म्यूजिक, हॉन्टिंग बैकग्राउंड स्कोर और ट्विस्ट फिल्ड कहानी, ये सब एक नए जॉनर को डिफाइन करता था। और फिर आए फैमिली एंटरटेनर्स, बड़े घर, जॉइंट फैमिली, वैल्यूज और संस्कार, ये सब 60s की फैमिली फिल्म्स का स्पेशल चार्म रहा।

बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, इस समय आप सुनहरे पल कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। और जब बात हो रही है बॉलीवुड फिल्मों की, तो संगीत के बिना कोई भी फिल्म अधूरी ही रही। जो संगीत था उस दौर का रूह को छू जाने वाला था। 60s का म्यूजिक आज भी टाइमलेस है। इस दौर के म्यूजिक डायरेक्टर्स जैसे एसडी बर्मन, शंकर जैकिशन, मदन मोहन, ओपी नैयर, रोशन, रवि, सलील चौधरी, सब ने मेलोडी की दुनिया को एक ऐसा रंग दिया जो आज तक धुआ नहीं हुआ। फिर रोमांटिक मेलोडीज, लता जी की मधुर आवाज और रफी साहब, मुकेश, हेमंत कुमार, मन्ना डे की सोलफुल गायकी, इन्होंने रोमांस को एक पवित्र रूप दिया। जितने भी गाने उन्होंने गाए हैं आज भी दिल को पिघला देते हैं।

सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

उस म्यूजिकल जॉन में क्लासिकल टच, 60s में राग बेस्ड सॉन्ग्स का एक रिच एरा था। मदन मोहन शंकर जयकिशन जैसे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने गजल और क्लासिकल न्यूएंसेस को फिल्मी गाने का हिस्सा बनाकर एक शानदार लिगेसी छोड़ी। तो दूसरी तरफ शम्मी कपूर के सॉन्ग्स, आर डी बर्मन का अर्ली मॉडर्न टच, इलेक्ट्रिक गिटार्स, रॉक एंड रोल बीट्स, 60s के गाने फन और यूथफुलनेस से भरे होते थे। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, ओ हसीना जुल्फो वाली या फिर पिया तू इस वाइब के हिस्सा रहे। और फिर सैड एंड सोल स्टीयरिंग सॉन्ग्स, मुकेश और रफी के दर्द भरे गीत दिल के तार हिला देते थे। उनमें एक सच्चाई और गहराई होती थी जो हर लिसनर से जुड़ जाती। श्रोताओं, 60s की फिल्में सिर्फ कंटेंट नहीं, एक विजुअल ट्रेड भी थी। ब्लैक एंड व्हाइट से कलर ट्रांजिशन, सॉफ्ट फोकस कैमरा शॉट्स, एलिगेंट कॉस्ट्यूम्स, विंग्ड आईलाइनर, बुफॉन हेयर स्टाइल्स, क्लासिक सूट्स, ऑल एडेड एंड ओल्ड वर्ल्ड चार्म जैसे कहते हैं। शम्मी कपूर का एनर्जेटिक डांस, दीवानंद की टाइटल्ड वॉक, साधना कट हेयर स्टाइल, वहीदा रहमान की ग्रेस, मीना कुमारी की नजाकत, ये सब एक एरा का कल्चरल आइडेंटिटी बन गई। क्योंकि 60s की फिल्में और म्यूजिक दिल से बना होता था, न ज्यादा शो ऑफ, न लाउडनेस, बस इमोशंस, मेलोडी और कहानियों का असली स्वाद। आज भी गानों को सुनकर हम अपने आप को एक शांत, प्यारे और कहानियों से भरे वक्त में महसूस करते हैं। शुभ रात्रि, प्रणाम।

0: काले से डर गए क्या?
1: हमें काले हैं।

पाखा नारंगी की पाखा पाता चूचा रंगी चालान जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी।

0: काटूंगा वही हिला को हक डालूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह मेरी मदद कर। अल्लाह मैं कुर्ती को छोड़ूंगा नहीं। मैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
1: This is Radio Marches.
2: 您好
3: ，Assalamu alaikum.
4: Kim to Mauritius.
5: Namaskar.
6: Shudrendri ki hrudaya purvaka namaskaram.
7: Ungal anaivarukkum vanakkam.
8: Radio Mauritius par dil se swagat hai aap sabhi ka.

0: मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: ये सब गुजर को ट्रांसफर कर दो, तो मार खाएंगे।